0: जब किसी व्यक्ति को किसी घटना में अन्याय का अनुभव होता है तो वो घटना उसके अंतर को झकझोर देती है। समस्त जगत उसे अपना शत्रु प्रतीत होता है। अन्याय लगने वाली घटना जितनी बड़ी होती है मनुष्य का हृदय भी उतना ही अधिक विरोध करता है। उस घटना के उत्तर में वो न्याय मांगता है और ये योग्य भी है। वास्तव में समाज में किसी भी प्रकार का अन्याय व्यक्ति की आस्था और विश्वास का नाश है। किंतु ये न्याय क्या है, न्याय का अर्थ क्या है? अन्याय करने वाले को अपने कार्य पर पश्चाताप हो और अन्याय भुगतने वाले के मन में फिर से विश्वास जगे समाज के प्रति, इतना ही अर्थ है ना न्याय का। किंतु जिसके हृदय में धर्म नहीं होता वो न्याय को छोड़कर बैर और प्रतिशोध को अपनाता है, हिंसा के बदले प्रतिहिंसा की भावना लेकर चलता है। स्वयं भोगे हुई पीड़ा से कहीं अधिक पीड़ा देने का प्रयत्न करता है और इस मार्ग पर चलते अन्याय को भुगतने वाला स्वयं अन्याय करने लगता है। शीघ्र ही वो अपराधी बन जाता है। अर्थात न्याय और प्रतिशोध के बीच बहुत कम अंतर होता है और इसी अंतर का नाम है धर्म। क्या ये सत्य नहीं? स्वयं विचार कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: अगर चाहो तेज दिमाग ने स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके, जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था है?
4: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
3: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ई हुके जाएगा, खेतर बंजर थे जाएगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
4: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
3: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
4: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
3: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
5: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज सुनने वाले सभी साथियों को आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर का स्वीकार कीजिएगा साथियों प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
1: जी हाँ दोस्तों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। साथियों, जहाँ हम बात करते हैं युवाओं के जीवन से जुड़े कुछ मुद्दों को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: आज का विषय हमारे कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ रहा है कि युवाओं के लिए डिजिटल फास्टिंग क्यों जरूरी है।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का युग डिजिटल युग है। कह सकते हैं कि ऑनलाइन गेम्स, वेब सीरीज और लगातार आने वाली नोटिफिकेशन ने हमारी दिनचर्या को पूरी तरह बदल दिया है। मनीषा
0: जी हाँ,
1: देखते हैं कि डिजिटल साधनों ने जीवन को आसान, तेज और सुविधाजनक तो बनाया ही है, लेकिन इसके साथ ही एक नई समस्या भी सामने आई है, वो है डिजिटल ओवरलोड।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, आज युवाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग घंटों मोबाइल स्क्रीन पर बिताता है। सुबह उठते ही फोन, रात को सोने से पहले फोन, पढ़ाई के बीच में फोन और खाली समय में फोन।
0: जी बिल्कुल
1: दोस्तों, ये सभी आदतें धीरे धीरे एक लत का रूप ले चुकी है। ऐसे में डिजिटल फास्टिंग यानी कि कुछ समय के लिए डिजिटल उपकरणों से दूरी बनाना आज के समय की एक बहुत बड़ी आवश्यकता बन चुकी है।
0: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं युवाओं के लिए डिजिटल फास्टिंग क्यों जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: कशिश, हम देखते हैं कि आज का युग पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स और इंटरनेट ने हमारे जीवन को आसान तो बनाया है।
1: जी हाँ।
0: लेकिन श्रोता साथियों, इसके साथ ही यह हमारी दिनचर्या, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक व्यवहार को भी प्रभावित कर रहा है।
1: बिल्कुल,
0: विशेष रूप से कशिश, हम देखते हैं कि युवा वर्ग डिजिटल दुनिया में सबसे ज्यादा सक्रिय है। पढ़ाई, मनोरंजन, मित्रता, जानकारी, श्रोता साथियों, हर चीज अब स्क्रीन के माध्यम से ही हो रही है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में श्रोता साथियों, डिजिटल फास्टिंग यानी कुछ समय के लिए डिजिटल उपकरणों से दूरी बनाना, कशिश हम देखते हैं कि डिजिटल फास्टिंग का अर्थ है जानबूझकर मोबाइल, लैपटॉप, सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल संसाधनों का सीमित या पूर्ण रूप से त्याग कुछ समय के लिए करना।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाय तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
3: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
1: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये है ये हुके जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
3: ओ अंजलि बुन, इतले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
1: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
3: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
1: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
0: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: અંજલિ બોન. ગીત તો અહીં પૂરું અને ગીતને બાદ એક વખત ફરી આપણે કિસાન ભાઈ બહેનોનું આપણે સ્વાગત કરહ આપણે આજને કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં. ને જેમ કે ગીતે કે પહેલે વિષય બતાડ્યું હતું કે આજે આપણે વાત કરવા વાળા હા મેળબંધી ને પ્રારંભ મેં, તો આના વિશેની જાણકારી આલવા બદલે આજે આપણે સ્ટુડિયો મેં મનીષજી સર આવ્યા હે એ બતાડે કે આપણને મેળબંધી શું કહેવાય ને આને આપણે હરતે કરી શકા.
1: હવે
0: તો પહેલે હામરી લાણાની વાત ને મોરે કરા આપણી વાતે.
1: હવે સર નમસ્કાર.
2: જી નમસ્તે અંજલિ જી.
1: સર આપકા બહોત બહોત સ્વાગત કરતે હૈં હમારે આજ કે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં. જૈસા કે સર આપ હમારી કાર્યક્રમ ખેતીવાડી સે નિરંતર જુડતે રહેતે હૈં ઓર ખેતી સે જુડી પશુપાલન સે જુડી જલ સંરક્ષણ સે જુડી ઢેર સારી બાતે આપ હમારે કિસાન ભાઈ બહેનો કે સાથ કરતે હૈં. તો એસા હી એક વિષય આજ હમારે કાર્યક્રમ મેં આપકે માધ્યમ સે જુડને જા રહા હૈ. આજ હમ જાનેંગે કે મેળબંધી કા ક્યા મહત્વ હૈ, મેળબંધી ક્યા હોતી હૈ, કોન સે સે તરીકે હૈ જિસસે હમારે જો કિસાન ભાઈ બહેન હૈ વો મેળબંધી કર સકતે હૈં. તો સબસે પહેલે તો સર આપ કાર્યક્રમ મેં હમે યે બતાઈએ કે આખિરકાર મેળબંધી ક્યા હોતી હૈ ઓર ઉસકા ક્યા મહત્વ હૈ.
2: જી સભી સુનને વાલે શ્રોતા બંધુઓ કો જય ગુરુ. અંજલિ જી બહોત હી મહત્વપૂર્ણ ये विषय है और यही सही समय है इसके बारे में जानकारी के लिए भी.
1: जी हाँ.
2: कि मेड़बंदी का क्या महत्व है, मेड़बंदी क्या है, मेड़बंदी के तरीके क्या हैं और इनके फायदे क्या हैं, आखिर हम इसे क्यों करें, तो ये सारे ही प्रश्न आपके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं.
1: जी जी.
2: जैसा कि हम जानते हैं हमारा वागड़ क्षेत्र पारंपरिक खेती के लिए जाना जाता है और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है.
1: जी बिल्कुल.
2: तो अगर हम बहुत सरल शब्दों में जानना चाहें कि मेड़बंदी क्या है.
1: जी जी.
2: तो मेड़बंदी का अर्थ होता है खेत की जमीन को अलग अलग हिस्सों में विभाजित करना.
1: जी जी.
2: जिससे कि एक समय में कई फसलों की उत्पादकता को बढ़ावा मिले और ये एक विशेष प्रकार की व्यवस्था है.
1: जी जी.
2: जिसमें खेत की भूमि को समय समय पर उपयुक्त फसलों के लिए तैयार किया जाता है.
1: जी बिल्कुल.
2: अब यदि हम इसमें बात कर रहे हैं कि अलग अलग हिस्सों में विभाजित करते हैं तो ज्यादातर ये होता है कि कई किसानों के पास जो जमीन होती है
1: जी हाँ.
2: वो एक सी नहीं होती है. कभी वो ढालू जमीन होगी, कहीं पे समतल जमीन होगी, कहीं पे पथरीली जमीन होगी. तो इस तरह की जो जमीनें हैं उनमें उनकी ढाल के हिसाब से मेड़ बना दी जाती है.
1: जी हाँ.
2: और इस तरह की जमीनों में अलग अलग तरीके की फसलों को बोया जाता है.
1: जी बिल्कुल.
2: जो उस जगह के अनुरूप होती है जिसमें वो वाली फसल उस जगह में सबसे ज्यादा उत्पादन दे पाए. तो हमारे बागड़ क्षेत्र के सभी आदिवासी किसान इस चीज को अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन सी जगह में कौन सी फसल ज्यादा उत्पादन देती है.
1: जी बिल्कुल.
2: पर कई बार मेड़बंदी वो नहीं कर पाते हैं. तो मेड़बंदी के महत्व की बात अब यहाँ आती है.
1: जी हाँ.
2: कि जैसे हम सभी जानते हैं प्रमुख खाद्य संसाधन का जो स्रोत हमारे पास उपलब्ध है वो पूरे विश्व में सिर्फ खेती ही है.
1: जी बिल्कुल सर.
2: और आधुनिक समय में इसका महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है क्योंकि कृषि की जोत कम होती जा रही है या जमीनें कम होती जा रही हैं.
1: जी हाँ.
2: काफी सारी जमीनें अब अन्य उपयोग में ज्यादा आने लगी हैं और उत्पादन का दबाव कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है.
1: जी बिल्कुल.
2: तो जिस प्रकार अनियमितता और अयोजनाबद्ध तरीके से काम करने से सफलता नहीं मिलती है वैसे ही एक बिना अच्छी योजना के अभाव में खेती, उससे मिलने वाली उपज और उसकी गुणवत्ता ये मिल के इसकी मात्रा को प्रभावित करते हैं.
1: जी बिल्कुल सर.
2: इसलिए मेड़बंदी बहुत जरूरी है और यही इसका महत्व है कि खेती से उत्पन्न होने वाली उपज, उसकी गुणवत्ता और उसकी मात्रा ये प्रभावित हुए बिना हम एक अच्छी फसल ले पाए.
1: जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा. तो यही अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हमारे जो किसान भाई बहन है वो मेड़बंदी आखिरकार कैसे कर सकते हैं.
2: तो मैं बताना चाहूंगा कि सामान्य रूप से हमारे वागड़ क्षेत्र में जो मेड़बंदी की जाती है वो दो तरीके से की जाती है.
1: जी जी.
2: कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे पत्थर ज्यादा पाए जाते हैं और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे कम पत्थर हैं.
1: जी बिल्कुल.
2: तो जहाँ पे कम पत्थर पाए जाते हैं उन इलाकों में हमारे किसान भाई खेत की मेड़ पे मिट्टी की पाल बना सकते हैं.
1: जी हाँ.
2: और उसके ऊपर झाड़ी नुमा पौधे लगा सकते हैं, जिससे वो मेड़बंदी स्थायी रूप से मेड़ वहीं बनी रहे,
0: जी जी,
2: बारिश के पानी के साथ बहे ना, या लंबे समय तक बनी रहे।
0: जी जी।
2: तो अगर उस पे झाड़ीदार पौधे लगा दिए जाते हैं तो इससे खेत की मिट्टी का कटाव रुकेगा, मेड़ का जो मिट्टी है उसका भी कटाव रुकेगा।
0: जी बिल्कुल।
2: और इसपे जो झाड़ी लगाई जाएगी वो उनको अतिरिक्त आमदनी में मददगार होगी।
0: जी जी।
2: तो झाड़ी में हम मेहंदी लगा सकते हैं, सीताफल लगा सकते हैं, या इस तरह की झाड़ी नुमा और भी प्रजातियां हैं।
0: जी जी।
2: जिनका हमको दुगना फायदा मिल सकता है।
0: जी बिल्कुल।
2: और दूसरी होती है जहाँ पे अधिक मात्रा में पत्थर पाए जाते हैं, तो ज्यादातर बड़ी ढलान वाली जगहों पे जहाँ पे हमको मेड़ बनानी है वहाँ पे एक फीट गद्दा करके उसके नीचे से पत्थरों को समान रूप से जमाना चालू करते हैं एक जैसा, और उनको 1 से 1.5 फीट तक की ऊंचाई पे जमा देते हैं। इसका फायदा ये होता है कि जब पानी बह के आता है
0: जी हाँ।
2: तो उन पत्थरों में मिट्टी हमारी रुक जाती है और पानी बह के निकल जाता है।
0: जी बिल्कुल।
2: इसके और भी कई फायदे हैं, तो अभी हमने जैसे इन 3 बिंदुओं को देखा कि मेड़बंदी क्या है, मेड़बंदी का महत्व क्या है, और मेड़बंदी के तरीके क्या हैं।
0: जी बिल्कुल।
2: तो ये तीनों काम करने से हमारी जमीन में या हमको और कितने तरीके के फायदे हो सकते हैं, हम इनको जान लें, जिससे हमको ये पता चले कि मेड़बंदी के इसके अलावा और क्या फायदे हैं।
0: फायदे हो सकते हैं। जी बिल्कुल।
2: तो मेड़बंदी में हमने अभी जो बात की तो ये पोषक तत्वों का संतुलन बनाने में मदद करती है।
0: जी बिल्कुल।
2: जैसे हमने अभी जाना कि अलग अलग तरह की जमीन में अलग अलग तरीके फसलें बोई जाती हैं, तो इसके माध्यम से हमारी जमीन में पोषक तत्वों का संतुलन बनाए रखने में मेड़बंदी मदद करती है, क्योंकि उस जमीन के अंदर जो हमने फसल लगाई थी उससे जो उस मिट्टी को फायदा हुआ है, मान लीजिए आपने दलहन की फसल लगाई थी जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्सिंग होती है।
0: जी बिल्कुल।
2: अब अगर यही मिट्टी बह के चली जाती तो हमारे आने वाली फसल को वो नाइट्रोजन नहीं मिल पाती।
0: जी बिल्कुल।
2: तो इस तरह से मेड़बंदी हमारी मिट्टी के पोषक तत्वों के संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है।
0: जी बिल्कुल सर।
2: अब अगर हम बात करें रोग नियंत्रण की, तो मेड़बंदी रोग नियंत्रण में 2 प्रकार से मदद करती है।
0: जी हाँ।
2: जैसा कि हमने इसके पहले जाना कि हमारी मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है, जिससे फसल ज्यादा ताकतवर होती है और फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता
0: बढ़ जाती है।
2: और दूसरा होता है कि कई सारे जो फसल को नुकसान करने वाले कारक हैं, कीट पतंगे,
0: जी जी,
2: कीड़े या इस तरह के जो भी हैं, वो वहाँ पहुँचने में एक बाधा का सामना करते हैं,
0: जी जी,
2: जिससे या तो उनकी संख्या कम हो जाती है या कभी कभी वो पहुंच ही नहीं पाते।
0: जी बिल्कुल।
2: तो इस तरह से मेड़बंदी रोग नियंत्रण में भी मदद करती है।
0: जी हाँ।
2: यानी कि कीटों के प्रकोप से फसलों को बचाती है।
0: जी हाँ।
2: तीसरी चीज है जल संचयन, जैसे कि हमने पहले भी बात की कि सीधे तरीके से पानी बह नहीं पाता।
0: जी जी।
2: उसमें अवरोध आता है और यही पानी उस मिट्टी के अंदर जाता है या हमारे खेत के अंदर रहता है जितनी उसकी आवश्यकता है।
0: जी हाँ।
2: और इससे उस जगह की नमी बढ़ जाती है, जिससे उस फसल को और आने वाली फसल को कम पानी की आवश्यकता होती है।
0: जी बिल्कुल।
2: मिट्टी की उर्वरकता की बात करें तो हम 2 या 3 तरीके से इसको जान ही चुके हैं या समझ ही चुके हैं।
0: जी जी बिल्कुल।
2: कि मिट्टी की उर्वरकता को मेड़बंदी किस तरह से बढ़ाती है, क्योंकि हमारी मिट्टी वही है, हमारे जो पोषक तत्व हमने हमारी मिट्टी में डाले थे, जिसमें प्रमुख रूप से हम वर्मी कंपोस्ट बोले या कंपोस्ट गोबर खाद बोले, ये जो हमने डाले थे और उससे हमारी मिट्टी को जो पोषक तत्व मिले थे वो मिट्टी के नहीं बह पाने के कारण वही हैं।
0: जी बिल्कुल।
2: तो दिनों दिन हमारी मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती जाती है और इसमें जो कार्बनिक तत्व बढ़ते हैं इसके कारण हमारी मिट्टी में रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ती ही है।
0: जी हाँ।
2: इसके साथ ही साथ उसकी जल धारण क्षमता भी बढ़ती है।
0: जी बिल्कुल सर।
2: कभी कभी लंबे समय तक पानी न मिल पाने के कारण जब अन्य किसानों की फसलें कमजोर होने लगती है, उस स्थिति में भी ऐसा खेत जहाँ पे मेड़बंदी की गई है
0: जी हाँ।
2: वो फसलें यथावत खड़ी रहती हैं। अब अगर हम बात करें तो मेड़बंदी को दो तरीके से किया जा सकता है कि मेड़बंदी करने में जो समय संसाधन लगेंगे उनका क्या किया जाए।
0: जी बिल्कुल सर।
2: तो व्यक्तिगत रूप से तो हमारे यहाँ मेड़बंदी होती ही आई है और किसान अपने हित के कारण उसको करते ही हैं, पर आजकल हमारे पास एक और विकल्प उपलब्ध है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत यदि हम अपने गांव की पंचायत की कार्य योजना में इसको जुड़वा लेते हैं
0: जी
2: तो इस काम को व्यक्तिगत मेड़बंदी को उसमें जुड़वाया जा सकता है।
0: जी बिल्कुल।
2: तो अगर उसमें जुड़वा के हमारे किसान भाई इसको करते हैं तो वो अपने खेत की मेड़बंदी भी कर पाएंगे और उस मेड़बंदी को करने से उनको दोहरा आर्थिक लाभ होगा। मेड़बंदी करने के जो लाभ होंगे वो होंगे ही, इसके साथ प्रतिदिन की जो मजदूरी है वो भी महात्मा गांधी नरेगा से उनको मिल जाएगी।
0: जी बिल्कुल।
2: और ये कहीं ना कहीं उनको आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत करने के लिए काम आएगा। तो इस तरीके से हम मेड़बंदी करके अनेक तरीके से अपनी खेती में लाभ उठा सकते हैं।
0: जी हाँ।
2: और इसके अप्रत्यक्ष तरीके से और भी कई लाभ हैं जो मेड़बंदी करने वाले किसान अच्छी तरह से जानते हैं।
0: जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि आपने कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से हमारे किसान भाई बहनों को बता दिया है कि मेड़बंदी का क्या महत्व है और क्या ऐसे दो तरीके हैं जिसके माध्यम से वो मेड़बंदी कर सकते हैं, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका अमूल्य कीमती समय आपने हमें और हमारे श्रोता साथियों को दिया।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी।
0: જાગૃતિ બુન જેમ કે આપણે આપણે વેસ્ટમાં મનીષજી સર જોડે તક હતા ને એણે આપણને ઘણી અસલ તરીકા તકી બતાડી દીધું હે કે મેળબંદી આપણને હર્ત કરવી હે ને કયા બે તરીકા હે જે આપણે કિસાન ભાઈ બુન અપનાવી શકીએ ને મેળબંદી કરવા તકી આપણે કિસાન ભાઈ બુનોને હર્ત ખેતીની જે મિટ્ટી હે એનમે ફાયદો મળે, મિટ્ટીનો જે કટાવ હે ઈ રૂકી જા અને ઘણા કાના એવા જે ફાયદા હે એનાને બારામાં ભી એણે ઘણા કાની વાતે બતાડી હે। તો આશા કરો હો કે આ હંગરી વાતે આપણે ભાઈ બુનોને ગમી હોંગા, કેમ કે હવે ટાઈમ થઈ ગયો હે આપણે અણસ કાર્યક્રમ તકી સૂટો પડવાનો। તો સૂટો તો પડા પણ સાથે પહેલા હમરી લાયક ગીત ને મોરે પડા સૂટો હોવે।

0: भाई ने बोलो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार कर रही है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, मिसोर ने मुस्कान। होवे इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, किनकी घेरे कोई आपरो इंतजार कर रही है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। ग्राम सभा में बोले बोले हैं तो फैसला मजबूत थे है। वन अधिकार सिर्फ कानून नहीं, माँ जंगल तक जरूर बोले में रिश्तों है। जे जंगल में हमसे हैं ये उन्होंने रक्षा करे हैं। तो आओ बोले ने भागीदारी बढ़ावा, ग्राम सभा मजबूत बनावा ने जंगल में भविष्य सुरक्षित करा। बोले ने आवाज विकास में असली पहचान है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: भाई ने बोलो, आप एक कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हूं या आपड़े ने कितनी शांति मिले है। जीनी हवा में आपड़े हाल हूं ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
1: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
0: होवे आज नाना कदम है ये अबावरा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपके अपनी दोस्त कशिश पारशर
1: और आपके अपनी साथी अंजलि पारशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। कशिश, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है कि बच्चों में झिझक और शर्मिलापन कैसे दूर करें।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। कोई बच्चा बहुत मिलनसार होता है तो कोई शांत स्वभाव का, तो कुछ बच्चे आसानी से लोगों से बात कर लेते हैं।
0: बिल्कुल।
1: जबकि कुछ बच्चों को नए लोगों के सामने बोलने, अपनी बात रखने और किसी गतिविधि में भाग लेने में संकोच होता है। यह झिझक और शर्मिला जो पन है कशिश, कई बार बच्चों की प्रतिभा को सामने आने से रोक देता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन शुरुआत में जैसा कि मनोरंजन करना जरूरी है और ये हमारे कार्यक्रम का दस्तूर भी है,
1: जी हाँ,
0: तो क्यों ना हमारे दोस्तों को यहाँ पर कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवाएं।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि श्रोता साथियों, बातचीत की शुरुआत हो चुकी है और गीत से पहले विषय भी आपको बता ही दिया था कि बात कर रहे हैं बच्चों में झिझक और शर्मिलापन कैसे हम दूर करें। जैसा कि अंजलि जी आपने गीत से पहले बताया था कि हर बच्चा अपने आप में अनोखा होता है।

0: बच्चे अक्सर भीड़ में चुप रहते हैं, नए लोगों से बात करने से बचते हैं, कक्षा में उत्तर जानते हुए भी हाथ नहीं उठाते,
1: बिल्कुल
0: मंच पर आने से डरते हैं और अपनी राय खुलकर नहीं रख पाते। श्रोता साथियों, शर्मिला होना कोई बीमारी नहीं है, लेकिन यदि यह बहुत अधिक हो जाए तो बच्चे के विकास को प्रभावित कर सकती है। यही अब बात आती है कोशिश कि बच्चे शर्मिले आखिरकार क्यों बनते हैं। तो श्रोता साथियों, जब बच्चों को बार बार ये महसूस कराया जाता है कि वे दूसरों जितने अच्छे नहीं हैं, तो उनका आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। धीरे धीरे वे अपनी क्षमता पर संदेह करने लगते हैं और बोलने से भी कतराते हैं। कुछ परिवारों में बच्चों की हर छोटी गलती पर डांट पड़ती है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे माहौल में भी बच्चा डरने लगता है कि कहीं कुछ गलत न हो जाए, यही डर झिझक का रूप ले लेती है।
1: बिल्कुल,
0: इसके साथ कशिश, जब बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से की जाती है तो उसे लगता है कि वह दूसरों से कम है।
1: जी हाँ,
0: भावना उनके आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। इसी के साथ कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से कि उपहास का डर भी बच्चों को रहता है। कुछ बच्चे इसलिए भी नहीं बोलते क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। इसी के साथ अगर बात करें पारिवारिक वातावरण की, तो जैसा कि दोस्तों बच्चों का व्यवहार काफी हद तक परिवार से प्रभावित होता है। जैसा कि आपने बताया कि कुछ बच्चों को हर छोटी छोटी बातों पर घर पर डांटा जाता है,
0: बिल्कुल,
1: जिसके कारण भी बच्चे शर्मिले हो जाते हैं। साथियों, कुछ बच्चे स्वभाव से ही शांत और अंतर्मुखी होते हैं। ऐसे बच्चों को समझने और धीरे धीरे प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है। अंजलि जी,
0: जी हाँ।
1: जैसे कि यदि बच्चे को लोगों से मिलने जुलने और नई परिस्थितियों का अनुभव करने के अवसर नहीं मिलते हैं, तो वह सामाजिक रूप से संकोची बन जाता है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए माता पिता से हम ये कहना चाहेंगे कि वह बच्चों को बाहर खेलने दे, लोगों से मिलने जुलने के लिए अवसर दे, ताकि बच्चे खुलकर अपनी बात कह सके।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही अब बात आती है कि झिझक और शर्मिलेपन का बच्चों पर क्या असर पड़ता है। तो श्रोता साथियों, कई बार उत्तर जानते हुए भी कक्षा में बच्चे बोल नहीं पाते।
1: बिल्कुल,
0: इस कारण उनकी वास्तविक क्षमता सामने नहीं आ पाती। इसी के साथ कई बच्चों में कला, खेल, गायन और नेतृत्व की अद्भुत क्षमता होती है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन शर्मिलापन उन्हें आगे आने से रोक देता है। शर्मिले बच्चे अक्सर कम दोस्त बना पाते हैं, इससे वे अकेलापन महसूस कर सकते हैं। श्रोता साथियों, जो बच्चे अपनी बात रखने का अभ्यास नहीं कर पाते, उसे आगे चलकर निर्णय लेने में भी कठिनाई होती है।
1: बिल्कुल,
0: इस तरीके से हम कह सकते हैं कि झिझक और शर्मिलेपन का असर बच्चों की कई सारी चीजों पर पड़ता है।
1: जी हाँ अंजलि जी, तो जैसा कि बातें हमारी कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छी चल रही है कि बच्चों में झिझक और शर्मिलापन जो होता है उसे हम दूर कैसे कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हमने बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों को जाना, यहीं अब आप सभी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या हर शांत बच्चा शर्मिला होता है? तो श्रोता साथियों, नहीं, ये समझना बहुत जरूरी है कि शांत स्वभाव और शर्मिलापन अलग अलग बातें हैं।
1: बिल्कुल,
0: कुछ बच्चे स्वभाव से कम बोलते हैं लेकिन जरूरत पड़ने पर अपनी बात रख लेते हैं। समस्या तब होती है जब बच्चा डर, असुरक्षा और संकोच के कारण बोलने से बचता है।
1: बिल्कुल,
0: यही बच्चों की झिझक को दूर करने के कुछ उपाय हैं जो हमें अपनाने होंगे। जैसे कि बच्चों की बातों को हमें ध्यान से सुनना है। जब बच्चा कुछ कहे तो उसकी बात पूरी सुने। यदि परिवार उसकी बातों को महत्व देगा तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा।
1: बिल्कुल,
0: बच्चों ने यदि किसी के सामने बोलने की कोशिश की है तो उसकी प्रशंसा हमें करनी है और हर छोटी उपलब्धि आत्मविश्वास की सीढ़ी बन सकती है।
1: जी हाँ,
0: हर बच्चा अलग होता है। किसी और से तुलना करने के बजाय श्रोता साथियों, उसके अपनी प्रगति पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। जब बच्चों को छोटी छोटी बातों में निर्णय लेने, जैसे कि कौन सी कहानी पढ़नी है, कौन सा खेल खेलना है, कौन सा चित्र बनाना है, इससे उनमें आत्मविश्वास आता है।
1: जी हाँ,
0: खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कहानी प्रतियोगिता और समूह गतिविधियां बच्चों को खुलने में मदद करती है।
1: बिल्कुल,
0: बच्चों को एकदम बड़े मंच पर भेजने के बजाय छोटे छोटे अवसर हमें देने हैं, जैसे कि परिवार के सामने कविता सुनाना, कक्षा में दो पंक्तियां बोलना, छोटे कार्यक्रमों में भाग लेना, धीरे धीरे उनका डर कम होगा।
1: बिल्कुल,
0: बच्चों को यह महसूस होना चाहिए कशिश कि गलती करना सामान्य बात है, गलतियों से सीख मिलती है, शर्म नहीं।
1: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे कि बच्चे तब खुलकर अपनी बात कहते हैं जब उन्हें सुरक्षित और स्नेहपूर्ण वातावरण मिलता है। तो ऐसे में घर का माहौल ऐसा होना चाहिए जहाँ बच्चा बिना डर के अपनी बात रख सके।
0: बिल्कुल
1: साथियों, बच्चों को धीरे धीरे लोगों के सामने बोलने का अवसर हमें देना चाहिए, जैसे कि परिवार के सामने कविता सुनाना, मेहमानों का स्वागत करना, छोटे समूहों में चर्चा करना, क्योंकि जो अंजलि जी छोटी सफलताएं होती हैं वो बड़े आत्मविश्वास का आधार बनती है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि जब बच्चा कुछ कहना चाहता है तो हमें उसकी बात को बीच में नहीं काटना है, उसकी भावनाओं और विचारों का सम्मान करना है। इससे श्रोता साथियों, बच्चों को ये लगेगा कि आप उसकी बात सुनते हैं और उसकी बात भी कुछ महत्व रखती है।
0: बिल्कुल कशिश,
1: साथ ही संवाद कौशल को भी विकसित करें, यानी कि बच्चों को बातचीत करने की कला आप सिखाएं, उनसे रोजाना दिन भर की गतिविधियों के बारे में चर्चा करें, खुले में प्रश्न पूछे साथियों, उन्हें अपने विचार व्यक्त करने के लिए भी प्रेरित आप कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: बच्चों को समझाएं कि गलती करना सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। यदि बच्चा गलती से नहीं डरेगा अंजलि जी, तो उसकी झिझक भी इससे कम होगी।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा, क्योंकि स्कूल केवल पढ़ाई का केंद्र नहीं है बल्कि व्यक्तित्व विकास स्थान भी है। शिक्षकों को चाहिए कि शर्मीले बच्चों को प्रोत्साहित करें, उनकी आलोचना न करें, उन्हें गतिविधियों में भाग लेने का अवसर दें।
1: बिल्कुल,
0: उनकी छोटी उपलब्धियों की सराहना करें। एक संवेदनशील शिक्षक कई बच्चों का जीवन बदल सकता है। माता पिता बच्चों के पहले शिक्षक होते हैं। यदि घर का वातावरण प्रेम, विश्वास और सहयोग से भरा होगा तो बच्चा अधिक आत्मविश्वासी बनेगा। बच्चे को यह भरोसा होना चाहिए कि अगर मैं गलती करूंगा तब भी मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा रहेगा।
1: जी हाँ,
0: यही विश्वास उसे झिझक से बाहर निकालता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ अगर बात करें श्रोता साथियों, तो शर्मिलेपन को दूर करने का समय अलग होता है। तो हम देखते हैं कि शर्मिलेपन को दूर करने में समय लगता है।
0: बिल्कुल,
1: बच्चे पर दबाव डालने के बजाय धैर्य पूर्वक उसका साथ दे और धीरे धीरे आप देखेंगे कि वह खुद ही आत्मविश्वासी बनने लगेगा।
0: जी हाँ,
1: क्योंकि हम देखते हैं अंजलि जी की आत्मविश्वास वह शक्ति है जो बच्चे को चुनौतियों का सामना करना सिखाती है। आत्मविश्वासी बच्चा अपनी बात स्पष्ट रूप से रख पाता है और नए अवसरों को भी अपनाता है।
0: बिल्कुल,
1: जिससे जीवन में आगे बढ़ने का साहस उसे मिलता है। इसलिए साथियों, बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करना उनके उज्जवल भविष्य की नींव तैयार करने जैसा कार्य है।
0: बिल्कुल कशिश, झिझक और शर्मिलापन बच्चों की कमजोरी नहीं है बल्कि एक ऐसी स्थिति है जिसे प्यार, धैर्य और सही मार्गदर्शन से बदला जा सकता है।
1: जी हाँ,
0: हर बच्चे के भीतर प्रतिभा, सपने और संभावनाएं छिपी होती हैं। जरूरत केवल इतनी है कि हम उन्हें ऐसा वातावरण दे जहाँ वे बिना डर के अपनी बात कह सके,
1: बिल्कुल
0: अपनी पहचान बना सके और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सके। याद रखिए श्रोता साथियों, बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत महंगे खिलौनों की या बड़ी सुविधाओं की नहीं होती बल्कि विश्वास, प्रोत्साहन और अपनेपन की होती है। हम हर बच्चे को यह एहसास दिलाएं कि उनकी आवाज महत्वपूर्ण है, उनके विचार मूल्यवान है और वह जैसा है वैसा ही सम्मान के योग्य है।
1: बिल्कुल,
0: इस तरीके की चीजें अगर हम बच्चों के साथ करेंगे तो हम देखेंगे कि बच्चों के अंदर जो झिझक है, जो शर्मिलापन है, वो अपने आप दूर हो जाएगा।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है और अब हम देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे दोस्तों को एक और प्यारा सा गीत यहाँ पर सुनवा दे हम।
0: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अब यहीं समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: बिल्कुल,
1: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। नमस्कार।

0: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: मैं अनिमाटी में जन्मी हूँ, अनिमाटी तकीस जाने जाऊँ हूँ। मैं खेत हंबारिया, बीज बोया, मैं पसंद बहाई वो मिश्रम करूँ। ऐसे बाप दादा ने जमीन आते बार अधिकार किन नती सूरी जन्म तक इस हकदार है। कानून ने आ बात मानी है, न पन्या पूटे एवं हक को ले सके, न रिवाज अना सच में बदली सके। बाप दादा ने जमीन सूर्य नो अधिकार, सूर्य नो हक, इन्हें पहचान।
0: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: આપણે ક્યારે વિચાર કર્યો હે કે જૈયા પેડની છાવમાં આપણે રહ હ યા આપણને કેટલી શાંતિ મળે હે, જીની હવામાં આપણે હાલ હ ઈ ભી આપણા થકી કઈ આશ રાખે હે। હવે અગર પેડ ને રહેંગા તો આપણે હરતે જીવંગા। પ્રકૃતિ આપણી જરૂરત નથી બલકી આપણી જિમ્મેદારી હે। એક પેડ લગાડંગા, પાણીને બચાડંગા ને આપણે ધરતીને જીવનદાન આલંગા। હવે પ્રકૃતિને બચાવો, ભવિષ્યને હદારો। હવે आज नाना ना कदम है, ये आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
3: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर एक कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश हमारी बातें रहने वाली है कि जब हमें काम करने का मौका मिले तो उसका पूरा फायदा उठाना है और नई बात सीखनी है।
0: बिल्कुल,
1: यानी कि श्रोता साथियों, जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी ऐसा अवसर अवश्य मिलता है जब उसे अपने हुनर को दिखाने, कुछ नया सीखने और आगे बढ़ने का मौका मिलता है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन बहुत से लोग इन अवसरों को पहचान नहीं पाते या फिर आलस, डर और आत्मविश्वास की कमी के कारण उन्हें गवा देते हैं।
0: जी हाँ।
1: सच तो ये है कि जीवन में सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो हर मौके को पूरा लाभ उठाते हैं और हर नई बात सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए कहा गया है श्रोता साथियों कि मौकों को पहचानो, सीखने की आदत अपने आप पनप जाएगी।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना साथियों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत सुनवा दें हम।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके और बातचीत की शुरुआत भी हो चुकी है कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि जब हमें काम करने का मौका मिलता है तो हमें उसका पूरा फायदा उठाना है। साथ ही हर बात नई सीखनी है। श्रोता साथियों,
1: बिल्कुल
0: हम देख सकते हैं कि आज का जो ये विषय है जागृति जी, वो हमारे युवाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि युवावस्था केवल सपने देखने का समय नहीं होता। हम देखते हैं कि बल्कि सीखने, मेहनत करने और खुद को मजबूत बनाने का समय भी माना जाता है।
1: जी हाँ,
0: क्योंकि श्रोता साथियों, जीवन में हर किसी को नए नए अवसर तो मिलते ही रहते हैं, लेकिन सफल वही होते हैं जो इन अवसरों को पहचान ले और उनका पूरा उपयोग करे। जागृति जी,
1: बिल्कुल
0: हम देखते हैं कि आज का समय बहुत तेजी से बदल रहा है। हर दिन नई तकनीकें आ रही हैं और काम करने के तरीके भी धीरे धीरे बदल रहे हैं और प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में दोस्तों केवल डिग्री होना आपके लिए काफी नहीं होगा, बल्कि हर दिन कुछ नया सीखने की आदत भी आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकती है।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि हम देखते हैं कि आज का समय तेजी से बदल रहा है। हर दिन नई तकनीक, नए विचार और नए तरीके सामने आ रहे हैं, जैसा कि अभी आपने बताया था।
0: बिल्कुल,
1: यदि हम समय के साथ खुद को नहीं बदलेंगे और नई बातें नहीं सीखेंगे श्रोताओं, तो हम पीछे रह जाएंगे। इसीलिए जब भी हमें कोई काम करने का अवसर मिले तो हमें उसे पूरे मन से करना होगा।
0: जी जी।
1: चाहे वो छोटा काम हो, बड़ा काम हो, हर काम हमें कुछ नया सिखा कर ही जाता है। और कहा भी गया है कि हर काम अनुभव देता है और अनुभव इंसान को बेहतर बनाता है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि केवल बड़ी नौकरियां, बड़ा मंच मिलने पर ही मेहनत करनी होगी, लेकिन सच्चाई ये है कि छोटी शुरुआत ही हमें बड़े सपनों तक पहुंचाती है।
0: बिल्कुल,
1: एक छोटा अवसर भी इंसान की जिंदगी बदल सकता है। यदि कोई विद्यार्थी स्कूल में भाषण देने का मौका पाता है और पूरे आत्मविश्वास से प्रयास करता है कशिश, तो वही अनुभव आगे चलकर उसे अच्छा वक्ता भी बना सकता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि जीवन में अवसर हमेशा बड़े रूप में है, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार श्रोता साथियों, छोटे छोटे मौके भी भविष्य की बड़ी सफलता बन जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि किसी को छोटी नौकरी मिलती है तो किसी को प्रशिक्षण का मौका। जागृति जी,
1: जी हाँ,
0: किसी को किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ काम करने का अवसर भी प्राप्त होता है। तो किसी को हम देखते हैं कि समाज के बीच काम करने का भी मौका मिलता है।
1: जी हाँ
0: दोस्तों, ऐसे में समझदार व्यक्ति इन छोटे मौकों को भी गंभीरता से लेता है और बहुत से युवा ये सोचकर इस मौके को छोड़ देते हैं जागृति जी, कि इसमें पैसा कम है, उन्हें इसमें नाम नहीं मिलेगा या फिर काम बहुत छोटा है। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि इतिहास इस बात का गवाह है कि बड़े लोग अक्सर छोटे कामों से ही आगे बढ़ पाए हैं।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि काम करने का मौका हमें जिम्मेदारी सिखाता है। जब हम किसी काम को पूरी ईमानदारी और लगन से करते हैं, तब हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है।
0: बिल्कुल,
1: हम समझते हैं कि कठिन परिस्थितियों में कैसे काम करना है और समस्याओं का समाधान कैसे निकालना है। यही अनुभव आगे जीवन में काम आता है। हर नई बात सीखना जीवन को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा मंत्र है। श्रोता साथियों, हम कह सकते हैं कि सीखना केवल किताबों तक सीमित नहीं होता, हम लोगों से, परिस्थितियों से, गलतियों से और अपने अनुभवों से भी बहुत सारी बातें सीखते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसकी प्रगति भी रुक जाती है। इसीलिए हमेशा जिज्ञासु बने रहना जरूरी है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। इसी के साथ दोस्तों, एक कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हर काम जागृति जी इंसान को कुछ ना कुछ जरूर सिखाता है। अगर हमारे युवा साथी दुकान पर काम करते हैं तो लोगों से व्यवहार करना वे सीखते हैं।
1: बिल्कुल,
0: अगर कोई खेत में काम करता है साथियों, तो वह धैर्य और मेहनत सीखता है। और अगर कोई रेडियो, मीडिया या फिर सामाजिक संस्था में काम करता है, तो वह संवाद और जिम्मेदारी सीखता है। जागृति जी,
1: जी हाँ,
0: यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक दोस्तों अनुभव ही है। किताबें ज्ञान जरूर देती हैं, लेकिन काम आपको अनुभव सिखाता है।
1: बिल्कुल,
0: आज हम देखते हैं कि बहुत से युवा केवल आरामदायक काम चाहते हैं। जागृति जी, वे ऐसा चाहते हैं कि शुरुआत से ही सब कुछ आसानी से उन्हें मिल जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपसे कहना चाहेंगे कि जीवन में आगे वही बढ़ता है जो कठिन परिस्थितियों से कुछ नया सीखता है।
1: जी हाँ कशिश, तो जैसा कि कशिश आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही है कि जब हमें काम करने का मौका मिले तो पूरा फायदा उठाए, क्योंकि हम उससे हर नई बात सीख सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी हमारे आज के इस कार्यक्रम में, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और हमारी बातें चल रही थी कि जब हमें काम करने का मौका मिले तो उसका फायदा उठाएं और हर नई बातों को सीखें। तो यही आपको श्रोता साथियों बताना चाहेंगे कि जब हमें कोई नया काम मिलता है तो शुरुआत में हमें डर लगता है और डर लगना भी स्वाभाविक है। कई बार हमें लगता है कशिश कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन डर के कारण पीछे हट जाना सही नहीं है श्रोता साथियों।
1: बिल्कुल,
0: जो लोग चुनौतियों का सामना करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। नई जिम्मेदारियां ही इंसान को मजबूत बनाती है और हर नया काम हमें नई सोच देता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपको बताए कि यदि कोई छात्र स्कूल के कार्यक्रम में भाग लेता है कशिश, तो उसे टीम वर्क, समय प्रबंधन और अनुशासन जैसी बातें सीखने को मिलती है।
1: बिल्कुल,
0: इसी तरह नौकरी करने वाला व्यक्ति नए लोगों से मिलकर व्यवहार और नेतृत्व की कला सीखता है। कई बार लोग ये सोचकर अवसर छोड़ देते हैं श्रोताओं कि उन्हें तुरंत सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। लगातार सीखने और लगातार मेहनत करने से धीरे धीरे व्यक्ति निपुण बनता है।
1: बिल्कुल,
0: एक किसान भी बीज बोने के तुरंत बाद फल की उम्मीद नहीं कर सकता, बल्कि धैर्य रखकर मेहनत करता है। इसलिए कहा गया है कि मेहनत का फल समय पर जरूर मिलता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। इसके विपरीत अगर देखें तो इंसान अगर सीखना ही बंद कर दे तो उसका विकास रुक सकता है।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, क्योंकि हम देख रहे हैं कि समय बदल रहा है तो समय के साथ हमें खुद को भी बदलना होगा। आज जागृति जी, मोबाइल चलाना, कंप्यूटर को समझना, इंटरनेट का उपयोग करना और लोगों से संवाद करना, साथ ही टीम में काम करना और समय का सही उपयोग करना, ये सब जरूरी कौशल बन चुके हैं।
0: जी हाँ,
1: ऐसे में जो युवा सीखने के लिए तैयार रहते हैं उनके लिए अवसरों की कमी नहीं रहती, लेकिन जो युवा बैठे रहते हैं और कह सकते हैं कि आसान काम या फिर काम चोरी के चक्कर में ही बैठे रहते हैं, तो उन्हें अवसर होते हुए भी नहीं मिल पाते।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में हमारे युवा साथियों को नई बातें सीखनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों नई बातें सीखने से सोच विकसित होती है, आत्मविश्वास आपका बढ़ता है, काम की गुणवत्ता बेहतर होती है, व्यक्ति की पहचान बनती है और साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं।
0: जी हाँ,
1: याद रखें श्रोता साथियों, सीखना केवल स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं होना चाहिए, जीवन का हर दिन भी हमें एक नया पाठ पढ़ाता है।
0: बिल्कुल, और हम कह सकते हैं कशिश की जीवन में सफल लोग वही होते हैं जो हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीख लेते हैं। यदि उन्हें हार मिलती है तो वे उससे सबक लेते हैं, यदि जीत मिलती है तो वे और बेहतर बनने की कोशिश करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: सीखने की यही आदत ही उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। नई बातें सीखने से हमारा दिमाग सक्रिय रहता है, हमारी सोच विकसित होती है और हम हर समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं।
1: जी जी,
0: जो व्यक्ति नई जानकारी प्राप्त करता है उसका आत्मविश्वास और व्यक्तित्व दोनों मजबूत हो जाते हैं। काम करने के अवसर केवल पैसा कमाने के लिए नहीं होते श्रोताओं, बल्कि वे हमें जीवन जीने के तरीके भी सिखाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जब हम मेहनत करते हैं तब हमें दूसरों की मेहनत का मूल्य भी समझ में आता है।
1: जी हाँ,
0: हम विनम्र बनते हैं और जिम्मेदार नागरिक भी बनते हैं।
1: बिल्कुल,
0: कई महान लोगों की सफलता के पीछे उनके सीखने की आदत रही है कशिश। उन्होंने हर छोटे अवसर को गंभीरता से लिया और कभी सीखना बंद ही नहीं किया। यही कारण है कि वे सामान्य लोगों से अलग पहचान बना सके।
1: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे कि बहुत से लोग काम को मजबूरी भी समझते हैं, लेकिन दोस्तों समझदार व्यक्ति काम को अवसर समझता है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि काम हमें केवल पैसा ही नहीं देता बल्कि पहचान, सम्मान और आत्मविश्वास भी देता है। जब साथियों हम पूरी लगन से काम करते हैं तो इससे हमारा व्यक्तित्व निखरता है।
0: जी हाँ,
1: धीरे धीरे लोग हम पर भरोसा करने लगते हैं और यही भरोसा जागृति जी आगे नए अवसरों का रास्ता खोलता है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में श्रोता साथियों आप हर दिन खुद से ये पूछिए कि आज मैंने क्या नया सीखा। याद रखें श्रोता साथियों, कोई भी काम छोटा नहीं होता, हर काम आपको अनुभव देगा। जो पूछता है वही सीखता है श्रोता साथियों। संकोच जो है वो ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है।
0: जी हाँ,
1: यानी कि जागृति जी, अगर हम इस बात को एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से श्रोता साथियों को बताएं, तो दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे आसपास ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने छोटे अवसरों से शुरुआत की है।
0: बिल्कुल,
1: और फिर आगे जाकर बड़ी सफलता प्राप्त की है।
0: जी हाँ,
1: जैसे कि किसी ने छोटी दुकान से शुरुआत की तो किसी ने मजदूरी से, और किसी ने खेत से, तो किसी ने रेडियो मीडिया से श्रोता साथियों।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन उनमें एक बात ये समान थी कि उन्होंने हर अवसर से कुछ नया सीखा और कभी सीखना बंद नहीं किया।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि हमें ये समझना होगा कि अवसर बार बार नहीं आते, इसलिए जब भी कोई मौका मिले तो श्रोताओं उसे पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपनाना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: यदि हम हर अवसर का सही उपयोग करेंगे तो धीरे धीरे हमारी क्षमताएं बढ़ेंगी और हम जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे।
1: जी हाँ,
0: एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे श्रोता साथियों कि एक लड़का शहर में एक छोटी सी दुकान पर काम करता था। वो हर दिन अपने मालिक को ध्यान से देखता था और नई बातें सीखता था।
1: बिल्कुल,
0: खाली समय में वो हिसाब किताब और ग्राहकों से व्यवहार करना सीखता रहा। कई वर्षों बाद उसी लड़के ने अपनी खुद की बड़ी दुकान शुरू की और सफल व्यापारी बन गया। उसकी सफलता का रहस्य यही था श्रोता साथियों कि उसने हर छोटे काम और हर नए अनुभव से सीखने की कोशिश की।
1: बिल्कुल,
0: कहा भी गया है कि जो सीखता रहता है वही आगे बढ़ता रहता है। आज के युवाओं को चाहिए वे हर अवसर को सीखने का माध्यम बनाए, चाहे घर का काम हो, पढ़ाई हो, खेल हो या नौकरी, हर जगह कुछ नया सीखने का अवसर छिपा होता है। श्रोताओं, यदि हम मेहनत करेंगे, धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चुनेगी।
1: बिल्कुल,
0: हम कह सकते हैं कि जीवन में मिलने वाले हर अवसर का लाभ पूरा उठाना चाहिए।

0: और हमेशा नई बातें सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। यही आदतें हमें आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और सफल बनाती है। कशिश, समय कभी रुकता नहीं, इसलिए हमें भी रुकना नहीं है। श्रोताओं, सीखते रहना और मेहनत करते रहना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, ऐसे में हम कार्यक्रम के अंत में हमारे साथियों को यही कहना चाहेंगे कि श्रोता साथियों, जीवन में हर दिन कुछ नया सिखाने की कोशिश करता रहता है।
0: बिल्कुल,
1: फर्क सिर्फ इतना है कि कोई व्यक्ति उसको सीख की तरह अपनाता है तो कोई उसे अनदेखा कर देता है। इसलिए जब भी आपको काम करने का मौका मिले दोस्तों, उसे केवल जिम्मेदारी न समझे बल्कि अपने भविष्य को बेहतर बनाने का अवसर समझे। अपने हुनर पर विश्वास रखिए साथियों, और अपने समय की कद्र कीजिए और अपने सपनों को मेहनत की ताकत दीजिए। यकीन मानिएगा साथियों कि एक दिन यही मेहनत आपकी पहचान बनेगी और आपकी सफलता दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि कशिश, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की, समय उचला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा जरूर लेंगे, पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल,

0: श्रोताओं इस गीत के साथ ही विदा लेना चाहेंगे। अंत में बस आपसे यही कहना चाहेंगे, मौके को मत गवाइए, सीखते जाओ और जीवन में आगे बढ़ते जाओ। इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ आपके साथ विदा लेते हैं। उम्मीद है कि जो बातें रही कार्यक्रम युवाओं की आवाज के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: बिल्कुल।
0: आपको हमारा आज का कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी हमारे आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को। नमस्कार।

भाई ने बोलो घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ साथियों, हम लेकर हाजिर है एक अनोखे विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं, अगर समाज बोल सकता तो वो हमसे क्या कहता। जरा सोचिए, जिस समाज में हम रहते हैं, जहाँ हम हंसते हैं, रोते हैं, सपने देखते हैं अंजलि, अगर वही समाज अचानक हमारे सामने खड़ा होकर बोलने लगे तो क्या वो हमारी तारीफ करेगा या हमें आईना दिखाएगा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही बात करेंगे कि अगर समाज बोल सकता तो वो हमसे क्या कहता।
0: बिल्कुल। तो जागृति जी, इस विषय पर कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातें तो ढेर सारी रहेंगी, लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम हमारे साथियों को सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में वाग रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय बताया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि अगर समाज बोल सकता तो क्या कहता।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो आज जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि अगर समाज बोल सकता तो क्या कहता हमसे, क्या कहता श्रोता साथियों, कि वो हमसे खुश है या फिर कुछ शिकायतें भी हैं। आज हम समाज की उसी अनकही आवाज को सुनने की कोशिश करेंगे जिसके माध्यम से हम जान पाएंगे कि समाज आखिरकार हमसे क्या कहता है।
0: बिल्कुल,
1: समाज हम देखते हैं कि हम सब मिलकर बनाते हैं, हमारे विचार, हमारे व्यवहार, हमारे फैसलों से ये बनता है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि जो समाज हम बनाते हैं आखिरकार उस समाज में खुशी होती है या कुछ शिकायतें भी होती हैं। समाज हमें यही समझाना चाहता है कि हम ही समाज है, अगर हम बदलेंगे तो समाज अपने आप बदल जाएगा।
0: बिल्कुल अंजलि, और समाज ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के विचारों, भावनाओं, संस्कारों और व्यवहारों का जीवंत संगम है। हम सभी मिलकर समाज बनाते हैं, लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि हमारे छोटे छोटे कर्म ही समाज की दिशा और दशा तय करते हैं।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, कभी आपने सोचा है अगर समाज बोल सकता तो वो हमसे क्या कहता, क्या वो हमारी प्रशंसा करता या हमारी कमियों का आईना दिखाता।
1: बिल्कुल,
0: इस प्रश्न के माध्यम से हम सच्चे स्वराज की परिकल्पना को समझ सकते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि समाज केवल लोगों का समूह नहीं होता बल्कि ये विचारों, संस्कारों, परंपराओं, रिश्तों और जिम्मेदारियों का जीवन ताना बाना है।
0: बिल्कुल,
1: हम सब मिलकर समाज बनाते हैं, लेकिन अक्सर हम यह भूल जाते हैं श्रोता साथियों कि समाज भी हमारी तरह महसूस करता है। वह हमारे व्यवहार, हमारी सोच, हमारे निर्णयों से प्रभावित होता है। अगर समाज को बोलने की शक्ति मिल जाए तो वह सिर्फ अपनी खुशियां ही नहीं बल्कि अपनी पीड़ा, चिंता और उम्मीदें भी व्यक्त करेगा।
0: जी हाँ,
1: वह हमें आईना दिखाएगा कि हमारी अच्छाइयों का भी और हमारी कमियों का भी।
0: बिल्कुल,
1: अगर समाज बोल सकता तो सबसे पहले वह यही कहता कि मैं कोई अलग इकाई नहीं हूँ, मैं तुम सबका ही प्रतिबिंब हूँ। हम अक्सर समाज को दोष देते हैं कि समाज ऐसा है, समाज वैसा है, लेकिन श्रोता साथियों, समाज हमसे अलग नहीं है। जब कोई व्यक्ति गलत करता है तो उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। समाज शायद हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुम बदलोगे तो मैं भी बदल जाऊंगा, अगर
0: हाँ,
1: तुम सुधरोगे तो मैं भी बेहतर हो जाऊंगा।
0: बिल्कुल अंजलि, सच्चा स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है, यह हमारे विचारों, व्यवहारों और जिम्मेदारियों की स्वतंत्रता और शुद्धता का प्रतीक है।
1: बिल्कुल,
0: स्वराज का अर्थ है स्वयं पर शासन करना, अपने भीतर अनुशासन और नैतिकता को स्थापित करना। यदि समाज बोल सकता तो वो सबसे पहले यही कहता कि तुम आजाद तो हो पर क्या तुम्हारे विचार भी आजाद हैं? आज भी हमारा समाज कई बंधनों में जकड़ा हुआ है अंजलि। जाति, धर्म, भाषा और वर्ग के आधार पर विभाजन आज भी देखने को मिलता है। समाज कहता है तुमने मुझे टुकड़ों में बांट दिया, और फिर कहते हैं कि हम एक हैं। श्रोता साथियों, ये विडम्बना ही है कि हम एकता की बातें तो करते हैं लेकिन व्यवहार में भेदभाव दिखाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: सच्चा स्वराज तभी संभव है श्रोता साथियों जब हर व्यक्ति को समान दृष्टि से देखा जाए और हर इंसान को उसका सम्मान मिले।
1: बिल्कुल जागृति जी, अगर समाज बोल सकता तो वो यह भी कहता कि आज इंसान अपने स्वार्थ में इतना डूब गया कि सामूहिक भलाई को भूल चुका है। पहले लोग हम में जीते थे, अब मैं में जीने लगे हैं।
0: बिल्कुल,
1: आज हर कोई अपने फायदे के बारे में सोचता है, चाहे उससे दूसरों को नुकसान ही क्यों न हो। यही स्वार्थ श्रोता साथियों धीरे धीरे समाज की जड़ों को कमजोर कर रहा है। समाज की आत्मा रिश्तों में बसती है, परिवार, दोस्ती, पड़ोसी, अपनापन। अगर समाज बोल पाता तो शायद रोते हुए कहता, तुम्हारे पास सब कुछ है, सुविधाएं, तकनीक, साधन, लेकिन तुम्हारे पास समय और अपनापन नहीं है। आज मोबाइल और सोशल मीडिया ने लोगों को जोड़ने के बजाय कई बार दूर कर दिया है।
0: बिल्कुल,
1: और लोग पास रहकर भी दूर है।
0: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही है हमारे श्रोता साथियों के साथ में कि अगर समाज बोल सकता तो क्या कहता, ये बातें निरंतर हमारी यूं ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हम ढेर सारी बातों को जान रहे थे, हम समाज की पीड़ा में रिश्ते कमजोर कैसे हो रहे हैं उसको लेकर बात कर रहे थे। यही बात करें तो श्रोता साथियों, आज के समय में समाज का एक बड़ा हिस्सा दिखावे और प्रतिस्पर्धा में उलझ गया है।
1: बिल्कुल,
0: समाज कहता तुमने सच्चाई और सादगी को छोड़कर मुझे केवल दिखावे का मंच बना दिया है। लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए जी रहे हैं, न कि खुद को समझने के लिए। इससे समाज में असंतोष और तुलना बढ़ रही है। समाज को सबसे ज्यादा चिंता नई पीढ़ी की होती है। वह कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे आगे बढ़ें, लेकिन सही दिशा में केवल सफलता नहीं बल्कि संस्कार भी जरूरी हैं।
1: बिल्कुल,
0: आज के युवा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं जागृति जी, जो कि अच्छी बात है, लेकिन अगर वे नैतिकता और जिम्मेदारी को भूल जाए तो समाज का संतुलन ही बिगड़ सकता है।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि समाज की एक और महत्वपूर्ण आवाज युवाओं के लिए होती है। वो कहता है मेरे युवाओं, तुम मेरे भविष्य हो, लेकिन तुम दिशा से भटक रहे हो। आज का युवा सोशल मीडिया और दिखावे की दुनिया में उलझता जा रहा है अंजलि। वो अपनी असली पहचान और क्षमता को भूल रहा है। समाज चाहता है कि युवा अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाए, अपने कौशल को पहचाने और राष्ट्र निर्माण में योगदान दे।
0: बिल्कुल,
1: युवा शक्ति अगर जागरूक और जिम्मेदार हो जाए तो समाज में क्रांति आ सकती है। साथियों, नारी के विषय में भी समाज बहुत कुछ कहना चाहता है।
0: जी जी,
1: तुम नारी को शक्ति का प्रतीक कहते हो, लेकिन क्या उसे वास्तव में सम्मान देते हो? आज भी महिलाओं को कई क्षेत्रों में भेदभाव और असुरक्षा का सामना करना पड़ता है अंजलि।
0: जी जी,
1: समाज स्पष्ट करता है श्रोता साथियों कि जहां नारी का सम्मान नहीं होता वहां सच्चा स्वराज नहीं हो सकता। नारी सशक्तिकरण केवल नारों से नहीं बल्कि व्यवहार में बदलाव से संभव है।
0: बिल्कुल जागृति जी, हम देखते हैं कि समाज केवल शिकायत ही नहीं करता, वह उम्मीद भी रखता है।
1: बिल्कुल,
0: वह हमें प्रेरित करते हुए कहता है कि अभी भी देर नहीं हुई है, अगर तुम चाहो तो सब कुछ बदल सकते हो। छोटे छोटे बदलाव जैसे कि ईमानदारी, सहयोग, संवेदनशीलता समाज को फिर से मजबूत बना सकते हैं। अगर समाज बोलता तो वह हमें यह भी सीख जरूर देता कि तुम अकेले नहीं हो, एक दूसरे का सहारा बनो, तभी मैं मजबूत बन पाऊंगा।
1: जी हाँ,
0: जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो न केवल श्रोता साथियों उनका जीवन बेहतर होता है बल्कि समाज भी मजबूत होता है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि यदि समाज बोल सकता है तो वो हमें ये भी सिखा सकता है कि बदलाव बाहर से नहीं भीतर से शुरू होता है। वो कहता है मैं तभी बदलूंगा जब तुम बदलोगे।
0: बिल्कुल,
1: हम अक्सर दूसरों को दोष देते हैं लेकिन अपने भीतर झांकने से कतराते हैं। श्रोताओं, सच्चा स्वराज आत्म परिवर्तन से शुरू होता है।
0: बिल्कुल,
1: जब हर व्यक्ति अपने अंदर ईमानदारी, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी को विकसित करेगा तब समाज अपने आप सुधर जाएगा अंजलि। यही अगर आज के समय में नैतिक मूल्यों का पतन भी हो रहा है तो वो भी समाज के लिए चिंता का विषय है।
0: जी जी,
1: समाज कहता है कि तुम आधुनिकता के नाम पर अपने संस्कारों को भूल रहे हो। प्रगति आवश्यक है लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ाव भी उतना ही जरूरी है। सच्चा स्वराज आधुनिकता और परंपरा के संतुलन में ही निहित है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि समाज बोल सकता है तो वो हमें यही संदेश देता है कि तुम्हारे छोटे छोटे प्रयास ही बड़े बदलाव ला सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: एक ईमानदार कदम, एक सच्चा निर्णय, एक सकारात्मक सोच, ये सभी मिलकर समाज को बदल सकते हैं। हमें ये समझना होगा श्रोता साथियों कि समाज कोई बाहरी शक्ति नहीं है बल्कि हम स्वयं ही समाज है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आज की इन बातों से शायद हम सबके मन में एक ही सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्या सच में समाज बदल सकता है। तो श्रोता साथियों, इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल बदल सकता है और इसकी शुरुआत हमसे ही होगी। अगर समाज सच में बोल पाता तो वो हमें सिर्फ हमारी गलतियां नहीं गिनाता बल्कि हमें सही रास्ता भी दिखाता। वह हमें यह समझाता कि समाज कोई बाहरी ताकत नहीं है बल्कि यह हमारे रोज के छोटे छोटे व्यवहार से बनता है। जब हम किसी की मदद करते हैं, जब हम बिना भेदभाव के किसी को अपनाते हैं, जब हम सच का साथ देते हैं, तब हम समाज को मजबूत बनाते हैं। लेकिन जब हम नफरत फैलाते हैं, तुलना करते हैं या सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, तब हम अनजाने में समाज को कमजोर कर देते हैं। समाज शायद हमसे आखिरी में यही कहता कि मैं तुम्हारा आईना हूँ, जैसे तुम बनोगी वैसे ही मैं दिखूंगा। अगर तुम में इंसानियत जिंदा रहेगी तो मैं भी खूबसूरत बन जाऊंगा।
1: बिल्कुल,
0: इस तरीके से हम कह सकते हैं जागृति जी कि बदलाव की शुरुआत दूसरों से उम्मीद करने से नहीं, खुद से करने से होती है।
1: जी हाँ, तो श्रोता साथियों, आपको इतना समझना जरूरी है कि अगर समाज बोल पाता तो वो हमें दोष देने नहीं बल्कि जगाने आता। वो हमें ये याद दिलाता कि बदलाव किसी और से नहीं, हमसे शुरू होता है।
0: बिल्कुल,
1: सच्चा स्वराज कोई दूर का सपना नहीं है, हमारे हर छोटे छोटे फैसले में छुपा है, हमारी ईमानदारी में छुपा है, हमारी सोच में छुपा है और हमारे व्यवहार में छुपा है।
0: बिल्कुल,
1: जब हम अपने भीतर के स्वार्थ, भेदभाव और लापरवाही को छोड़ देंगे तभी समाज सच में आजाद हो जाएगा। आज जरूरत है अंजलि, हम सिर्फ अच्छे नागरिक बनने की बात न करें बल्कि उसे अपने जीवन में उतारें, क्योंकि एक व्यक्ति का बदलाव ही पूरे समाज की दिशा को बदल सकता है।
0: बिल्कुल।
1: तो साथियों आपसे कहना चाहेंगे कि सच्चा स्वराज किसी कागज पर नहीं मिलता, ये हर इंसान के चरित्र में बसता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो हम हमारे श्रोता साथियों को यही कहना चाहेंगे कि हम नफरत नहीं समझदारी फैलाएंगे, हम दूरी नहीं रिश्ते बनाएंगे, हम शिकायत नहीं समाधान बनेंगे। क्योंकि याद रखिए कि जब इंसान बदलता है तभी समाज बदलता है, और जब समाज बदलता है तभी देश आगे बढ़ता है। इन्हीं उम्मीदों के साथ जागृति जी, अब कार्यक्रम सच्चा स्वराज से हम विदा लेना चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे साथियों को हम एक और प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें।
1: बिल्कुल।

0: साथियों इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज में वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वाकथरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3270001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: अरे गोरी, इतनी सुस्त क्यों दिख रही हो? कुछ खाया पिया नहीं है क्या?
1: अरे दीदी, क्या करूं? कुछ खाने पीने का तो मन ही नहीं करता है मेरा।
0: अरे गोरी, ये तो गर्भावस्था में होता ही है, जी मचलाएगा, खाने का मन नहीं करेगा। पर अभी तो खाना ज्यादा जरूरी है, और खाने में भी तुम्हें दूध, दही, दालें, हरी सब्जियां खानी चाहिए। इससे तुम्हारे बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा।
1: अरे वाह दीदी, अगर ये सब खाने से बच्चे का विकास अच्छा होगा तो मैं आज से ही दूध पीना शुरू कर दूंगी, और साथ में हरी सब्जियां और दाल भी खूब खाऊंगी।
0: ये हुई ना बात गोरी।
2: याद रहे, गर्भावस्था में सबसे जरूरी है पोषक खाना। वागर रेडियो द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: भाई बोनो, घर तक के निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान
1: होवे। इटले गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा।
0: सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। भारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
0: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपनी साथी मनीषा पटेल
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेशर
2: और आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर का प्यार भरा
3: नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
2: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
2: मनीषा और कशिश, हम कहते हैं कि स्वास्थ्य का खजाना छिपा है अपनी मिट्टी में।
0: बिल्कुल।
2: जो अपनाए देसी तरीका, खुशियाँ आए जीवन की चिट्ठी में। यानी कि श्रोता साथियों, आज के आधुनिक दौर में बाजार में तरह तरह के रंग बिरंगे पेय पदार्थ उपलब्ध हैं। ठंडे पेय, एनर्जी ड्रिंक, कई तरह के पैकेट वाले जूस लोगों की पसंद बनते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल।
2: लेकिन इन सब के बीच हमारे पारंपरिक देसी पेय पदार्थ धीरे धीरे पीछे छूटते जा रहे हैं।
0: जी हाँ।
2: कभी घरों में छाछ, मट्ठा, नींबू पानी, बेल का शरबत, सत्तू का घोल, जौ का पेय और अलग अलग प्रकार के हर्बल पेय आम हुआ करते थे। कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों कि ये केवल स्वाद ही नहीं देते बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने का काम भी करते थे।
0: बिल्कुल।
2: आज कार्यक्रम में हम यही जानेंगे कि किस तरीके से देसी पेय पदार्थ हमारे स्वास्थ्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी। लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
2: जी जी।
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
2: जी
1: बिल्कुल।
2: हाँ।
1: तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।

0: साथियों, सदियों से हमारे गांवों, कस्बों और शहरों में ऐसे अनेक देसी पेय पदार्थों का उपयोग होता आया है जो न केवल स्वाद में बेहतरीन है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी उतने ही लाभकारी हैं।
1: जी जी,
0: आज अब श्रोता साथियों, बाजार में अधिक चीनी वाले और रासायनिक तत्वों से युक्त पेय पदार्थों का चलन बढ़ रहा है, तब एक बार फिर लोगों का ध्यान अंजलि जी पारंपरिक और प्राकृतिक पेय पदार्थों की ओर आकर्षित हो रहा है।
1: जी हाँ,
0: क्योंकि हम देखते हैं कि जो देसी पेय पदार्थ होते हैं वो केवल प्यास बुझाने का माध्यम नहीं होते, बल्कि वे शरीर को ऊर्जा देने के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और पाचन को सुधारने में भी मदद करते हैं।
2: बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि भारत में प्राचीन समय से ही विभिन्न प्रकार के देसी पेय पदार्थों का सेवन किया जा रहा है। छाछ, लस्सी, नींबू पानी, सत्तू का शरबत, नारियल पानी, बेल का शरबत और गन्ने का रस जैसे पेय पदार्थ न केवल स्वादिष्ट होते हैं साथियों, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी होते हैं।
1: बिल्कुल,
2: विशेष रूप से हम देखते हैं कि गर्मियों के मौसम में ये पेय शरीर को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करते हैं।
1: जी जी बिल्कुल, मनीषा आपने सही कहा। हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि हमारे पूर्वजों ने बिना किसी वैज्ञानिक उपकरण के भी जीवन शैली के ऐसे तरीके अपनाए थे जो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी थे।
2: जी हाँ,
1: गर्मी में छाछ और आम का पन्ना, बरसात में हर्बल पेय और सर्दियों में अदरक और तुलसी वाले पेय का सेवन किया जाता था।
2: ये
1: केवल परंपरा नहीं थी श्रोता साथियों, बल्कि मौसम के अनुसार शरीर को स्वस्थ रखने की एक समझदारी भरी व्यवस्था थी। आज विज्ञान भी स्वीकार करता है कि प्राकृतिक पेय शरीर के लिए कई तरीके से लाभप्रद हो सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: यही अब बात करें कि कौन कौन से पेय पदार्थ हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। तो पहली बात आती है छाछ की। कहते हैं कि छाछ जो है वो पाचन का मित्र है। भारतीय भोजन में छाछ का विशेष स्थान है।
0: बिल्कुल,
1: भोजन के बाद एक गिलास छाछ पीने से पाचन बेहतर होता है, पेट की गर्मी कम होती है, गैस और अपच की समस्या में राहत मिलती है, शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि गर्मियों में छाछ शरीर को ठंडक देने का कार्य करती है। गाँव में आज भी खेतों में काम करने वाले लोग छाछ को ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत मानते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। इसी के साथ अगर बात करें सत्तू के शरबत की, जिसे ग्रामीण भारत की ऊर्जा कहा जाता है।
1: बिल्कुल,
0: तो हम देखते हैं श्रोता साथियों कि सत्तू जो है वो भुने हुए चने या जो से तैयार किया जाता है।
2: जी हाँ,
0: साथ ही राजस्थान और उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में इसका उपयोग बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है।
1: जी जी,
0: इसके श्रोता साथियों ढेर सारे लाभ होते हैं, जैसे कि ये लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर को ठंडक देता है, लू से बचाव करता है, साथ ही प्रोटीन और फाइबर से भी भरपूर होता है।
1: जी हाँ,
0: हम देखते हैं कि जब हम सत्तू के शरबत का सेवन करते हैं अंजलि जी, तो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस यह कराता है और साथ ही शरीर में पानी की कमी भी नहीं होने देता। दोस्तों, खेतों में काम करने वाले लोग जो है वो आज भी सत्तू को प्राकृतिक एनर्जी ड्रिंक के रूप में उपयोग में लेते हैं।
2: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारी श्रोता साथियों से बातें चल ही रही हैं और ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे, लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों हम बातें कर रही थी देसी पेय पदार्थों के स्वास्थ्य लाभ को लेकर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि देसी पेय पदार्थ शरीर में पानी की कमी को पूरा करते हैं।
2: बिल्कुल
0: गर्मी के मौसम में अधिक पसीना निकलने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसे छाछ, नींबू पानी और नारियल पानी जैसे पेय पदार्थ आसानी से पूरा कर देते हैं।
1: बिल्कुल
0: साथ ही हम देखते हैं कि ये हमारी पाचन शक्ति को भी मजबूत बनाते हैं।
2: बिल्कुल
0: छाछ और लस्सी में मौजूद लाभकारी बैक्टीरिया पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं। इसके सेवन से भोजन आसानी से पचता है, साथ ही गैस, अपच और कब्ज जैसी समस्याओं से भी हमें राहत मिलती है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही बात करें नींबू पानी की, तो श्रोता साथियों नींबू पानी शायद सबसे आसान और सबसे उपयोगी देसी पेय है। इसके कई सारे लाभ हैं। ये शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता, विटामिन सी प्रदान करता है, थकान कम करता है और गर्मी में राहत भी देता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में ये सहायक होता है। गर्मी के दिनों में यह एक प्राकृतिक ऊर्जा पेय की तरह काम करता है। अगर यही बात करें मनीषा और कशिश बेल के शरबत की, तो श्रोता साथियों बेल का फल आयुर्वेद में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है, पेट संबंधित समस्याओं से लाभ पहुँचाता है, गर्मी से बचाता है और शरीर को ठंडक देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा लोकप्रिय पेय है।
2: जी हाँ अंजलि जी, अब यही बात करते हैं आम पन्ना की। दोस्तों कच्चे आम से तैयार आम पन्ना भारतीय गर्मियों का प्रसिद्ध पेय है। हम देखते हैं कि इसके ढेर सारे स्वास्थ्य लाभ है, जैसे कि ये लू से तो बचाव करता ही है, साथ ही शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाकर रखता है।
1: बिल्कुल
2: साथ ही इसे विटामिन सी का अच्छा स्रोत भी माना जाता है अंजलि जी। और श्रोता साथियों थकान और कमजोरी को दूर करने में भी ये मददगार है और हमारे पाचन को भी बेहतर बनाता है। देखा जाए श्रोता साथियों तो ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी आम पन्ना को गर्मियों का सबसे भरोसेमंद पेय माना जाता है। अब यही अगर हम बात करें नारियल पानी की, तो श्रोता साथियों नारियल पानी को प्रकृति का अमृत माना जाता है और साथ ही नारियल पानी जो है वो प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट्स का उत्कृष्ट स्रोत है।
0: बिल्कुल कशिश, यही अगर हम श्रोता साथियों को बताएं कि जौ के पानी का क्या स्वास्थ्य लाभ होते हैं, तो हम देखते हैं कि पुराने समय में स्वास्थ्य वर्धक पेय के रूप में इसका उपयोग किया जाता रहा है।
1: बिल्कुल
0: इसके कई सारे फायदे मिलते हैं श्रोता साथियों, जैसे कि हमारे पाचन में सहायता करता है, यह शरीर को हल्का और ऊर्जावान रखता है, गर्मियों में ठंडक प्रदान करता है, साथ ही साथियों स्वास्थ्य सुधार में भी यह सहायक होता है। साथ ही अंजलि जी और कशिश, हम कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि देसी पेय पदार्थ केवल पेय नहीं है बल्कि स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक रक्षक भी हैं।
1: बिल्कुल
0: इसमें पोषण, ऊर्जा, शीतलता और औषधीय गुणों का अद्भुत संगम होता है साथियों। यदि हम अपने दैनिक जीवन में छाछ, सत्तू, नींबू पानी, बेल का शरबत, आम का पन्ना, नारियल पानी जैसे देसी पेयों को शामिल करें, तो अनेक स्वास्थ्य समस्याओं से बच सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि स्वस्थ जीवन केवल महंगी दवाइयों या आधुनिक उत्पादों से नहीं बनता। कई बार अच्छे स्वास्थ्य का रास्ता हमारी अपनी रसोई, हमारी परंपराओं और हमारी जीवन शैली में छिपा होता है।
2: बिल्कुल
1: कह सकते हैं मनीषा और कशिश के देशी पेय पदार्थ इसी सोच का एक सुंदर उदाहरण है। ये हमें बताते हैं कि प्रकृति ने हमारी जरूरतों के अनुसार हर मौसम के लिए कुछ न कुछ विशेष दिया है। गर्मी में छाछ, आम पन्ना, बरसात में हर्बल पेय और सर्दियों में अदरक तुलसी का काढ़ा, ये केवल पेय नहीं बल्कि पीढ़ियों के अनुभव और ज्ञान की अमूल्य धरोहर है। आज जब जीवन तेजी से बदल रहा है, तब यह और भी जरूरी हो जाता है श्रोता साथियों कि हम अपनी पारंपरिक समझ को न भूलें। यदि हम स्थानीय और प्राकृतिक पेयों को अपने दैनिक जीवन में स्थान दें, तो हम न केवल अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी स्वस्थ आदतों की विरासत दे सकते हैं।
2: बिल्कुल
1: स्वस्थ समाज की शुरुआत स्वस्थ परिवार से होती है और स्वस्थ परिवार की शुरुआत सही खान पान से होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमें हमारे ये जो परंपरागत पेय पदार्थ हैं, उनका प्रयोग करने की जरूरत है, ताकि हम हमारे साथ साथ महिलाएं, पुरुष, हमारे जो वृद्ध जन घर में होते हैं, हमारे जो बच्चे होते हैं, उनको भी इनके प्रति जागरूक कर पाए।
2: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो ऐसे में हमारे श्रोता साथियों को ये याद रखना है कि दोस्तों स्वास्थ्य का रास्ता अक्सर हमारी अपनी परंपराओं से होकर ही गुजरता है। इसलिए बाजार की चमक दमक से प्रभावित होने के बजाय अपने घर और गांव की परंपराओं को आप अपनाइए।
1: बिल्कुल
2: जैसे कि एक गिलास छाछ, सत्तू या नींबू पानी केवल प्यास नहीं बुझाएगा बल्कि शरीर को नई ऊर्जा, मन को ताजगी और जीवन को संतुलन भी देगा साथियों।
1: बिल्कुल
2: ऐसे में देसी पेयों को अपनाइए स्वस्थ भारत के निर्माण में अपना योगदान दीजिए और साथ ही आने वाले पीढ़ियों को भी प्राकृतिक और स्वस्थ जीवन का संदेश दीजिए साथियों।
0: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
2: बिल्कुल, बिल्कुल।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम और हमारी स्वास्थ्यप्रद बातें अब यही समाप्त होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
2: इसी के साथ दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को,
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को,
2: और आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल को।
3: नमस्कार।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। अगर चाहो तेज दिमाग ने स्वस्थ जीवन, तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन।
0: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
1: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
0: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाय तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
1: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
0: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
1: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
0: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
0: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

हेलो दोस्तों, नमस्कार। कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर। जी हां श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम जब भी कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर हाजिर होते हैं तो आपसे बातचीत करते हैं एक नए प्रेरणादायक विषय को लेकर। तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नए विषय को लेकर मैं हाजिर हूँ। साथियों, आज का हमारा विषय है दूसरों की मदद करने का महत्व। क्योंकि दोस्तों हम देखते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अकेले कभी जीवन नहीं जी सकता। उसे जीवन के हर मोड़ पर किसी न किसी की सहायता की आवश्यकता तो पड़ती ही है। कभी परिवार हमारा सहारा बनता है दोस्तों, तो कभी हमारे मित्र, कभी हमारे शिक्षक, तो कोई अनजान व्यक्ति जो मुश्किल समय में हमारा मददगार बन जाता है। इसी कारण से दोस्तों सहायता और सहयोग मानव जीवन की सबसे बड़ी ताकत माने जाते हैं। हम देखते हैं कि दूसरों की मदद करना केवल एक अच्छा कार्य नहीं है, बल्कि ये इंसानियत की सबसे सुंदर पहचान होती है। साथियों, जिस व्यक्ति के मन में दूसरों के लिए दया, करुणा और सहयोग की भावनाएं होती है ना, वे वास्तव में महान कहलाते हैं। और हम देखते हैं कि मदद केवल पैसों से नहीं होती, बल्कि अच्छे शब्दों, सही मार्गदर्शन, समय देने और भावनात्मक सहारे से भी होती है। साथियों, तो आज के इस कार्यक्रम में मैं इसी विषय को लेकर आपसे ढेर सारी बातें करूंगी। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना दोस्तों पहले यहाँ पर एक प्यारे से गीत के साथ मनोरंजन हम करें। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर के साथ में।

दोस्तों, इस गीत के बाद मैं आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुकी हूँ और बातचीत की शुरुआत भी हो चुकी है कि आज के इस कार्यक्रम में हम जिस विषय को लेकर बातचीत कर रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं कि दूसरों की मदद करने का क्या महत्व है। साथियों, यहाँ पर अगर आपको बताऊं तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दूसरों की मदद करना एक बहुत अच्छा काम होता है, लेकिन उससे पहले हमारे लिए जानना ये जरूरी है कि ये जो दूसरों की मदद करना यानी कि सहायता करने की भावना है वो आखिर है क्या। दोस्तों, सहायता का मतलब होता है कि किसी जरूरतमंद व्यक्ति की कठिन समय में मदद करना। जब हम दोस्तों बिना स्वार्थ के किसी के दुख को कम करने का प्रयास करते हैं, किसी के कठिन समय में उसे संभालते हैं, उसका हौसला बढ़ाते हैं, तो वही सच्ची मदद कहलाती है। साथियों, हम देखते हैं कि आज के समय में लोग अपने जीवन में इतने व्यस्त हो गए हैं कि कई बार उन्हें दूसरों के दुख और संघर्ष के बारे में तो पता ही नहीं चलता, और हम देखते हैं कि उनका दुख उन्हें दिखाई भी नहीं देता है। साथियों, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों के दर्द को महसूस करता है, उसके दर्द को समझता है, वही श्रोता साथियों असल में समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। हम देखते हैं कि सहायता की भावना यानी कि मदद करने की भावना हमें ये सिखाती है कि केवल अपने लिए जीना ही जीवन नहीं होता, बल्कि जीवन का असली अर्थ तब समझ आता है जब हम किसी और के चेहरे पर मुस्कान ला सकें। क्योंकि दोस्तों, हम देखते हैं कि वर्तमान में हम इतने कठोर हो चुके हैं कि हम दूसरों की भावनाओं को कभी समझ ही नहीं पाते हैं। हम बस स्वार्थ में अपना ही सोचते रहते हैं कि किस तरीके से मेरा भला हो जाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपसे एक वास्तविक सत्य ये कहना चाहूंगी कि इस पूरे संसार में भला उसी का हुआ है जिसने किसी और का भला किया हो। अगर आपके कार्यों से दोस्तों किसी और के चेहरे पर मुस्कान आती है, किसी और के घर में दिया जलता है, या फिर कहूँ तो किसी और के घर में खुशियाँ आती है, तो उससे अच्छा काम या उससे पुण्य का काम कोई भी नहीं हो सकता दोस्तों। इसलिए हमें हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, वही व्यक्ति असल में ईमानदार कहलाता है और समाज में बदलाव ला सकता है जिसने अपने कार्यों से किसी और के चेहरे पर मुस्कुराहट लाई हो। हम देख सकते हैं दोस्तों कि दूसरों की मदद करने से हमें आत्मिक खुशी मिलती है, यानी कि अंदर से खुशी मिलती है। साथियों, जब हम किसी की सहायता करते हैं तो केवल सामने वाले को ही राहत नहीं मिलती दोस्तों, बल्कि हमारे मन को भी शांति और संतोष मिलता है। जैसे कि किसी भूखे को भोजन खिलाना, किसी दुखी व्यक्ति को सहारा देना, किसी विद्यार्थी को पढ़ाना, या फिर श्रोता साथियों किसी बीमार व्यक्ति की सेवा करना। हम देखते हैं कि ये जो सभी कार्य हैं वो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। लेकिन दोस्तों, हम ये भी देखते हैं कि दुनिया की कोई भी दौलत उस खुशी की बराबरी नहीं कर सकती जो किसी की मदद करके हमें मिलती है। मदद करने से दोस्तों हमारा मन हल्का होता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन का उद्देश्य भी हमें समझ में आने लगता है। दोस्तों, कई बार तो हम ये सोचते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा धन नहीं है, इसलिए हम किसी की सहायता नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, सहायता के लिए धन से अधिक जरूरी है अच्छा दिल और सच्ची भावना। एक मीठा शब्द भी श्रोता साथियों किसी टूटे हुए इंसान को एक नई उम्मीद दे सकता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दूसरों की मदद करने से हमें एक आत्मिक शांति, संतोष और खुशी मिलती है। तो जैसा कि दोस्तों बातें कार्यक्रम के माध्यम से मेरी आपसे चल ही रही हैं, ये बातें मैं आगे भी करूंगी, लेकिन अभी मन कर रहा है एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का। तो आइए पहले सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत। आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

दोस्तों, इस गीत के बाद मैं फिर से रुक करती हूँ कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में बहुत ही अच्छा विषय हमारा बातचीत का चल रहा है, हम जान रहे हैं कि दूसरों की मदद करना कितना जरूरी है और इस मदद से हमें क्या फायदे हो सकते हैं। गीत से पहले जैसा कि हम जान पाए थे श्रोता साथियों कि दूसरों की मदद करने से हमें आत्मिक खुशी मिलती है। अब यहीं अगर बात करूं श्रोता साथियों, तो जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो इससे समाज में भी मजबूती आती है। अब आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि मेरे मदद करने से समाज में मजबूती कैसे आएगी, तो आपसे कहना चाहेंगे कि जिस समाज में श्रोता साथियों लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, वह समाज हमेशा मजबूत और खुशहाल बनता है। अगर समाज में केवल स्वार्थ हो श्रोता साथियों, तो वहाँ रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। लेकिन वहीं जहाँ सहयोग और संवेदनशीलता होती है, वहाँ प्रेम और विश्वास बढ़ता है। दोस्तों, हम देखते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं या फिर कठिन परिस्थितियों में जब लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं, तब मानवता की असली तस्वीर हमारे सामने आती है। हम देखते हैं दोस्तों कि सहायता का भाव समाज में भाईचारे और एकता को मजबूत करता है। इससे लोगों के बीच विश्वास पैदा होता है और समाज में सकारात्मक वातावरण बनता है। तो इस तरीके से दोस्तों, सहायता करने से समाज भी मजबूत बनता है। साथ ही हम देखते हैं कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो लोग हमें याद रखते हैं। जैसे कि दुनिया में दोस्तों बहुत से लोग धनवान बने हैं, प्रसिद्ध भी हुए हैं, लेकिन समय के साथ लोग उन्हें भूलते गए। लेकिन जिन्होंने श्रोता साथियों मानवता की सेवा की है, दूसरों की हमेशा सहायता की है, उन्हें लोग हमेशा याद रखते हैं। ऐसे लोग दोस्तों समाज में प्रेरणा बन जाते हैं और उनका जीवन ये संदेश देता है कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, पैसे या पद से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और सेवा भावना से की जाती है। हम देखते हैं कि किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में मदद करने वाला व्यक्ति, किसी बीमार की सेवा करने वाला व्यक्ति या फिर किसी दुखी इंसान को सहारा देने वाला व्यक्ति हो, ये सभी दोस्तों समाज के असली नायक माने जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि जब तक बहुत बड़ा काम न कर ले तब तक सहायता का कोई महत्व नहीं है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि छोटी छोटी मदद भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। जैसे कि किसी वृद्ध व्यक्ति को सड़क पार करवाना, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पानी पिलाना, किसी उदास व्यक्ति को हिम्मत देना या फिर किसी विद्यार्थी को सही सलाह या फिर मार्गदर्शन देना, किसी गरीब को भोजन देना और किसी परेशान व्यक्ति की बात सुन लेना। दोस्तों, हम देखते हैं कि ये जो छोटे छोटे कार्य हैं, वो दिखने में साधारण लग सकते हैं, लेकिन इनका जो प्रभाव है वो काफी गहरा होता है। कई बार इंसान को पैसों से ज्यादा जरूरत होती है दोस्तों अपनापन की और सहारे की। तो ऐसे में हमारी छोटी छोटी मदद किसी के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। तो इस तरीके से कार्यक्रम के अंत में मैं यही कहना चाहूंगी दोस्तों आपसे कि दूसरों की मदद करना मानव जीवन का सबसे सुंदर गुण है। यह केवल समाज को बेहतर नहीं बनाता, बल्कि हमारे अपने जीवन को भी खुशहाल और अर्थपूर्ण बना देता है। साथियों, आपको बताना चाहूंगी कि सच्चा इंसान वही है जो दूसरों के दुख को समझे, जरूरत पड़ने पर सहायता के लिए आगे आए। और हम देखते हैं कि हमारे इसी प्रकार के छोटे छोटे प्रयास साथियों किसी के जीवन में बड़ी उम्मीद बन सकते हैं। ऐसे में हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में सेवा, सहयोग और मानवता की भावना को हमेशा अपनाएंगे। हम केवल अपने लिए नहीं दोस्तों, बल्कि समाज और जरूरतमंद लोगों के लिए भी जिएंगे। याद रखिए साथियों, दूसरों के जीवन में रोशनी फैलाने वाला व्यक्ति स्वयं कभी अंधेरे में नहीं रहता। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ दोस्तों, अब मैं कार्यक्रम से विदा लेने की अनुमति चाहूंगी, क्योंकि देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले क्यों ना दोस्तों एक प्यारे से गीत के साथ पहले हम मनोरंजन कर लें।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सपनों की उड़ान अब यही समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है साथियों 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो साथियों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था
1: नाना अंजलि बोन हूँ था का
0: अरे जागृति बोन आपड़ी जे नदिया है ये हुके जाएंगा खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बोन एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बोन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बोन आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बोन आपड़े भाई बोनों ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है
4: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा
0: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर
3: हिंडो स्कूल जा आपड़े अपना भी अपना पूरा करो
4: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है
0: होवे जयवरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा
4: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
5: हमरो हमरो हमरो घनी बोने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
6: तो हमरो बोनु अरे सब समस्या नो समाधान आपड़े कने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाए है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरा ने हाथे मली ने जावो है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़वो काटो नती जयवरे अधिकार हंग्र अपनावे जानकारी सबनु हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
3: होवे भाइयों ने बोनो हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनो नाम लकाड़ो
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
0: जागृति बुन आपने कारे सोचू है अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था
1: नाना अंजलि बोन हूँ था का
0: अरे जागृति बोन आपड़ी जे नदिया है ये हुकी जाएंगा खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बोन एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बोन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बोन आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बोन आपड़े भाई बोनों ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी साथियों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर एक नियत समय पर हमारे एक नए विषय के साथ में।
0: बिल्कुल
1: कशिश, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है साइकिल के महत्व को लेकर। जानेंगे आज कार्यक्रम के माध्यम से कि साइकिल केवल दो पहिए वाला वाहन नहीं है बल्कि यह स्वास्थ्य, बचत, पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है।
0: बिल्कुल,
1: एक समय था श्रोता साथियों जब बच्चे स्कूल साइकिल से जाते थे, किसान खेतों तक साइकिल से पहुंचते थे और महिलाएं भी अपने छोटे छोटे काम साइकिल से निपटा लेती थी।
0: जी जी।
1: लेकिन धीरे धीरे मोटरसाइकिल और अन्य वाहनों के बढ़ते उपयोग ने साइकिल को पीछे धकेल दिया है। आज हम जानेंगे कि साइकिल का महत्व क्यों बढ़ रहा है और ये हमारे जीवन में क्या बदलाव ला सकती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो बातें ढेर सारी होंगी आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से हमारी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: जी हाँ,
0: तो क्यों ना श्रोता साथियों को पहले एक प्यारे से गीत के साथ मनोरंजन हम करवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसे कि दोस्तों गीत से पहले बता चुके हैं कि आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे साधन की जो दिखने में तो काफी साधारण है,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं साइकिल की।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, आधुनिक युग में जहाँ मोटर वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं साइकिल आज भी एक ऐसा साधन है अंजलि जी जो हमें स्वस्थ जीवन, स्वच्छ वातावरण और आर्थिक बचत का रास्ता दिखाता है।
1: जी जी,
0: क्योंकि साइकिल केवल एक परिवहन का साधन नहीं है, बल्कि ये स्वास्थ्य, आत्मनिर्भरता, पर्यावरण संरक्षण का भी प्रतीक है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। जैसा कि आप बता रही हैं कि साइकिल जो है वो पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि आज दुनिया भर में लोग स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं। मधुमेह, मोटापा, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और तनाव जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। इसका एक बड़ा कारण शारीरिक गतिविधियों की कमी है।

0: साइकिल चलाना एक बेहतरीन व्यायाम है। जब हम साइकिल चलाते हैं श्रोता साथियों, तो हमारे शरीर की लगभग सभी प्रमुख मांसपेशियां सक्रिय होती हैं। इससे शरीर मजबूत बनता है और हृदय स्वस्थ रहता है।
1: बिल्कुल,
0: विशेषज्ञों का मानना है कशिश की रोजाना 30 मिनट साइकिल चलाने से शरीर की अतिरिक्त कैलोरी कम होती है, वजन नियंत्रित रहता है और शरीर में ऊर्जा बनी रहती है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, साइकिल चलाने से हृदय मजबूत होता है, फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है, रक्त संचार होता है, तनाव चिंता कम होती है और शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है।
1: जी हाँ,
0: आज जब लोग कशिश जिम में हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं, तब साइकिल एक ऐसा साधन है जो बिना किसी अतिरिक्त खर्च के व्यायाम का असर देता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, और देखते हैं कि साइकिल का जो आविष्कार है वो लगभग कई वर्षों पहले हुआ था। समय के साथ दोस्तों इसमें कई ढेर सारे बदलाव हुए और आज ये आधुनिक स्वरूप में सबसे हमारे सामने है। दुनिया के अनेक देशों में साइकिल को दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, तो कई देशों में तो लोग कार्यालय जाने, खरीदारी करने और छोटी यात्राओं के लिए साइकिल का ही उपयोग करते हैं। अंजलि जी, हम देखते हैं साथियों कि हमारे देश भारत में भी साइकिल लंबे समय तक आम लोगों की साथी रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लाखों लोग अंजलि जी स्कूल, खेत, बाजार और कार्यस्थल तक पहुंचने के लिए साइकिल का ही उपयोग करते हैं।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। इसी के साथ अब बात करें महिलाओं के लिए साइकिल के महत्व की, तो श्रोता साथियों, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए साइकिल किसी वरदान से कम नहीं है। कई गाँव में महिलाएं पानी लाने, राशन लेने, बच्चों को स्कूल छोड़ने या स्वयं सहायता समूह की बैठकों में जाने के लिए लंबी दूरी तय करती हैं।
1: बिल्कुल,
0: यदि कशिश उनके पास साइकिल हो तो उनका समय और श्रम दोनों बच सकते हैं। साइकिल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती है, उन्हें किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ता।
1: जी हाँ,
0: यही कारण है कि कई राज्यों में छात्राओं और महिलाओं को साइकिल उपलब्ध कराने की योजना चलाई गई है, जिससे उनकी शिक्षा और सामाजिक भागीदारी में वृद्धि हो। जब एक महिला साइकिल चलाती है तो केवल दूरी नहीं तय करती श्रोता साथियों, बल्कि आत्मविश्वास और स्वतंत्रता की दिशा में भी आगे बढ़ती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ अगर बात करें तो साइकिल चलाना एक उत्कृष्ट व्यायाम माना जाता है। साथियों, ये शरीर के लगभग सभी प्रमुख अंगों को सक्रिय करता है और व्यक्ति को शारीरिक रूप से फिट बनाए रखने में मदद करता है।
0: बिल्कुल,
1: अगर बात करें स्वास्थ्य के लिए साइकिल के महत्व की जागृति जी अंजलि जी, तो ये हृदय को स्वस्थ रखती है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि नियमित रूप से साइकिल चलाने से हृदय मजबूत बनता है, ये रक्त संचार को बेहतर बनाती है और हृदय संबंधित रोगों के खतरे को भी कम करती है।
0: बिल्कुल
1: अंजलि जी, जो लोग प्रतिदिन कुछ समय साइकिल चलाते हैं उनमें उच्च रक्तचाप और हृदय रोगों की जो संभावनाएं हैं वो भी अपेक्षाकृत दूसरे लोगों से कम हो जाती है।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही बात करें बच्चों और युवाओं के लिए साइकिल के महत्व की, तो श्रोता साथियों, बच्चे और युवाओं के लिए साइकिल बेहद उपयोगी है।
1: बिल्कुल,
0: आज के समय में बच्चे मोबाइल, टीवी में अधिक समय बिताने लगे हैं, इससे उनका शारीरिक विकास प्रभावित हो रहा है।
1: जी हाँ,
0: यदि बच्चे नियमित रूप से साइकिल चलाएं तो उनका शरीर मजबूत बनेगा और मानसिक विकास भी बेहतर होगा।
1: बिल्कुल,
0: युवाओं के लिए भी साइकिल एक बेहतरीन साथी है कशिश, ये उन्हें फिट रहने में मदद करती है, अनुशासन का भाव विकसित करती है। साइकिल चलाने से युवा सड़क सुरक्षा, समय प्रबंधन और जिम्मेदारी जैसे महत्वपूर्ण बातें भी सीख पाते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि हम युवा साथियों से, हमारे श्रोता साथियों से बात कर रहे हैं साइकिल के महत्व को लेकर, तो ये बातें हमारी आगे और भी ऐसे ही जरूर जारी रहेंगी।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन अभी क्यों ना हमारे साथियों को एक और प्यारा सा गीत यहाँ पर सुनवाएं।
0: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, बातें हमारी बहुत अच्छी चल रही है साइकिल के महत्व को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: और गीत से पहले हम स्वास्थ्य के लिए साइकिल का क्या महत्व है ये हम जान पा रहे थे अंजलि जी। हमने जैसा कि जाना था कि ये हृदय को स्वस्थ रखती है। साथ ही अगर मोटापे की बात करें तो आज मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है दोस्तों।
1: जी जी।
0: लोग घंटों बैठकर काम करते हैं और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण लोगों का वजन तेजी से बढ़ जाता है। ऐसे में साइकिल चलाने से शरीर की बहुत ज्यादा कैलोरी जो है वो खर्च होती है।
1: बिल्कुल।
0: और वजन नियंत्रित में रहता है अंजलि जी। साथ ही मांसपेशियां भी इससे मजबूत होती है। वो कैसे दोस्तों? तो साइकिल चलाने से पैरों, जांघों और कमर और जो पेट की मांसपेशियां होती है वो मजबूत होती है।
1: बिल्कुल।
0: जैसे कि नियमित अभ्यास करने से शरीर में लचीलापन और ताकत बढ़ती है। शारीरिक गतिविधियों में शर्करा के संतुलन को बनाए रखने में भी हम कह सकते हैं कि साइकिल मदद करती है।
1: बिल्कुल।
0: ऐसे में नियमित साइकिल चलाना मधुमेह के खतरे को कम करने में भी सहायक होता है अंजलि जी।
1: जी हाँ कशिश, आपने सही कहा। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है।
0: बिल्कुल।
1: मोटर वाहन पेट्रोल डीजल का उपयोग करते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसें निकलती है।
0: जी
1: श्रोता साथियों, ये गैसें वायु प्रदूषण बढ़ाती है और पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का कारण बनती है। इसके विपरीत कशिश, साइकिल एक पर्यावरण मित्र साधन है। इसमें किसी ईंधन की आवश्यकता नहीं होती, धुआं नहीं निकलता, ध्वनि प्रदूषण नहीं होता और पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहता।
0: बिल्कुल।
1: यदि छोटी दूरी के लिए अधिक लोग साइकिल का प्रयोग करें तो प्रदूषण में काफी कमी लाई जा सकती है। सोचिए श्रोता साथियों, यदि गांव और शहर के लोग 2-3 किलोमीटर की दूरी के लिए मोटरसाइकिल के बजाय साइकिल का उपयोग करें तो कितना ईंधन बचेगा और पर्यावरण को कितना लाभ होगा।
0: बिल्कुल।
1: आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, ऐसे में साइकिल सबसे किफायती साधन है। साइकिल खरीदने की लागत कम होती है और इसके रखरखाव का खर्च भी बहुत कम होता है। इसमें पेट्रोल भरवाने, इंजन की सर्विस करवाने या महंगे पार्ट्स बदलवाने की जरूरत नहीं होती है।
0: बिल्कुल।
1: जो परिवार सीमित आय में जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए साइकिल एक उपयोगी और आर्थिक साधन है। साइकिल हमें सिखाती है कशिश कि सुविधा के साथ साथ बचत भी महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल।
1: इसी के साथ कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से कि ग्रामीण भारत में साइकिल का महत्व और भी अधिक है। कई गांवों में आज भी लोग बाजार, स्कूल, अस्पताल और सरकारी कार्यालयों तक पहुँचने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: ऐसे में साइकिल लोगों के जीवन को आसान बनाती है। किसान खेतों तक जल्दी पहुँच सकते हैं, छात्र समय पर स्कूल पहुंच सकते हैं और छोटे व्यापारी अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी,
1: ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में भी योगदान देती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी। अब यहीं अगर मानसिक स्वास्थ्य की बात की जाए तो देखते हैं कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, चिंता और मानसिक थकान आम समस्या बन गए हैं।
1: बिल्कुल।
0: ऐसे में दोस्तों साइकिल चलाना केवल शरीर ही नहीं बल्कि मन को भी स्वस्थ रखता है। अगर बात करें तनाव कम करने की तो खुले वातावरण में साइकिल चलाने से मन को शांति मिलती है।
1: बिल्कुल।
0: हम प्रकृति के बीच बिताते हैं समय को श्रोता साथियों, जो हमारे तनाव को कम करता है। साथ ही नियमित रूप से साइकिल चलाने से व्यक्ति अपने स्वास्थ्य और क्षमता को लेकर अधिक आत्मविश्वासी भी महसूस करता है।
1: जी जी।
0: और व्यायाम के दौरान शरीर में ऐसे हार्मोन सक्रिय होते हैं जो मन को प्रसन्न रखते हैं अंजलि जी।
1: बिल्कुल।
0: जिससे सकारात्मक सोच को बढ़ावा मिलता है और हम कह सकते हैं कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य इससे कह सकते हैं कि अच्छा रहता है और इस पर ढेर सारे सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं।
1: बिल्कुल। हम देखते हैं कि आज देश आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। साइकिल इस सोच को मजबूत करती है क्योंकि यह कम संसाधनों में अधिक सुविधा प्रदान करती है।
0: बिल्कुल।
1: यह हमें सादगी, श्रम और स्वावलंबन का संदेश देती है।
0: जी।
1: महात्मा गांधी का जीवन भी सादगी और आत्मनिर्भरता का उदाहरण था श्रोता साथियों। साइकिल उसी सोच को आगे बढ़ाने वाला साधन है जिसमें कम खर्च, कम प्रदूषण और अधिक स्वास्थ्य का संदेश छिपा हुआ होता है।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि साइकिल केवल एक वाहन नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन, स्वच्छ पर्यावरण, आर्थिक बचत और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत कदम है। यह हमें सिखाती है कि प्रगति केवल तेज गति से चलने में नहीं है बल्कि सही दिशा में आगे बढ़ने में है। आज प्रदूषण दुनिया आज प्रदूषण दुनिया में बढ़ रहा है, खर्च बढ़ रहा है, स्वास्थ्य समस्याएं से हम सभी जूझ रहे हैं, तब साइकिल एक ऐसे सरल लेकिन प्रभावी समाधान बनकर हमारे सामने खड़ी है जो हमें यह समझाती है कि आधुनिकता का अर्थ केवल अधिक ईंधन खर्च करने वाला साधन उपयोग करना नहीं है, बल्कि ऐसे विकल्प चुनना है श्रोता साथियों जो हमारे स्वास्थ्य, समाज और प्रकृति के लिए लाभकारी हो।
0: बिल्कुल अंजलि जी, साथी अगर यहाँ पर बात करें बच्चों और युवाओं के लिए साइकिल के महत्व की, तो देखते हैं कि बच्चों और युवाओं के जीवन में तो साइकिल का विशेष स्थान है। ये उनके शारीरिक विकास के साथ साथ उन्हें अनुशासन भी सिखाती है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि दोस्तों साइकिल बच्चों के शरीर को सक्रिय रखती है और उनके शारीरिक विकास में मदद करती है। नियमित साइकिल चलाने से समय प्रबंधन, सावधानी और जिम्मेदारी की भावना जो है वो बच्चों में और युवाओं में विकसित होती है। अंजलि जी,
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि आज बच्चे मोबाइल और टीवी पर बहुत अधिक समय बिताते हैं, ऐसे में साइकिल जो है वो उन्हें बाहर निकलकर सक्रिय जीवन जीने के लिए भी प्रेरित कर सकती है।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, साइकिल बच्चों और युवाओं को छोटी छोटी यात्राएं स्वयं करने का अवसर देती है, जिससे उनमें आत्मनिर्भरता का विकास होता है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम हमारे श्रोता साथियों को ये बात समझाना चाहेंगे कि साइकिल का वाकई में हमारे जीवन में क्या महत्व है।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, राजस्थान के एक छोटे से गांव में 15 वर्षीय सीमा अपने माता पिता और छोटे भाई बहन के साथ रहती थी। उसके पिता रामलाल किसान थे और माँ कमला देवी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई थी। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। सीमा पढ़ने में बहुत होशियार थी, वह हर परीक्षा में अच्छे अंक लाती थी। उसका सपना था कि वह बड़ी होकर अध्यापिका बने और गांव की बेटियों को शिक्षा का महत्व समझाए। लेकिन उसके सपनों के रास्ते में एक बड़ी समस्या थी। गांव से स्कूल लगभग 8 किलोमीटर दूर थी। सीमा रोज सुबह जल्दी उठती, घर का काम करती और फिर पैदल स्कूल जाती। गर्मी में तपती सड़क, बरसात में कीचड़ और सर्दी में ठंडी हवाएं उसकी राह को और कठिन बना देती। कई बार कशिश वह स्कूल पहुंचते थक जाती, कभी देर हो जाती तो शिक्षक डांट भी देते, लेकिन सीमा ने हार नहीं मानी। वह सोचती थी कि अगर शिक्षा पाकर जीवन बदला जा सकता है तो थोड़ी कठिनाइयां सहना क्यों कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई कि सरकार की योजना के तहत कुछ छात्राओं को साइकिल दी जाएगी।
0: बिल्कुल,
1: चयन पढ़ाई और नियमित उपस्थिति के आधार पर होना था। जब प्रधानाचार्य ने सीमा का नाम पुकारा तो उसे अपनी खुशी पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद अब उसकी मुश्किलें कम होने वाली हैं।
0: बिल्कुल,
1: कुछ ही दिनों बाद श्रोता साथियों उसे नई चमचमाती साइकिल मिली। वह साइकिल उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी कशिश। घर पहुंचकर उसने साइकिल को बड़े प्यार से देखा। पिता रामलाल की आंखों में भी खुशी थी। उन्होंने कहा, बेटी यह सिर्फ साइकिल नहीं है, यह तेरे सपनों की साथी है और इसका ध्यान रखना। अगले दिन सीमा पहली बार साइकिल से स्कूल गई। जो दूरी पहले 1.5 घंटे में तय करती थी अब वो 1/2 घंटे में पूरी हो गई। उस दिन वह समय से पहले स्कूल पहुंच गई। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। अब उसके पास पढ़ाई के लिए ज्यादा समय था। वह पुस्तकालय में पढ़कर अतिरिक्त किताबें पढ़ने लगी, खेलकूद में भाग लेने लगी और अलग अलग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने लगी। एक दिन गाँव की दूसरी लड़कियों ने पूछा, सीमा क्या साइकिल चलाना मुश्किल है? सीमा मुस्कुराकर बोली, नहीं, मुश्किल तो सिर्फ शुरुआत होती है।
0: बिल्कुल,
1: एक बार सीख जाओ तो फिर रास्ते आसान लगते हैं। उसकी बात सुनकर कई लड़कियों ने भी साइकिल सीखना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में गांव की गलियों में कई लड़कियां साइकिल चलाती दिखाई देने लगी। गांव के कुछ बुजुर्ग शुरुआत में हैरान होते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि लड़कियां समय पर स्कूल पहुंच रही है, पढ़ाई में आगे बढ़ रही है, तो उन्होंने उनका समर्थन करना शुरू कर दिया। इसी बीच गांव में एक और समस्या थी। महिलाएं बाजार जाने के लिए दूसरों पर निर्भर थी। सीमा की माँ कमला देवी ने एक दिन सोचा कि अगर बेटी साइकिल चला सकती है तो वो क्यों नहीं। उन्होंने सीमा से साइकिल चलाना सीखना अच्छा समझा। शुरुआत में कई बार गिरी, कभी संतुलन बिगड़ जाता तो कभी डर लगता, लेकिन सीमा ने उन्हें हिम्मत देती रही।
0: बिल्कुल,
1: कुछ दिनों की मेहनत के बाद कमला देवी भी साइकिल चलाने लगी। अब वे स्वयं सहायता समूह की बैठक में समय पर पहुंचने लगी, बाजार से सामान ला सकती थी, जरूरत पड़ने पर पड़ोसी गांव में भी जा सकती थी। उनका आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया।
0: बिल्कुल,

0: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि धीरे धीरे गांव में साइकिल एक बदलाव का प्रतीक बन गई। एक दिन गांव में स्वास्थ्य शिविर लगा, वहां डॉक्टर ने लोगों को बताया कि साइकिल चलाना शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। उन्होंने कहा कि रोज आधा घंटा साइकिल चलाने से हृदय स्वस्थ रहता है, वजन नियंत्रित रहता है और शरीर में ऊर्जा बनी रहती है।
1: बिल्कुल,
0: ये सुनकर गाँव के कई लोग जो छोटी दूरी के लिए भी मोटरसाइकिल का उपयोग करते थे साइकिल की ओर आकर्षित होने लगे। रामलाल भी अब खेत जाने के लिए साइकिल का ही अधिक उपयोग करता था
1: जी।
0: वे कहते थे कि पेट्रोल खर्च भी बचाता है और शरीर को भी स्वस्थ रखता है। इसलिए कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि साइकिल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साइकिल केवल एक महान वाहन नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास का प्रतीक है।
1: बिल्कुल,
0: सही अवसर और दृढ़ संकल्प मिलकर हम इस साधारण सी चीज को असाधारण बना सकते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, बहुत अच्छी कहानी आपने हमारे श्रोता साथियों को बताई और जैसा कि बातें भी हमारी कार्यक्रम के माध्यम से दोस्तों से बहुत अच्छी चल रही हैं।
0: बिल्कुल,
1: आगे कुछ छोटी मोटी बातें महत्वपूर्ण हैं जो रहेंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही कशिश श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि साइकिल का महत्व केवल इस बात तक सीमित नहीं है कि वह हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है।
1: बिल्कुल,
0: वास्तव में साइकिल जीवन की उन मूलभूत सीखों का प्रतीक है जो हमें सरलता, संतुलन, परिश्रम और आत्मनिर्भरता का मार्ग दिखाती है। जिस समाज में लोग अपने स्वास्थ्य, पर्यावरण और संसाधनों के प्रति जागरूक होते हैं, वहाँ साइकिल जैसी साधारण दिखने वाली चीज भी सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बन जाती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। वहीं अगर पर्यावरण संरक्षण में साइकिल की भूमिका को लेकर हम बात करें तो देखते हैं कि आज दुनिया प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रही है। वाहनों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण है साथियों। ऐसे में हम देखते हैं कि साइकिल चलाने से किसी भी प्रकार का धुआं नहीं निकलता, इसलिए यह पर्यावरण के लिए पूरी तरह अनुकूल साधन है।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही साइकिल का उपयोग बढ़ने से पेट्रोल और डीजल की खपत भी कम होती है, जिससे अंजलि जी हम कह सकते हैं कि कार्बन का उत्सर्जन घटता है।
0: बिल्कुल,
1: और साथ ही दोस्तों साइकिल बिना शोर के भी चलती है, इसलिए यह ध्वनि प्रदूषण को भी कम करने में मदद करती है।
0: जी हाँ कशिश, आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है तब ये आवश्यक है कि हम विकास और सुविधा के साथ साथ अपने स्वास्थ्य और प्रकृति की रक्षा करने के बारे में सोचें। साइकिल हमें यही संतुलन सिखाती है कि ये न केवल ईंधन की बचत करती है बल्कि हमें अपने शरीर की शक्ति पर भरोसा करना भी सिखाती है। यह बताती है कि हर यात्रा के लिए मशीनों पर निर्भर होना जरूरी नहीं बल्कि कई बार अपने प्रयास की सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में साइकिल शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक भागीदारी के नए द्वार खोल सकती है।
1: जी हाँ,
0: यह बच्चों के सपनों को स्कूल तक पहुंचाती है, महिलाओं को आत्मविश्वास देती है, किसानों का समय बचाती है और युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करती है। एक साइकिल कई बार उस दूरी को भी कम कर देती है जो केवल रास्तों में नहीं बल्कि अवसरों और संभावनाओं के बीच होती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ अगर बात करें तो श्रोता साथियों, आज आवश्यकता है कि समाज में साइकिल के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। स्कूलों, कॉलेजों, कार्यालयों और स्थानीय संस्थाओं को साइकिल दिवस, साइकिल रैली और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। अंजलि जी, यदि छोटी दूरी के लिए दोस्तों लोग साइकिल का उपयोग करना शुरू कर दे तो स्वास्थ्य और पर्यावरण ये दोनों के लिए लाभकारी होगा। अंजलि जी,
0: जी जी बिल्कुल,
1: क्योंकि साइकिल एक साधारण साधन नहीं है बल्कि स्वस्थ जीवन, स्वच्छ पर्यावरण और आर्थिक बचत का माध्यम भी है। दोस्तों ये शरीर को फिट रखती है, मन को प्रसन्न बनाती है, प्रदूषण को कम करती है और समाज को टिकाऊ विकास की दिशा में आगे बढ़ाती है।
0: बिल्कुल कशिश,
1: हम देखते हैं कि आधुनिक जीवन की चुनौतियों के बीच साइकिल हमें ये सिखाती है कि सरल साधन भी बड़े बदलाव ला सकते हैं।
0: जी हाँ कशिश, यह भी याद रखना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां हमें केवल हमारे विकास कार्यों से नहीं बल्कि पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी से याद रखेंगी। यदि हम आज छोटी छोटी दूरियों के लिए साइकिल का उपयोग करने की आदत विकसित करते हैं तो यह केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं होगा बल्कि स्वच्छ हवा, कम प्रदूषण और बेहतर भविष्य की दिशा में एक सामुदायिक योगदान होगा। इसलिए आवश्यकता केवल साइकिल चलाने की नहीं बल्कि उस सोच को अपनाने की है श्रोता साथियों, जो साइकिल हमें सिखाती है। कम साधनों में बेहतर जीवन, सरल संसाधनों से बड़े लक्ष्य, व्यक्तिगत सुविधा के साथ सामाजिक जिम्मेदारी। जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर पर ऐसे छोटे लेकिन सार्थक कदम उठाता है तब विकास केवल आंकड़ों नहीं कशिश बल्कि लोगों के जीवन में दिखाई देता है।
1: बिल्कुल,
0: साइकिल को केवल बीते समय की याद न माने बल्कि भविष्य की एक समझदारी और टिकाऊ जीवन शैली के रूप में स्वीकार करें। क्योंकि कई बार परिवर्तन की सबसे बड़ी शुरुआत किसी बड़े इंजन से नहीं बल्कि दो साधारण पहियों और आगे बढ़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति से होती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है, कुछ छोटी मोटी बातें बनी रहेंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, हम जान पाए कि जब हम साइकिल के महत्व पर विचार करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि साइकिल केवल परिवहन का एक साधन नहीं बल्कि जीवन को बेहतर बनाने वाली एक

0: सोच है। यह हमें उस दिशा में ले जाती है कशिश, जहाँ सुविधा और जिम्मेदारी साथ साथ चलती है। आधुनिक युग में जहाँ हर व्यक्ति समय बचाने और अधिक सुविधाएं पाने की दौड़ में लगा है, वहीं साइकिल हमें याद दिलाती है कि विकास का सही अर्थ केवल गति नहीं बल्कि संतुलन भी है। साइकिल का सबसे बड़ा योगदान यह है कि यह व्यक्ति को अपने प्रयासों की शक्ति का एहसास कराती है। मोटर चलित वाहन हमें गंतव्य तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन साइकिल हमें यह सिखाती है कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए स्वयं प्रयास करना कितना महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल,
0: इसके साथ जुड़ा श्रम केवल शारीरिक व्यायाम नहीं होता है श्रोता साथियों, बल्कि आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का निर्माण भी करता है।
1: बिल्कुल,
0: जब कोई बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो वह केवल संतुलन बनाना नहीं सीखता बल्कि गिरकर दोबारा उठने का साहस भी सीखता है।
1: बिल्कुल,
0: यही सीख आगे चलकर जीवन की बड़ी चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। हम देखते हैं साथियों कि साइकिल केवल दो पहियों पर चलने वाला एक साधन नहीं है, बल्कि स्वस्थ जीवन शैली के साथ साथ स्वच्छ पर्यावरण, आर्थिक बचत का भी प्रतीक है।
0: बिल्कुल,
1: आज जब अंजलि जी दुनिया प्रदूषण, बढ़ते बीमारियां और तनाव जैसी समस्याओं का सामना कर रही है, तब साइकिल एक सरल लेकिन प्रभावी समाधान के रूप में हमारे सामने आया है।
0: जी जी,
1: हम देखते हैं श्रोता साथियों कि ये शरीर को सक्रिय रखती है, मन को प्रसन्न बनाती है और प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने में मदद करती है।
0: बिल्कुल,
1: कह सकते हैं कि आज आवश्यकता इस बात की है कि हम साइकिल को केवल एक पुराने परिवहन साधन के रूप में न देखे बल्कि इसे अपने दैनिक, कह सकते हैं कि जीवन का हिस्सा बनाएं।
0: बिल्कुल,
1: छोटी छोटी दूरियों के लिए साइकिल का उपयोग करके हम न केवल अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण तैयार कर सकते हैं।
0: जी हाँ,
1: क्योंकि साइकिल अपनाना एक छोटी शुरुआत है लेकिन इसके परिणाम व्यक्ति, समाज और पर्यावरण तीनों के लिए बहुत लाभकारी है। अंजलि जी,
0: जी हाँ कशिश, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि ग्रामीण भारत के संदर्भ में साइकिल की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। कई ऐसे गाँव है जहाँ स्कूल, अस्पताल, बाजार या सरकारी सेवाएं लोगों के घरों से काफी दूर स्थित है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में साइकिल केवल दूरी कम नहीं करती बल्कि अवसरों तक पहुँच को आसान बनाती है। एक छात्र के लिए यह शिक्षा का माध्यम बनती है, एक महिला के लिए स्वतंत्रता का प्रतीक, एक किसान के लिए समय बचाने का साधन और एक मजदूर के लिए रोजगार तक पहुंचने का भरोसेमंद साथी।
1: बिल्कुल,
0: साइकिल समाज में समानता को भी बढ़ावा देती है। यह अमीर और गरीब के बीच भेदभाव नहीं करती। इसे चलाने के लिए बड़े खर्च या विशेष संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती है। यही कारण है कि साइकिल एक ऐसा साधन है जो हर वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने का अवसर देती है। यह हमें बताती है कि जीवन में प्रगति केवल आर्थिक संसाधनों से नहीं बल्कि इच्छा शक्ति से और मेहनत से भी संभव है।
1: जी
0: आज जब पूरी दुनिया पर्यावरणीय संकट, बढ़ते प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन जैसी समस्याओं का सामना कर रही है, तब साइकिल का महत्व और भी बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल,
0: आने वाले समय में वे समाज अधिक सफल माने जाएंगे कशिश, जो विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी महत्व देंगे। साइकिल दिशा में एक छोटा लेकिन प्रभावशाली कदम है। यह हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीने की प्रेरणा देती है और यह संदेश देती है कि व्यक्तिगत सुविधाओं के साथ साथ सामूहिक हित का ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है।
1: जी हाँ अंजलि जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है और अब हम देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: तो विदा हम जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे श्रोता साथियों को हमारे कार्यक्रम का पता हम बता दें।
0: बिल्कुल, तो साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
1: जी हाँ,
0: हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
1: बिल्कुल,
0: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ दोस्तों आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। नमस्कार साथी दोस्तों, आपको छोड़े चलते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनु, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाय तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे के बीच में आता है, तो इसी बीच आप अपने फरमाइश के गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों अब हमारी फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। पहली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पंडरपुर सिटी से। फिल्म का नाम है दिल का क्या कसूर। गीत के बोल हैं मेरा सनम सबसे प्यारा है। इस गीत की फरमाइश करते हैं जाकिर मुलानी, समिया मुलानी, सुभान मुलानी, समीर मुलानी, मुमताज मुलानी, दिलशाद मुलानी, नसीर मुलानी, बाबा बी मुलानी, बादशाहजी मुलानी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं सदर बाजार मारवाड़ भिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जी नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक जी चौहान। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं पंडरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल बघेल, भारती जी बघेल। इस गीत के अनुरोध करता है दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेगा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव खुराना, रिधानजी खुराना। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं सहारनपुर से समयद मशरूम, साइना हसन, अक्सा नासिया, आफिया इब्राहिम, सदाम जी, अदीप अली जी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल है मेरा सनम सबसे प्यारा है। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

दोस्तों, आशा भोसले और कुमार सोनू जी की आवाज में हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे, मेरा सनम सबसे प्यारा है। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पंढरपुर सिटी से। फिल्म का नाम है अजनबी। गीत के बोल ही मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है। इस गीत की फरमाइश करता है प्रशांत सिंधी, सुनीता सिंधी, यशराज सिंधी, ऋषि सिंधी, कृष्णा घोड़के जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। सुखरी कलासी, अमित जंगेल, सुकुन जंगेल, अरुषि जंगेल, ओशिका जंगेल, आदित्य जी जंगेल और अंजलि जी जंगेल इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं। एमपीसी, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माहेजी मलिक बागपत से जुड़ना चाह रहे हैं। अब्दुल सत्तार अब्बासी जी इस गीत के अनुरोध करता है। रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, योगेशपुरी गोस्वामी, टिंकल डिंपल, मीनाक्षी, दिशा और तुलसी गोस्वामी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में है।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है मस्तानपुरा सी। फिल्म का नाम है लगान, गीत के बोल हैं सुन मितवा। इस गीत की फरमाइश करता है अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतना भगत, सुलोचना जी भगत। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं गाजियाबाद से शिषपाल जी। इस गीत की अनुरोध करता है बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनीश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर न्यूतन, भुवनेश्वरी जी देवी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं गंजुडवारा से शमशुल कमर राही, साइन फातिमा, अजनान खान, फिजाद खान, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी जी। सलार पलगाम से जुड़ना चाह रहे हैं पीरजादा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन, केसरुद्दीन जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं बागपत से आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्काफ अली खान, सादिक अली खान, सारिक अली खान जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलोक चंद वर्मा, श्रीमती भगवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, अमित वर्मा, मास्टर समर राज, आर्यन वर्मा, बेबी आरोही वर्मा, ऐशिका जी वर्मा, अंजलि और श्वेता जी वर्मा। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं सुन मितवा। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है प्रेम बंधन, गीत की बोल ही मैं तेरे प्यार में पागल। इस गीत की फरमाइश करते हैं बलकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, मुरली प्रसाद वर्मा और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे। जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवीद इरशाद, अजरत अबू समझी। बनारस से जुड़ना चाह रहे मास्टर मस्जिद अंसारी, नूरिन अंसारी, आफिया परवीन जी। इस गीत के अनुरोध करता है पटेल नगर मालोट सी रमेश कुमार झंझोरिया, गीता रानी झंझोरिया, गंदीप झंझोरिया, आरजू जी झंझोरिया। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा देवी शर्मा, सार्थक जी शर्मा, यश जी। इस गीत के अनुरोध करता है श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, शाहिद शेख। अहमदनगर से जुड़ना चाह रहे हैं जुमित मुजावर, सभिया मुजावर, मिखाइल जी मुजावर, जुमेब जी मुजावर। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं बाबा कोटरी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्ष जी चौहान और डुग्गू जी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं मैं तेरे प्यार में पागल। आप सभी बने रहिएगा, कार्यक्रम आपकी फरमाइश में है।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बलाई नगर छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है माया, गीत की बोल है कोई सोने की दिल वाला कोई चांदी के। इस गीत की फरमाइश करता है अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, आशमा श्याम कुंवर और दीपक श्याम कुंवर और अनुश्री जी। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे झारखंड से मोहम्मद याशीन अंजान, साइना नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, बिफरा नवाज, बेबी चाहत जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र जी डांगी। इस गीत के अनुरोध करता है मुरादाबाद से अजित कसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य जी कसाना। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जंतीर और गुरकीरत सिंह। पंडपुर सिटी से जुड़ना चाह रहे हैं प्रशांत सिंधी, सुनीता सिंधी, यशराज सिंधी, ऋषि सिंधी, कृष्णा घोड़के जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे यूपी से सुमित चौरासिया, श्रीमती सरोज चौरासिया, सुरेश चौरासिया, सरिता सुजाता चौरासिया, संभोज सलोनी चौरासिया, संजू लल्ला चौरासिया, बाबू शिवा शिवानी चौरासिया, योगेश नायक जी।

और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। बुलंदखंड उत्तर प्रदेश से उभिपाल जी, जयसिंह पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विश्नेश पाल, दिव्यांशी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत की बोल है कोई सोने के दिल वाला कोई चांदी के। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागर रेडियो 90.8 FM पर और सुनते रहिएगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है आवेरपुर से। फिल्म का नाम है साजन, गीत के बोल हैं बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। इस गीत की फरमाइश करता है छोटू हबीब, छोटू भाई शेख, साजन बेगम, फैजाज शेख, फारूक शेख, वसीम जी शेख, अस्मीरा जी, इरफान जी, जनित जी, फरहान जी, अब्दुल लोही वाला और शाहिदा जी शेख। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे, पटिया कला दुर्ग से संजय शाहू, शशांक शाहू, सीमा शाहू, सुजिता जी शाहू इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं। चूरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, माला ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानुषानु, बब्बन मीनू, काना हरेप्रिया जी ठाकुर। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रही है भीड़ शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मिलेत्री, अंजलि करवा, बाल प्रसाद करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनजी बिटू, पिपी कुतलेश जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे गंजरद्वारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवीज, बेगम इमरान नाज, नवाजिक शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी जी, राधा नामदेव जी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बनी रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है जोधपुर राजस्थान से। फिल्म का नाम है संगम। गीत के बोल ही हर दिल जो प्यार करेगा। इस गीत की फरमाइश करते हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी जी और हिमांश जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं जनकपुरी सहारनपुर से। जॉन डेकिस्टो, रोजी डेकिस्टो, पॉल डेकिस्टो, विलीजी डेकिस्टो। इसी बीच जुन्नाचार्य गंजुडवारा, गणेशपुर से। फिरासुद्दीन अंसारी, कल अलकमर जहां, सिफा सिमरन, मोहम्मद अल्फेक जी। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं भोपालगढ़ राजस्थान से। धर्मेंद्र चिपा, कपिल चिपा, पूजा परिहार जी और ईशांची चिपा। इसी बीच जुन्नाचार्य पुणे से। पंकजवाड़ोदी मीनाक्षी, पंकजवाड़ोदी आर्या, प्रियंका सुने और सोनो चरपे और रजनी कानेरी। दुर्गा कॉलोनी हांसी से जुड़ रहे हैं राजू मिलगानी, बबीता मिलगानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू जी। इसी बीच जुन्नाचार्य काजगर से मोहम्मद सादिक अली सेफी, आबाद खान, जोहान सेफी, अदीबा जी। गंजुडवारा से जुन्नाचार्य मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासीन हाशमी, शमशुल कमर राही जी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही हर दिल जो प्यार करेगा।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है राजनांदगांव से, छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है बीबी हो तो एसी, गीत के बोल हैं मैं तेरा हो गया। इस गीत की फरमाइश करते हैं बबलू शाहू, जामुन देवी शाहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बीबी आराध्या जी शाहू। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, सनावसी, मोहम्मद सुफियान, मोहम्मद हाशमी, मोहम्मद सयादी जी और बब्बू डब्बू जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, दुर्गा प्रसाद, पलेरा जी, तनुजा और ईशांत और कृष्णा जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं महाराष्ट्र से, विकास बंसोड़े, रेखा बंसोड़े, अदिति बंसोड़े, वैभव जी सिंधे। खड़वा से जुड़ना चाह रहे हैं आकाश और प्रिया जी। इस गीत के अनुरोध करता है हनुमानगढ़ से भाई प्रेम सिंह, सुखवीर काजल, लखवीर जी, कानू कृष्णा, श्रीमती जी, प्रवीण जी, शीतल जी, नवीन रंगीला जी, निशान अनमोल। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रही हैं दादरी गेट भवानी से, कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल जी मेहरा। इस गीत के अनुरोध करता है भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा, नोखीलाल जी वर्मा। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, निट्टू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापाजी नानक चंद मल्होत्रा। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से जुड़ना चाह रही पीयूष सिक्का, कुनिका सिक्का, डुग्गू जी सिक्का और भाविका जी सिक्का। और भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जय प्रकाश राहुल, प्रियंका मुन्नत, गुरशब्द, गुरकीर्त राहुल। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है अनारकली बाजार जगराओं से। फिल्म का नाम है दाग, गीत के बोल हैं मेरे दिल में आज क्या है। इस गीत की फरमाइश करते हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीविका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, जयपाल यादव, विनोद पुरी जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं महाराष्ट्र से रूपेश संगई, महेश संगई, ब्रजेश संगई, प्रीतेश संगई और संगई परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इस गीत की अनुरोध करता है नेहरू चौक पेठन से डॉक्टर सुरेश यादव, अनिता जाधव, आरती पूजा, प्रशांत जाधव, सोनम जाधव, बेबी सिया जाधव। जलाना शहर से जुड़ना चाह रहे हैं सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन और एकता जी जाधव और संगीता जी जाधव। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति वर्मा, शिवांश जी वर्मा। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल है मेरे दिल में है आज क्या। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त और इस कार्यक्रम की होस्ट कशिश पारशर। स्वागत करती हूं साथियों आप सभी का फिर से कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि दोस्तों फरमाइशों का सिलसिला कार्यक्रम के माध्यम से सुबह 11 बजे से बहुत अच्छा चल रहा है, जिसे आप सुन रहे थे प्रस्तुतकर्ता मनीषा के साथ में। और अभी फरमाइश का बहुत ही प्यारा सा गीत चल रहा था साथियों कि मेरे दिल में आज क्या है आ मैं तुझे बता दूं। इसी गीत के बाद मैं फिर से बढ़ना चाहूंगी अगली फरमाइश की ओर। दोस्तों अगली फरमाइश हमारे बीच आई है सदर बाजार कुरावली से। फिल्म का नाम है आग ही आग, गीत के बोल है साजन आ जाओ। इसके प्यारे से गीत को आवाज दी है आशा भोसले जी और शब्बीर कुमार जी ने। फरमाइश करता कुरावली से इस गीत के साथ जुड़ रहे हैं अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा जी। इसी बीच और भी श्रोता साथी जुड़ रहे हैं। नवाशहर से हैं सुरेंद्र सांधु, अनिता सांधु, रोहित सांधु, रितेश सांधु, शिक्षा सांधु, प्रतीक्षा सांधु और मेक्स जी। जुड़ना चाह रहे हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मदन अंसारी, गुलाम शाबी रही, महराज जहां। हमारे बीच में और भी श्रोता साथी इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं। मधुबनी बिहार से शबीर परवाना जी, शाहिद अली, जाहिद अली जी और शाहिद अली जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं साजन आ जाओ। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है मलकापुर महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों राज, गीत के बोल है दीवाना कर रहा है। फरमाइश करता जुड़ रहे हैं शत्रुघ्न धाड़े, वकील वाल्मीकि धाड़े, निनाजी धाड़े, सप्पल धाड़े, अजय खिरोडकर। हमारे और भी श्रोता साथी इस गीत को सुनना चाह रहे हैं। राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट, जस्मीन प्रयागराज भट्ट। छोटो नटी बुलंदशहर से हैं मोहम्मद सिद्दबासी, निगत प्रवीण अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज फरदीन, सुहान अरजान, अब्बान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण। जुड़ना चाह रहे हैं नवाशहर पंजाब से गंगादीप थाटी, रीता कुमारी थांडी, प्रियंका थांडी, प्रशांत प्रियम, वामिका वाणी थांडी जी। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल है दीवाना कर रहा है। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत कलानोर से आया है साथियों। फिल्म का नाम है सोनी महिवाल। गीत के बोल है सोहनी मेरी सोहनी। इस गीत को आवाज दे अनवर जी और आशा भोसले जी ने। फरमाइश करता जुड़ रहे हैं कलानोर से नरेंद्र शर्मा, किरण नितिन, मयंक शर्मा। नरवेल महाराष्ट्र से है पीएस नवाड़कर, निमा नवाड़कर, विशाल नवाकर, सोपान ताइडे जी। मलकापुर से नारायण इंग्र, राजकुमार खर्चे, आशीष मुहेरकर जी। बरकाकाना से अफजाल ताज, साइंस सुल्ताना, सोनू तस्सीम, निपिसानी, अफजल मलिक। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। कुंभार गली कौल गांव से हैं पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी प्रतीक्षा, अभिषेक सार्थक, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन, पांडुरंग कुम्हार जी। जुड़ना चाह रहे हैं आकोट से विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, शुभम बेंडे, पवन चरिये, संजीव डाबीराव जी। तो आइए दोस्तों मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के इस प्यारे से गीत के साथ में। गीत के बोल है सोनी मेरी सोनी। तब तक आप बने रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथी, उस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश आई है श्रीरामपुर से। फिल्म का नाम है, श्रोता साथियों बताना चाहूंगी, मृत्युदंड। गीत के बोल हैं, कह दो एक बार सचना। और फरमाइश करता है, इस गीत के जुड़ना चाह रहे हैं, आपको बताना चाहूंगी। दोस्तों जुड़ रहे हैं कुंभार गले श्रीरामपुर से, अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, इश्के दले, जीविका दले, सनिका दले। और भी श्रोता साथी इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं, आपको नाम बताना चाहूंगी। दोस्तों जुड़ रहे हैं हमारे बीच में, साथी हैं गंजुटवारा से हैं मास्टर खिल्लो परवे बेगम, इमरान अनाज, नाजी शेख, दानी शेख, अनवर फद्दी, राधा नाम देव जी। मॉडल टाउन करनाल से सुदनुतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा जी। छत्तीसगढ़ से हैं श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू। बिहार कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से राहुल, रचिता खुराना जी। जफराबाद से जुड़ना चाह रहे हैं सुधाकर राजे जादव, प्रशांत राजे जादव, संचित वयाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणही देशमुख, सानवी देशमुख, सरवत देशमुख जी। और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ सुनना चाह रहे हैं, जुड़ना चाह रहे हैं, आपको बताना चाहूंगी। जुड़ रहे हैं फजिल का पंजाब से भूषण खेड़ा, लाड़ी विशाल, शालिनी, टिवानशी खेड़ा, आरबी के खेड़ा जी। इसी बीच और भी श्रोता साथी हैं, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कंगड़ा, बबीता बोट, निखिल कंगड़ा, तन्वी बोट। भवानी नगर पर्यटन से अरुण धोंगड़े, आरती धोंगड़े, भाऊ साहेब धोंगड़े, गंगा सागर धोंगड़े, हर्षवर्धन, अशोक धोंगड़े, राशि कार्तिक परी धोंगड़े, परिवार सदस्यगण जुड़ रहे हैं। अमरावती से सिद्धार्थ गुणाने, अर्चनाताई गुणाने, हीरामन शेंडे और प्रणय प्रसिद्धि जी। तो आइए दोस्तों मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल है, कह दो एक बार सचना। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूँगी, अस्तपुरा जिला मऊ से। जुड़ना चाह रहे हैं हमारे श्रोता साथी हैं, फिल्म का नाम है श्रोता साथी बुलबुलैया, गीत के बोल हैं लबों को लबों से छूने दो। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में अस्तपुरा जिला मऊ से, मजर अली अंसारी, रजा बेगम अंसारी, सादिक अंसारी गाजीपुर से, आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन अब्दुल्ला आज़ाद पतरोड से हैं, विजय अम्बाड़कर, सुनीता अम्बाड़कर, ऋषिकेश अक्षय, राधिका अम्बाड़कर मोहाली पंजाब से हैं, बबल मल्होत्रा, प्रकाश मल्होत्रा उत्तर प्रदेश से, मोहर फरमान सलमान इरफान इरकास नरगिस खातून जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं लबों को लबों से। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आई है, मैं आपको बताना चाहूंगी। फिल्म का नाम है शीतल, दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से श्रोता साथी जुड़ रहे हैं। फिल्म का नाम है डेंजरस इश्क। गीत के बोल हैं तू ही रब तू ही दुआ। इस गीत को आवाज दी तुलसी कुमार जी और रहत फतेह अली जी ने। फरमाइश करता जुड़ रहे मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, शीतल कश्यप, राजपाल पंकज जी, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष सोहिनी, मोनितिक, बलवीर सिंह जी। इसी बीच हमारे हिंगोली महाराष्ट्र से भी दोस्त इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं। शाहजी बोर्ड के, नंदा बोर्ड के, हनुमान बोर्ड के, वाकोड़ी से उत्तम सामदाड़े, स्वराज राम दाड़े, इतला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल, हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कटवासरा, सचिन कटवासरा, सतीश योगेश युद्धव कटवासरा जी, और भी हमारे दोस्त तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं। गुणन शिवास, करुणा शिवास, आशीर्वास विवेश शिवास, विवी आशीष शिवास छत्तीसगढ़ से, मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमो, मानस राज। इसी बीच जुड़ रहे हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी, निमित आहूजा जी। धनौरी तेलीवाला से श्रोता साथी हैं निशाद सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू जी। छत्रपति शिवाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजीव राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश जी। मलियान सरधना मेरर से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान मास्टर, जीवीएम जैन, आदि जैन, अंश जैन, पवित्र, अंशिका जैन। तो आइए दोस्तों मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं तो ही रब तो ही दुआ। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है साथियों, बताना चाहूंगी। राही नगर गंजुटवारा से, फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया, गीत के बोल हैं मेरे रंग में रंगने वाली। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं शमशिल कमर राही, शाइन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु अंसारी, कलीम अंसारी जी और भी दोस्त हमारे बीच जुड़ना चाह रहे हैं इसी गीत के साथ, सुन रहे हैं इस गीत को, बताना चाहूंगी। गंजुटवारा से ही जुड़ना चाह रहे हैं बेबी सालिया डावर, हलीमा डावर, जिक्रा डावर, आयशा खत्री, फातिमा खत्री, तबस्सुम खत्री जी और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं इसी गीत के साथ में, नाम बताना चाहूंगी। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं चन्नूलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रजन साहु, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। बिहार कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, मीना मस्किन, आशीष रजक, चेतना मस्किन, मेघा मस्किन। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हेमंत नामदेव, चन्नूलाल श्रीवास जी, नंदिनी, नेहा नामदेव। यूपी से है फरुखाबाद से सुरेश चुरसिया, शरद चुरसिया, सुजाता सलोनी, लल्ला चुरसिया, संजू जी, बाबू शिवानी और शिवा चुरसिया जी। गंजुटवारा से जुड़ना चाह रहे हैं श्रोता साथी मोहम्मद यासिन हाशमी, बेगम हाशमी, तौसिफ हाशमी, तैमूर हाशमी, कलीम अंसारी जी। पुणा दक्षिण मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा चेतन, सुलोचना भगत जुड़ना चाह रहे हैं श्रोता साथी, जुड़ रहे हैं। आपको बताना चाहूंगी कौरबा से श्रोता साथी हैं लखन सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानु शाहजू, बब्बन मुन्हू, कान्हा जी, हरिप्रिया जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं मलोद से हैं रमेश कुमार जाजोरिया, गीतरणी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजे जाजोरिया और गुट्टू जी। अजित कसाना, मायादेवी रेतिक, आदित्य कसाना मुरादाबाद से जुड़ना चाह रहे हैं ये। निजामाबाद हरियाणा से जसपीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, अमरजीत कौर जुड़ना चाह रहे हैं श्रोता साथी हैं। पंडरपुर शहर से हैं सुनीता शिंदे, यशाज शिंदे, ऋषि शिंदे, कृष्णा घोड़के जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं मेरे रंग में रंगने वाली।

श्रोता साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि यही हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। आपसे हमारे श्रोता साथियों फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम आपकी फरमाइश में कुछ नई फरमाइश गीतों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ साथियों नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल, और बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

तो साथियों, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी हमारी आपसे अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल को। नमस्कार।

0: जागृति बुन, आपे कारे सोचू है, अगर आप बुंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है।
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये है, ये हुके जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है, ये भी रुके जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। अगर चाहो तेज दिमाग ने स्वस्थ जीवन, तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन।
0: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ने थी सके।
2: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
0: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपड़ने आपड़े मई देखाय तो आपड़ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
2: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
0: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
2: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
3: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: भाई ने बोलो, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े नी कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राखे है।
5: होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा।
4: प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा, ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
0: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
4: होवे आज नाना ना कदम है, ये अब्बा वाला काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
2: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
2: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राखंगा।
3: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
7: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर एक कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश हमारी बातें रहने वाली है कि जब हमें काम करने का मौका मिले तो उसका पूरा फायदा उठाना है और नई बात सीखनी है।
0: बिल्कुल,
1: यानी कि श्रोता साथियों, जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी ऐसा अवसर अवश्य मिलता है जब उसे अपने हुनर को दिखाने, कुछ नया सीखने और आगे बढ़ने का मौका मिलता है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन बहुत से लोग इन अवसरों को पहचान नहीं पाते या फिर आलस, डर और आत्मविश्वास की कमी के कारण उन्हें गवा देते हैं।
0: जी हाँ।
1: सच तो ये है कि जीवन में सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो हर मौके को पूरा लाभ उठाते हैं और हर नई बात सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए कहा गया है श्रोता साथियों कि मौकों को पहचानो, सीखने की आदत अपने आप पनप जाएगी।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना साथियों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत सुनवा दें हम।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके और बातचीत की शुरुआत भी हो चुकी है कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि जब हमें काम करने का मौका मिलता है तो हमें उसका पूरा फायदा उठाना है, साथ ही हर बात नई सीखनी है। श्रोता साथियों,
1: बिल्कुल
0: हम देख सकते हैं कि आज का जो ये विषय है जागृति जी, वो हमारे युवाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि युवावस्था केवल सपने देखने का समय नहीं होता। हम देखते हैं कि बल्कि सीखने, मेहनत करने और खुद को मजबूत बनाने का समय भी माना जाता है।
1: जी हाँ,
0: क्योंकि श्रोता साथियों, जीवन में हर किसी को नए नए अवसर तो मिलते ही रहते हैं, लेकिन सफल वही होते हैं जो इन अवसरों को पहचान ले और उनका पूरा उपयोग करे। जागृति जी,
1: बिल्कुल
0: हम देखते हैं कि आज का समय बहुत तेजी से बदल रहा है, हर दिन नई तकनीकें आ रही हैं और काम करने के तरीके भी धीरे धीरे बदल रहे हैं और प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में दोस्तों केवल डिग्री होना आपके लिए काफी नहीं होगा, बल्कि हर दिन कुछ नया सीखने की आदत भी आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकती है।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि हम देखते हैं कि आज का समय तेजी से बदल रहा है, हर दिन नई तकनीक, नए विचार और नए तरीके सामने आ रहे हैं, जैसा कि अभी आपने बताया था।
0: बिल्कुल,
1: यदि हम समय के साथ खुद को नहीं बदलेंगे और नई बातें नहीं सीखेंगे श्रोताओं, तो हम पीछे रह जाएंगे। इसीलिए जब भी हमें कोई काम करने का अवसर मिले तो हमें उसे पूरे मन से करना होगा।
0: जी जी।
1: चाहे वो छोटा काम हो, बड़ा काम हो, हर काम हमें कुछ नया सिखा कर ही जाता है। और कहा भी गया है कि हर काम अनुभव देता है और अनुभव इंसान को बेहतर बनाता है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि केवल बड़ी नौकरियां, बड़ा मंच मिलने पर ही मेहनत करनी होगी, लेकिन सच्चाई ये है कि छोटी शुरुआत ही हमें बड़े सपनों तक पहुँचाती है।
0: बिल्कुल,
1: एक छोटा अवसर भी इंसान की जिंदगी बदल सकता है। यदि कोई विद्यार्थी स्कूल में भाषण देने का मौका पाता है और पूरे आत्मविश्वास से प्रयास करता है कशिश, तो वही अनुभव आगे चलकर उसे अच्छा वक्ता भी बना सकता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि जीवन में अवसर हमेशा बड़े रूप में है, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार श्रोता साथियों, छोटे छोटे मौके भी भविष्य की बड़ी सफलता बन जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि किसी को छोटी नौकरी मिलती है तो किसी को प्रशिक्षण का मौका। जागृति जी,
1: जी हाँ,
0: किसी को किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ काम करने का अवसर भी प्राप्त होता है। तो किसी को हम देखते हैं कि समाज के बीच काम करने का भी मौका मिलता है।
1: जी हाँ
0: दोस्तों, ऐसे में समझदार व्यक्ति इन छोटे मौकों को भी गंभीरता से लेता है और बहुत से युवा ये सोचकर इस मौके को छोड़ देते हैं जागृति जी, कि इसमें पैसा कम है, उन्हें इसमें नाम नहीं मिलेगा या फिर काम बहुत छोटा है। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि इतिहास इस बात का गवाह है कि बड़े लोग अक्सर छोटे कामों से ही आगे बढ़ पाए हैं।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि काम करने का मौका हमें जिम्मेदारी सिखाता है। जब हम किसी काम को पूरी ईमानदारी और लगन से करते हैं तब हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है।
0: बिल्कुल,
1: हम समझते हैं कि कठिन परिस्थितियों में कैसे काम करना है और समस्याओं का समाधान कैसे निकालना है। यही अनुभव आगे जीवन में काम आता है। हर नई बात सीखना जीवन को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा मंत्र है श्रोता साथियों। हम कह सकते हैं कि सीखना केवल किताबों तक सीमित नहीं होता, हम लोगों से, परिस्थितियों से, गलतियों से और अपने अनुभवों से भी बहुत सारी बातें सीखते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसकी प्रगति भी रुक जाती है, इसीलिए हमेशा जिज्ञासु बने रहना जरूरी है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। इसी के साथ दोस्तों एक कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हर काम जागृति जी इंसान को कुछ ना कुछ जरूर सिखाता है। अगर हमारे युवा साथी दुकान पर काम करते हैं तो लोगों से व्यवहार करना वे सीखते हैं।
1: बिल्कुल,
0: अगर कोई खेत में काम करता है साथियों तो वह धैर्य और मेहनत सीखता है। और अगर कोई रेडियो, मीडिया या फिर सामाजिक संस्था में काम करता है तो वह संवाद और जिम्मेदारी सीखता है। जागृति जी,
1: जी हाँ,
0: यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक दोस्तों अनुभव ही है। किताबें ज्ञान जरूर देती हैं लेकिन काम आपको अनुभव सिखाता है।
1: बिल्कुल,
0: आज हम देखते हैं कि बहुत से युवा केवल आरामदायक काम चाहते हैं। जागृति जी, वे ऐसा चाहते हैं कि शुरुआत से ही सब कुछ आसानी से उन्हें मिल जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपसे कहना चाहेंगे कि जीवन में आगे वही बढ़ता है जो कठिन परिस्थितियों से कुछ नया सीखता है।
1: जी हाँ कशिश, तो जैसा कि कशिश आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही है कि जब हमें काम करने का मौका मिले तो पूरा फायदा उठाए, क्योंकि हम उससे हर नई बात सीख सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी हमारे आज के इस कार्यक्रम में, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और हमारी बातें चल रही थी कि जब हमें काम करने का मौका मिले तो उसका फायदा उठाएं और हर नई बातों को सीखें। तो यही आपको श्रोता साथियों बताना चाहेंगे कि जब हमें कोई नया काम मिलता है तो शुरुआत में हमें डर लगता है और डर लगना भी स्वाभाविक है। कई बार हमें लगता है कशिश कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन डर के कारण पीछे हट जाना सही नहीं है श्रोता साथियों।
1: बिल्कुल,
0: जो लोग चुनौतियों का सामना करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। नई जिम्मेदारियां ही इंसान को मजबूत बनाती है और हर नया काम हमें नई सोच देता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपको बताएं कि यदि कोई छात्र स्कूल के कार्यक्रम में भाग लेता है कशिश, तो उसे टीम वर्क, समय प्रबंधन और अनुशासन जैसी बातें सीखने को मिलती है।
1: बिल्कुल,
0: इसी तरह नौकरी करने वाला व्यक्ति नए लोगों से मिलकर व्यवहार और नेतृत्व की कला सीखता है। कई बार लोग ये सोचकर अवसर छोड़ देते हैं श्रोताओं कि उन्हें तुरंत सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। लगातार सीखने और लगातार मेहनत करने से धीरे धीरे व्यक्ति निपुण बनता है।
1: बिल्कुल,
0: एक किसान भी बीज बोने के तुरंत बाद फल की उम्मीद नहीं कर सकता, बल्कि धैर्य रखकर मेहनत करता है। इसलिए कहा गया है कि मेहनत का फल समय पर जरूर मिलता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। इसके विपरीत अगर देखें तो इंसान अगर सीखना ही बंद कर दे तो उसका विकास रुक सकता है।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, क्योंकि हम देख रहे हैं कि समय बदल रहा है तो समय के साथ हमें खुद को भी बदलना होगा। आज जागृति जी, मोबाइल चलाना, कंप्यूटर को समझना, इंटरनेट का उपयोग करना और लोगों से संवाद करना, साथ ही टीम में काम करना और समय का सही उपयोग करना, ये सब जरूरी कौशल बन चुके हैं।
0: जी हाँ,
1: ऐसे में जो युवा सीखने के लिए तैयार रहते हैं उनके लिए अवसरों की कमी नहीं रहती। लेकिन जो युवा बैठे रहते हैं और कह सकते हैं कि आसान काम या फिर काम चोरी के चक्कर में ही बैठे रहते हैं, तो उन्हें अवसर होते हुए भी नहीं मिल पाते।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में हमारे युवा साथियों को नई बातें सीखनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों नई बातें सीखने से सोच विकसित होती है, आत्मविश्वास आपका बढ़ता है, काम की गुणवत्ता बेहतर होती है, व्यक्ति की पहचान बनती है और साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं।
0: जी हाँ,
1: याद रखें श्रोता साथियों, सीखना केवल स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं होना चाहिए, जीवन का हर दिन भी हमें एक नया पाठ पढ़ाता है।
0: बिल्कुल, और हम कह सकते हैं कशिश की जीवन में सफल लोग वही होते हैं जो हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीख लेते हैं। यदि उन्हें हार मिलती है तो वे उससे सबक लेते हैं, यदि जीत मिलती है तो वे और बेहतर बनने की कोशिश करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: सीखने की यही आदत ही उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। नई बातें सीखने से हमारा दिमाग सक्रिय रहता है, हमारी सोच विकसित होती है और हम हर समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं।
1: जी जी,
0: जो व्यक्ति नई जानकारी प्राप्त करता है उसका आत्मविश्वास और व्यक्तित्व दोनों मजबूत हो जाते हैं। काम करने के अवसर केवल पैसा कमाने के लिए नहीं होते श्रोताओं, बल्कि वे हमें जीवन जीने के तरीके भी सिखाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जब हम मेहनत करते हैं तब हमें दूसरों की मेहनत का मूल्य भी समझ में आता है।
1: जी हाँ,
0: हम विनम्र बनते हैं और जिम्मेदार नागरिक भी बनते हैं।
1: बिल्कुल,
0: कई महान लोगों की सफलता के पीछे उनके सीखने की आदत रही है कशिश। उन्होंने हर छोटे अवसर को गंभीरता से लिया और कभी सीखना बंद ही नहीं किया। यही कारण है कि वे सामान्य लोगों से अलग पहचान बना सके।
1: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे कि बहुत से लोग काम को मजबूरी भी समझते हैं, लेकिन दोस्तों समझदार व्यक्ति काम को अवसर समझता है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि काम हमें केवल पैसा ही नहीं देता बल्कि पहचान, सम्मान और आत्मविश्वास भी देता है। जब साथियों हम पूरी लगन से काम करते हैं तो इससे हमारा व्यक्तित्व निखरता है।
0: जी हाँ,
1: धीरे धीरे लोग हम पर भरोसा करने लगते हैं और यही भरोसा जागृति जी आगे नए अवसरों का रास्ता खोलता है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में श्रोता साथियों आप हर दिन खुद से ये पूछिए कि आज मैंने क्या नया सीखा। याद रखें श्रोता साथियों, कोई भी काम छोटा नहीं होता, हर काम आपको अनुभव देगा। जो पूछता है वही सीखता है श्रोता साथियों। संकोच जो है वो ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है।
0: जी हाँ,
1: यानी कि जागृति जी, अगर हम इस बात को एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से श्रोता साथियों को बताएं, तो दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे आसपास ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने छोटे अवसरों से शुरुआत की है।
0: बिल्कुल,
1: और फिर आगे जाकर बड़ी सफलता प्राप्त की है।
0: जी हाँ,
1: जैसे कि किसी ने छोटी दुकान से शुरुआत की तो किसी ने मजदूरी से, और किसी ने खेत से, तो किसी ने रेडियो मीडिया से श्रोता साथियों।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन उनमें एक बात ये समान थी कि उन्होंने हर अवसर से कुछ नया सीखा और कभी सीखना बंद नहीं किया।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि हमें ये समझना होगा कि अवसर बार बार नहीं आते, इसलिए जब भी कोई मौका मिले तो श्रोताओं से पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपनाना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: यदि हम हर अवसर का सही उपयोग करेंगे तो धीरे धीरे हमारी क्षमताएं बढ़ेंगी और हम जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे।
1: जी हाँ,
0: एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे श्रोता साथियों कि एक लड़का शहर में एक छोटी सी दुकान पर काम करता था। वो हर दिन अपने मालिक को ध्यान से देखता था और नई बातें सीखता था।
1: बिल्कुल,
0: खाली समय में वो हिसाब किताब और ग्राहकों से व्यवहार करना सीखता रहा। कई वर्षों बाद उसी लड़के ने अपनी खुद की बड़ी दुकान शुरू की और सफल व्यापारी बन गया। उसकी सफलता का रहस्य यही था श्रोता साथियों कि उसने हर छोटे काम और हर नए अनुभव से सीखने की कोशिश की।
1: बिल्कुल,
0: कहा भी गया है कि जो सीखता रहता है वही आगे बढ़ता रहता है। आज के युवाओं को चाहिए वे हर अवसर को सीखने का माध्यम बनाए, चाहे घर का काम हो, पढ़ाई हो, खेल हो या नौकरी, हर जगह कुछ नया सीखने का अवसर छिपा होता है। श्रोताओं, यदि हम मेहनत करेंगे, धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चुनेगी।
1: बिल्कुल,
0: हम कह सकते हैं कि जीवन में मिलने वाले हर अवसर का लाभ पूरा उठाना चाहिए और हमेशा नई बातें सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। यही आदतें हमें आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और सफल बनाती है। कशिश, समय कभी रुकता नहीं, इसलिए हमें भी रुकना नहीं है। श्रोताओं, सीखते रहना और मेहनत करते रहना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, ऐसे में हम कार्यक्रम के अंत में हमारे साथियों को यही कहना चाहेंगे कि श्रोता साथियों, जीवन में हर दिन कुछ नया सिखाने की कोशिश करता रहता है।
0: बिल्कुल,
1: फर्क सिर्फ इतना है कि कोई व्यक्ति उसको सीख की तरह अपनाता है तो कोई उसे अनदेखा कर देता है। इसलिए जब भी आपको काम करने का मौका मिले दोस्तों, उसे केवल जिम्मेदारी न समझे बल्कि अपने भविष्य को बेहतर बनाने का अवसर समझे। अपने हुनर पर विश्वास रखिए साथियों, और अपने समय की कद्र कीजिए और अपने सपनों को मेहनत की ताकत दीजिए। यकीन मानिएगा साथियों कि एक दिन यही मेहनत आपकी पहचान बनेगी और आपकी सफलता दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि कशिश, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की, समय उचला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा जरूर लेंगे, पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: श्रोताओं इस गीत के साथ ही विदा लेना चाहेंगे। अंत में बस आपसे यही कहना चाहेंगे, मौके को मत गवाइए, सीखते जाओ और जीवन में आगे बढ़ते जाओ। इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ आपके साथ विदा लेते हैं। उम्मीद है कि जो बातें रही कार्यक्रम युवाओं की आवाज के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: बिल्कुल।
0: आपको हमारा आज का कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी हमारे आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपके अपनी दोस्त कशिश पारशर
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। कशिश, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है कि बच्चों में झिझक और शर्मिलापन कैसे दूर करें।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। कोई बच्चा बहुत मिलनसार होता है तो कोई शांत स्वभाव का, तो कुछ बच्चे आसानी से लोगों से बात कर लेते हैं।
0: बिल्कुल।
1: जबकि कुछ बच्चों को नए लोगों के सामने बोलने, अपनी बात रखने और किसी गतिविधि में भाग लेने में संकोच होता है। यह झिझक और शर्मिला जोपन है कशिश, कई बार बच्चों की प्रतिभा को सामने आने से रोक देता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन शुरुआत में जैसा कि मनोरंजन करना जरूरी है और ये हमारे कार्यक्रम का दस्तूर भी है,
1: जी हाँ,
0: तो क्यों ना हमारे दोस्तों को यहाँ पर कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवाएं।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि श्रोता साथियों, बातचीत की शुरुआत हो चुकी है और गीत से पहले विषय भी आपको बता ही दिया था कि बात कर रहे हैं बच्चों में झिझक और शर्मिलापन कैसे हम दूर करें। जैसा कि अंजलि जी आपने गीत से पहले बताया था कि हर बच्चा अपने आप में अनोखा होता है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, कुछ बच्चे बहुत मिलनसार होते हैं और खुलकर बात करने वाले होते हैं, जबकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्वभाव से शांत, संकोची और शर्मिले भी होते हैं।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, शर्मिलापन कोई बीमारी नहीं है बल्कि व्यक्तित्व का एक स्वाभाविक गुण है साथियों। लेकिन जब यही शर्मिलापन बच्चों के आत्मविश्वास, शिक्षा, मित्रता और व्यक्तित्व विकास में बाधा बनने लगे, तब इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है माता पिता के लिए। अंजलि जी
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि झिझक और शर्मिलापन वो स्थिति है जब बच्चा अपनी बात कहने, लोगों से मिलने जुलने या किसी नई परिस्थिति का सामना करने में असहज महसूस करता है। ऐसे बच्चे अक्सर भीड़ में चुप रहते हैं, नए लोगों से बात करने से बचते हैं, कक्षा में उत्तर जानते हुए भी हाथ नहीं उठाते,
0: बिल्कुल
1: मंच पर आने से डरते हैं और अपनी राय खुलकर नहीं रख पाते। श्रोता साथियों, शर्मिला होना कोई बीमारी नहीं है, लेकिन यदि यह बहुत अधिक हो जाए तो बच्चे के विकास को प्रभावित कर सकती है। यही अब बात आती है कशिश कि बच्चे शर्मिले आखिरकार क्यों बनते हैं। तो श्रोता साथियों, जब बच्चों को बार बार ये महसूस कराया जाता है कि वे दूसरों जितने अच्छे नहीं हैं, तो उनका आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। धीरे धीरे वे अपनी क्षमता पर संदेह करने लगते हैं और बोलने से भी कतराते हैं। कुछ परिवारों में बच्चों की हर छोटी गलती पर डांट पड़ती है।
0: बिल्कुल
1: ऐसे माहौल में भी बच्चा डरने लगता है कि कहीं कुछ गलत न हो जाए, यही डर झिझक का रूप ले लेती है।
0: बिल्कुल
1: इसी के साथ कशिश, जब बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से की जाती है तो उसे लगता है कि वह दूसरों से कम है।
0: जी हाँ,
1: भावना उनके आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। इसी के साथ कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से कि उपहास का डर भी बच्चों को रहता है। कुछ बच्चे इसलिए भी नहीं बोलते क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। इसी के साथ अगर बात करें पारिवारिक वातावरण की, तो जैसा कि दोस्तों बच्चों का व्यवहार काफी हद तक परिवार से प्रभावित होता है। जैसा कि आपने बताया कि कुछ बच्चों को हर छोटी छोटी बातों पर घर पर डांटा जाता है,
1: बिल्कुल,
0: जिसके कारण भी बच्चे शर्मिले हो जाते हैं। साथियों, कुछ बच्चे स्वभाव से ही शांत और अंतर्मुखी होते हैं, ऐसे बच्चों को समझने और धीरे धीरे प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है। अंजलि जी
1: जी हाँ,
0: जैसे कि यदि बच्चे को लोगों से मिलने जुलने और नई परिस्थितियों का अनुभव करने के अवसर नहीं मिलते हैं, तो वह सामाजिक रूप से संकोची बन जाता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए माता पिता से हम ये कहना चाहेंगे कि वह बच्चों को बाहर खेलने दे, लोगों से मिलने जुलने के लिए अवसर दे, ताकि बच्चे खुलकर अपनी बात कह सके।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही अब बात आती है कि झिझक और शर्मिलेपन का बच्चों पर क्या असर पड़ता है। तो श्रोता साथियों, कई बार उत्तर जानते हुए भी कक्षा में बच्चे बोल नहीं पाते।
0: बिल्कुल,
1: इस कारण उनकी वास्तविक क्षमता सामने नहीं आ पाती। इसी के साथ कई बच्चों में कला, खेल, गायन और नेतृत्व की अद्भुत क्षमता होती है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन शर्मिलापन उन्हें आगे आने से रोक देता है। शर्मिले बच्चे अक्सर कम दोस्त बना पाते हैं, इससे वे अकेलापन महसूस कर सकते हैं। श्रोता साथियों, जो बच्चे अपनी बात रखने का अभ्यास नहीं कर पाते, उसे आगे चलकर निर्णय लेने में भी कठिनाई होती है।
0: बिल्कुल,
1: इस तरीके से हम कह सकते हैं कि झिझक और शर्मिलेपन का असर बच्चों की कई सारी चीजों पर पड़ता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो जैसा कि बातें हमारी कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छी चल रही है कि बच्चों में झिझक और शर्मिलापन

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हमने बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों को जाना, यही अब आप सभी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या हर शांत बच्चा शर्मिला होता है? तो श्रोता साथियों, नहीं, ये समझना बहुत जरूरी है कि शांत स्वभाव और शर्मिलापन अलग अलग बातें हैं।
1: बिल्कुल,
0: कुछ बच्चे स्वभाव से कम बोलते हैं लेकिन जरूरत पड़ने पर अपनी बात रख लेते हैं। समस्या तब होती है जब बच्चा डर, असुरक्षा और संकोच के कारण बोलने से बचता है।
1: बिल्कुल,
0: यही बच्चों की झिझक को दूर करने के कुछ उपाय हैं जो हमें अपनाने होंगे। जैसे कि बच्चों की बातों को हमें ध्यान से सुनना है। जब बच्चा कुछ कहे तो उसकी बात पूरी सुने। यदि परिवार उसकी बातों को महत्व देगा तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा।
1: बिल्कुल,
0: बच्चों ने यदि किसी के सामने बोलने की कोशिश की है तो उसकी प्रशंसा हमें करनी है और हर छोटी उपलब्धि आत्मविश्वास की सीढ़ी बन सकती है।
1: जी हाँ,
0: हर बच्चा अलग होता है

0: किसी और से तुलना करने के बजाय श्रोता साथी उसके अपनी प्रगति पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। जब बच्चों को छोटी छोटी बातों में निर्णय लेने, जैसे कि कौन सी कहानी पढ़नी है, कौन सा खेल खेलना है, कौन सा चित्र बनाना है, इससे उनमें आत्मविश्वास आता है।
1: जी हाँ,
0: खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कहानी प्रतियोगिता और समूह गतिविधियां बच्चों को खुलने में मदद करती है।
1: बिल्कुल,
0: बच्चों को एकदम बड़े मंच पर भेजने के बजाय छोटे छोटे अवसर हमें देने हैं, जैसे कि परिवार के सामने कविता सुनाना, कक्षा में दो पंक्तियां बोलना, छोटे कार्यक्रमों में भाग लेना, धीरे धीरे उनका डर कम होगा।
1: बिल्कुल,
0: बच्चों को यह महसूस होना चाहिए कशिश कि गलती करना सामान्य बात है, गलतियों से सीख मिलती है, शर्म नहीं।
1: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे कि बच्चे तब खुलकर अपनी बात कहते हैं जब उन्हें सुरक्षित और स्नेहपूर्ण वातावरण मिलता है। तो ऐसे में घर का माहौल ऐसा होना चाहिए जहाँ बच्चा बिना डर के अपनी बात रख सके।
0: बिल्कुल
1: साथियों, बच्चों को धीरे धीरे लोगों के सामने बोलने का अवसर हमें देना चाहिए, जैसे कि परिवार के सामने कविता सुनाना, मेहमानों का स्वागत करना, छोटे समूहों में चर्चा करना, क्योंकि जो अंजलि जी छोटी सफलताएं होती हैं वो बड़े आत्मविश्वास का आधार बनती है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि जब बच्चा कुछ कहना चाहता है तो हमें उसकी बात को बीच में नहीं काटना है, उसकी भावनाओं और विचारों का सम्मान करना है। इससे श्रोता साथियों बच्चों को ये लगेगा कि आप उसकी बात सुनते हैं और उसकी बात भी कुछ महत्व रखती है।
0: बिल्कुल कशिश,
1: साथ ही संवाद कौशल को भी विकसित करें, यानी कि बच्चों को बातचीत करने की कला आप सिखाएं, उनसे रोजाना दिन भर की गतिविधियों के बारे में चर्चा करें, खुले में प्रश्न पूछे साथियों, उन्हें अपने विचार व्यक्त करने के लिए भी प्रेरित आप कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: बच्चों को समझाएं कि गलती करना सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। यदि बच्चा गलती से नहीं डरेगा अंजलि जी, तो उसकी झिझक भी इससे कम होगी।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा, क्योंकि स्कूल केवल पढ़ाई का केंद्र नहीं है बल्कि व्यक्तित्व विकास स्थान भी है। शिक्षकों को चाहिए कि शर्मीले बच्चों को प्रोत्साहित करें, उनकी आलोचना न करें, उन्हें गतिविधियों में भाग लेने का अवसर दें।
1: बिल्कुल,
0: उनकी छोटी उपलब्धियों की सराहना करें। एक संवेदनशील शिक्षक कई बच्चों का जीवन बदल सकता है। माता पिता बच्चों के पहले शिक्षक होते हैं। यदि घर का वातावरण प्रेम, विश्वास और सहयोग से भरा होगा तो बच्चा अधिक आत्मविश्वासी बनेगा। बच्चे को यह भरोसा होना चाहिए कि अगर मैं गलती करूंगा तब भी मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा रहेगा।
1: जी हाँ,
0: यही विश्वास उसे झिझक से बाहर निकालता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ अगर बात करें श्रोता साथियों, तो शर्मिलेपन को दूर करने का समय अलग होता है। तो हम देखते हैं कि शर्मिलेपन को दूर करने में समय लगता है।
0: बिल्कुल,
1: बच्चे पर दबाव डालने के बजाय धैर्य पूर्वक उसका साथ दे और धीरे धीरे आप देखेंगे कि वह खुद ही आत्मविश्वासी बनने लगेगा।
0: जी हाँ,
1: क्योंकि हम देखते हैं अंजलि जी की आत्मविश्वास वह शक्ति है जो बच्चे को चुनौतियों का सामना करना सिखाती है। आत्मविश्वासी बच्चा अपनी बात स्पष्ट रूप से रख पाता है और नए अवसरों को भी अपनाता है।
0: बिल्कुल,
1: जिससे जीवन में आगे बढ़ने का साहस उसे मिलता है। इसलिए साथियों, बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करना उनके उज्जवल भविष्य की नींव तैयार करने जैसा कार्य है।
0: बिल्कुल कशिश, झिझक और शर्मिलापन बच्चों की कमजोरी नहीं है बल्कि एक ऐसी स्थिति है जिसे प्यार, धैर्य और सही मार्गदर्शन से बदला जा सकता है।
1: जी हाँ,
0: हर बच्चे के भीतर प्रतिभा, सपने और संभावनाएं छिपी होती हैं। जरूरत केवल इतनी है कि हम उन्हें ऐसा वातावरण दे जहाँ वे बिना डर के अपनी बात कह सके,
1: बिल्कुल
0: अपनी पहचान बना सके और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सके। याद रखिए श्रोता साथियों, बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत महंगे खिलौनों की या बड़ी सुविधाओं की नहीं होती बल्कि विश्वास, प्रोत्साहन और अपनेपन की होती है। हम हर बच्चे को यह एहसास दिलाएं कि उनकी आवाज महत्वपूर्ण है, उनके विचार मूल्यवान है और वह जैसा है वैसा ही सम्मान के योग्य है।
1: बिल्कुल,
0: इस तरीके की चीजें अगर हम बच्चों के साथ करेंगे तो हम देखेंगे कि बच्चों के अंदर जो झिझक है, जो शर्मिलापन है, वो अपने आप दूर हो जाएगा।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है और अब हम देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे दोस्तों को एक और प्यारा सा गीत यहाँ पर सुनवा दे हम।
0: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अब यही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: बिल्कुल,
1: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपनी साथी अंजलि पारशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। नमस्कार।

0: माटी में जमी हूँ आणि माटी तकीस जाणी जाऊ हूँ। मैं खेत हंबार्या बीज बोया मैं पसे न बहाई वो मिश्रम करू तो पसे बाप दादा नी जमी माते मारो अधिकार किन नती। सूरी जन्म तकीस हकदार है कानून ने आ बात मानी है न पन्या पूटे न हक को ले सके न रिवाज न सच ने बदली सके। बाप दादा नी जमीन सूर्य नो अधिकार सूर्य नो हक इन्हें पहचान। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: अरे गोरी इतने सुस्त क्यों दिख रही हो, कुछ खाया पिया नहीं है क्या?
2: अरे दीदी क्या करूं, कुछ खाने पीने का तो मन ही नहीं करता है मेरा।
1: अरे गोरी ये तो गर्भावस्था में होता ही है, जी मचलाएगा खाने का मन नहीं करेगा, पर अभी तो खाना ज्यादा जरूरी है और खाने में भी तुम्हें दूध दही दालें हरी सब्जियां खानी चाहिए, इससे तुम्हारे बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा।
2: अरे वाह दीदी, अगर ये सब खाने से बच्चे का विकास अच्छा होगा तो मैं आज से ही दूध पीना शुरू कर दूंगी और साथ में हरी सब्जियां और दाल भी खूब खाऊंगी।
1: ये हुई ना बात गोरी।
3: याद रहे गर्भावस्था में सबसे जरूरी है पोषक खाना। वागर रेडियो द्वारा

तकी निकरते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पितानी उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान। होवे इटले गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पेरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: અંજલિબોન, ગીત તો અહીં શું પૂરું, અને ગીતને બાદ એક વખત ફરી આપણે કિસાન ભાઈ બહેનોનું આપણે સ્વાગત કરા હા આપણે આજને કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં. ને જેમ કે ગીતે કે પહેલે વિષય બતાડ્યું હતું કે આજે આપણે વાત કરવા વાળા હા મેળબંધી ને પ્રારંભ મેં,
1: હવે
0: તો આના વિશેની જાણકારી આલવા બદલે આજે આપણે સ્ટુડિયો મેં મનીષજી સર આવ્યા હે, એ બતાડે કે આપણને મેળબંધી શું કહેવાય ને આને આપણે હરતે કરી શકા.
1: હવે
0: તો પહેલે સાંભળી લાણા ની વાત ને મોરે કર આપણી વાતે.
1: હવે સર નમસ્કાર.
2: જી નમસ્તે અંજલિ જી.
1: સર આપકા બહોત બહોત સ્વાગત કરતે હૈ હમારે આજ કે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં. જૈસા કે સર આપ હમારે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી સે નિરંતર જુડતે રહેતે હૈ ઓર ખેતી સે જુડી, પશુપાલન સે જુડી, જલ સંરક્ષણ સે જુડી ઢેર સારી બાતે આપ હમારે કિસાન ભાઈ બહેનો કે સાથ કરતે હૈ. તો એસા હી એક વિષય આજ હમારે કાર્યક્રમ મેં આપકે માધ્યમ સે જુડને જા રહા હૈ. આજ હમ જાનેંગે કે મેળબંધી કા ક્યા મહત્વ હૈ, મેળબંધી ક્યા હોતી હૈ, કોન સે સે તરીકે હૈ જિસસે હમારે જો કિસાન ભાઈ બહેન હૈ વો મેળબંધી કર સકતે હૈ. તો સબસે પહેલે તો સર આપ કાર્યક્રમ મેં હમે યે બતાઈએ કે આખિરકાર મેળબંધી ક્યા હોતી હૈ ઓર ઉસકા ક્યા મહત્વ હૈ.
2: જી સભી સુનને વાલે શ્રોતા બંધુઓ કો જય ગુરુ. અંજલિ જી બહોત હી મહત્વપૂર્ણ ये विषय है और यही सही समय है इसके बारे में जानकारी के लिए भी.
1: जी हाँ.
2: कि मेड़बंदी का क्या महत्व है, मेड़बंदी क्या है, मेड़बंदी के तरीके क्या हैं और इनके फायदे क्या हैं, आखिर हम इसे क्यों करें, तो ये सारे ही प्रश्न आपके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं.
1: जी जी.
2: जैसा कि हम जानते हैं हमारा वागड़ क्षेत्र पारंपरिक खेती के लिए जाना जाता है और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है.
1: जी बिल्कुल.
2: तो अगर हम बहुत सरल शब्दों में जानना चाहें कि मेड़बंदी क्या है.
1: जी जी.
2: तो मेड़बंदी का अर्थ होता है खेत की जमीन को अलग अलग हिस्सों में विभाजित करना.
1: जी जी.
2: जिससे कि एक समय में कई फसलों की उत्पादकता को बढ़ावा मिले और ये एक विशेष प्रकार की व्यवस्था है.
1: जी जी.
2: जिसमें खेत की भूमि को समय समय पर उपयुक्त फसलों के लिए तैयार किया जाता है.
1: जी बिल्कुल.
2: अब यदि हम इसमें बात कर रहे हैं कि अलग अलग हिस्सों में विभाजित करते हैं तो ज्यादातर ये होता है कि कई किसानों के पास जो जमीन होती है
1: जी हाँ.
2: वो एक सी नहीं होती है. कभी वो ढालू जमीन होगी, कहीं पे समतल जमीन होगी, कहीं पे पथरीली जमीन होगी. तो इस तरह की जो जमीनें हैं उनमें उनकी ढाल के हिसाब से मेड़ बना दी जाती है.
1: जी हाँ.
2: और इस तरह की जमीनों में अलग अलग तरीके की फसलों को बोया जाता है.
1: जी बिल्कुल.
2: जो उस जगह के अनुरूप होती है जिसमें वो वाली फसल उस जगह में सबसे ज्यादा उत्पादन दे पाए. तो हमारे बागड़ क्षेत्र के सभी आदिवासी किसान इस चीज को अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन सी जगह में कौन सी फसल ज्यादा उत्पादन देती है.
1: जी बिल्कुल.
2: पर कई बार मेड़बंदी वो नहीं कर पाते हैं. तो मेड़बंदी के महत्व की बात अब यहाँ आती है.
1: जी हाँ.
2: कि जैसे हम सभी जानते हैं प्रमुख खाद्य संसाधन का जो स्रोत हमारे पास उपलब्ध है वो पूरे विश्व में सिर्फ खेती ही है.
1: जी बिल्कुल सर.
2: और आधुनिक समय में इसका महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है क्योंकि कृषि की जोत कम होती जा रही है या जमीनें कम होती जा रही हैं.
1: जी हाँ.
2: काफी सारी जमीनें अब अन्य उपयोग में ज्यादा आने लगी हैं और उत्पादन का दबाव कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है.
1: जी बिल्कुल.
2: तो जिस प्रकार अनियमितता और अयोजनाबद्ध तरीके से काम करने से सफलता नहीं मिलती है वैसे ही एक बिना अच्छी योजना के अभाव में खेती, उससे मिलने वाली उपज और उसकी गुणवत्ता ये मिल के इसकी मात्रा को प्रभावित करते हैं.
1: जी बिल्कुल सर.
2: इसलिए मेड़बंदी बहुत जरूरी है और यही इसका महत्व है कि खेती से उत्पन्न होने वाली उपज, उसकी गुणवत्ता और उसकी मात्रा ये प्रभावित हुए बिना हम एक अच्छी फसल ले पाए.
1: जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा. तो यही अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हमारे जो किसान भाई बहन है वो मेड़बंदी आखिरकार कैसे कर सकते हैं.
2: तो मैं बताना चाहूंगा कि सामान्य रूप से हमारे वागड़ क्षेत्र में जो मेड़बंदी की जाती है वो दो तरीके से की जाती है.
1: जी जी.
2: कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे पत्थर ज्यादा पाए जाते हैं और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे कम पत्थर हैं.
1: जी बिल्कुल.
2: तो जहाँ पे कम पत्थर पाए जाते हैं उन इलाकों में हमारे किसान भाई खेत की मेड़ पे मिट्टी की पाल बना सकते हैं.
1: जी हाँ.
2: और उसके ऊपर झाड़ी नुमा पौधे लगा सकते हैं, जिससे वो मेड़ बंदी स्थायी रूप से मेड़ वहीं बनी रहे,
0: जी जी।
2: बारिश के पानी के साथ बहे ना, या लंबे समय तक बनी रहे,
0: जी जी।
2: तो अगर उस पर झाड़ीदार पौधे लगा दिए जाते हैं तो इससे खेत की मिट्टी का कटाव रुकेगा, मेड़ का जो मिट्टी है उसका भी कटाव रुकेगा,
0: जी बिल्कुल।
2: और इस पे जो झाड़ी लगाई जाएगी वो उनको अतिरिक्त आमदनी में मददगार होगी,
0: जी जी।
2: तो झाड़ी में हम मेहंदी लगा सकते हैं, सीताफल लगा सकते हैं, या इस तरह की झाड़ी नुमा और भी प्रजातियां हैं,
0: जी जी,
2: जिनका हमको दुगना फायदा मिल सकता है,
0: जी बिल्कुल।
2: और दूसरी होती है जहाँ पे अधिक मात्रा में पत्थर पाए जाते हैं, तो ज्यादातर बड़ी ढलान वाली जगहों पे जहाँ पे हमको मेड़ बनानी है वहाँ पे एक फीट गड्ढा करके उसके नीचे से पत्थरों को समान रूप से जमाना चालू करते हैं एक जैसा, और उनको 1 से 1.5 फीट तक की ऊंचाई पे जमा देते हैं। इसका फायदा ये होता है कि जब पानी बह के आता है,
0: जी हाँ,
2: तो उन पत्थरों में मिट्टी हमारी रुक जाती है और पानी बह के निकल जाता है,
0: जी बिल्कुल।
2: इसके और भी कई फायदे हैं, तो अभी हमने जैसे इन 3 बिंदुओं को देखा कि मेड़बंदी क्या है, मेड़बंदी का महत्व क्या है,
0: हाँ,
2: और मेड़बंदी के तरीके क्या हैं,
0: जी बिल्कुल।
2: तो ये तीनों काम करने से हमारी जमीन में या हमको और कितने तरीके के फायदे हो सकते हैं, हम इनको जान लें, जिससे हमको ये पता चले कि मेड़बंदी के इसके अलावा और क्या फायदे हैं,
0: फायदे हो सकते हैं, जी बिल्कुल।
2: तो मेड़बंदी में हमने अभी जो बात की तो ये पोषक तत्वों का संतुलन बनाने में मदद करती है,
0: जी बिल्कुल।
2: जैसे हमने अभी जाना कि अलग अलग तरह की जमीन में अलग अलग तरीके फसलें बोई जाती हैं, तो इसके माध्यम से हमारी जमीन में पोषक तत्वों का संतुलन बनाए रखने में मेड़बंदी मदद करती है, क्योंकि उस जमीन के अंदर जो हमने फसल लगाई थी उससे जो उस मिट्टी को फायदा हुआ है, मान लीजिए आपने दलहन की फसल लगाई थी जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्सिंग होती है,
0: जी बिल्कुल।
2: अब अगर यही मिट्टी बह के चली जाती तो हमारे आने वाली फसल को वो नाइट्रोजन नहीं मिल पाती,
0: जी बिल्कुल।
2: तो इस तरह से मेड़बंदी हमारी मिट्टी के पोषक तत्वों के संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है,
0: जी बिल्कुल सर।
2: अब अगर हम बात करें रोग नियंत्रण की, तो मेड़बंदी रोग नियंत्रण में 2 प्रकार से मदद करती है,
0: जी हाँ।
2: जैसा कि हमने इसके पहले जाना कि हमारी मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है, जिससे फसल ज्यादा ताकतवर होती है और फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता
0: बढ़ जाती है।
2: और दूसरा होता है कि कई सारे जो फसल को नुकसान करने वाले कारक हैं, कीट पतंगे,
0: जी जी,
2: कीड़े या इस तरह के जो भी हैं, वो वहाँ पहुंचने में एक बाधा का सामना करते हैं,
0: जी जी,
2: जिससे या तो उनकी संख्या कम हो जाती है या कभी कभी वो पहुंच ही नहीं पाते,
0: जी बिल्कुल।
2: तो इस तरह से मेड़बंदी रोग नियंत्रण में भी मदद करती है,
0: जी हाँ,
2: यानी कि कीटों के प्रकोप से फसलों को बचाती है,
0: जी हाँ।
2: तीसरी चीज है जल संचयन, जैसे कि हमने पहले भी बात की कि सीधे तरीके से पानी बह नहीं पाता,
0: जी जी,
2: उसमें अवरोध आता है और यही पानी उस मिट्टी के अंदर जाता है या हमारे खेत के अंदर रहता है जितनी उसकी आवश्यकता है,
0: जी हाँ।
2: और इससे उस जगह की नमी बढ़ जाती है, जिससे उस फसल को और आने वाली फसल को कम पानी की आवश्यकता होती है,
0: जी बिल्कुल।
2: मिट्टी की उर्वरकता की बात करें तो हम 2 या 3 तरीके से इसको जान ही चुके हैं या समझ ही चुके हैं,
0: जी जी बिल्कुल,
2: कि मिट्टी की उर्वरकता को मेड़बंदी किस तरह से बढ़ाती है, क्योंकि हमारी मिट्टी वही है, हमारे जो पोषक तत्व हमने हमारी मिट्टी में डाले थे, जिसमें प्रमुख रूप से हम वर्मी कंपोस्ट बोले या कंपोस्ट गोबर खाद बोले, ये जो हमने डाले थे और उससे हमारी मिट्टी को जो पोषक तत्व मिले थे वो मिट्टी के नहीं बह पाने के कारण वही हैं,
0: जी बिल्कुल।
2: तो दिनों दिन हमारी मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती जाती है और इसमें जो कार्बनिक तत्व बढ़ते हैं इसके कारण हमारी मिट्टी में रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ती ही है,
0: जी हाँ।
2: इसके साथ ही साथ उसकी जल धारण क्षमता भी बढ़ती है,
0: जी बिल्कुल सर।
2: कभी कभी लंबे समय तक पानी न मिल पाने के कारण जब अन्य किसानों की फसलें कमजोर होने लगती है, उस स्थिति में भी ऐसा खेत जहाँ पे मेड़बंदी की गई है,
0: जी हाँ,
2: वो फसलें यथावत खड़ी रहती हैं। अब अगर हम बात करें तो मेड़बंदी को दो तरीके से किया जा सकता है कि मेड़बंदी करने में जो समय संसाधन लगेंगे उनका क्या किया जाए।
0: जी बिल्कुल सर।
2: तो व्यक्तिगत रूप से तो हमारे यहाँ मेड़बंदी होती ही आई है और किसान अपने हित के कारण उसको करते ही हैं, पर आजकल हमारे पास एक और विकल्प उपलब्ध है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत यदि हम अपने गांव की पंचायत की कार्य योजना में इसको जुड़वा लेते हैं
0: जी जी,
2: तो इस काम को व्यक्तिगत मेड़बंदी को उसमें जुड़वाया जा सकता है।
0: जी बिल्कुल।
2: तो अगर उसमें जुड़वा के हमारे किसान भाई इसको करते हैं तो वो अपने खेत की मेड़बंदी भी कर पाएंगे और उस मेड़बंदी को करने से उनको दोहरा आर्थिक लाभ होगा। मेड़बंदी करने के जो लाभ होंगे वो होंगे ही, इसके साथ प्रतिदिन की जो मजदूरी है वो भी महात्मा गांधी नरेगा से उनको मिल जाएगी।
0: जी बिल्कुल।
2: और ये कहीं ना कहीं उनको आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत करने के लिए काम आएगा। तो इस तरीके से हम मेड़बंदी करके अनेक तरीके से अपनी खेती में लाभ उठा सकते हैं।
0: जी हाँ।
2: और इसके अप्रत्यक्ष तरीके से और भी कई लाभ हैं जो मेड़बंदी करने वाले किसान अच्छी तरह से जानते हैं।
0: जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि आपने कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से हमारे किसान भाई बहनों को बता दिया है कि मेड़बंदी का क्या महत्व है और क्या ऐसे दो तरीके हैं जिसके माध्यम से वो मेड़बंदी कर सकते हैं, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका अमूल्य कीमती समय आपने हमें और हमारे श्रोता साथियों को दिया।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी।
0: જાગૃતિ બુન જેમ કે આપણે આપણે વેસમે મનીષજી સર જોડે તક હતા ને એણે આપણને ઘણી અસલ તરીકા તકી બતાડી દીધું હે કે મેળબંદી આપણને હર્ત કરવી હે ને કયા બે તરીકા હે જે આપણે કિસાન ભાઈ બુન અપનાવી શકીએ ને મેળબંદી કરવા તકી આપણે કિસાન ભાઈ બુનોને હર્ત ખેતી ની જે મિટ્ટી હે એનમે ફાયદો મળે, મિટ્ટીનો જે કટાવ હે ઈ રૂકી જા, અને ઘણા કાના એવા જે ફાયદા હે એના બારે મેં ભી એણે ઘણા કાની વાતે બતાડી હે। તો આશા કરો હો કે આ હંગરી વાતે આપણે ભાઈ બુનોની ગમી હોંગા, કેમ કે હવે ટાઈમ થઈ ગયો હે આપણે અણસ કાર્યક્રમ તકી સૂટો પડવાનો। તો સૂટો તો પડા પણ સાથે પહેલા હમરી લાઈક ઓર ગીત મોરે પડા સૂટો હોવે।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ साथियों, हम लेकर हाजिर है एक अनोखे विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं, अगर समाज बोल सकता तो वो हमसे क्या कहता। जरा सोचिए, जिस समाज में हम रहते हैं, जहाँ हम हंसते हैं, रोते हैं, सपने देखते हैं अंजलि, अगर वही समाज अचानक हमारे सामने खड़ा होकर बोलने लगे तो क्या वो हमारी तारीफ करेगा या हमें आईना दिखाएगा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही बात करेंगे कि अगर समाज बोल सकता तो वो हमसे क्या कहता।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी, इस विषय पर कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातें तो ढेर सारी रहेंगी, लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम हमारे साथियों को सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम सच्चा स्वराज में वाग रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय बताया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि अगर समाज बोल सकता तो क्या कहता।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो आज जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि अगर समाज बोल सकता तो क्या कहता हमसे, क्या कहता श्रोता साथियों कि वो हमसे खुश है या फिर कुछ शिकायतें भी हैं। आज हम समाज की उसी अनकही आवाज को सुनने की कोशिश करेंगे जिसके माध्यम से हम जान पाएंगे कि समाज आखिरकार हमसे क्या कहता है।
0: बिल्कुल,
1: समाज हम देखते हैं कि हम सब मिलकर बनाते हैं, हमारे विचार, हमारे व्यवहार, हमारे फैसलों से ये बनता है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि जो समाज हम बनाते हैं आखिरकार उस समाज में खुशी होती है या कुछ शिकायतें भी होती हैं। समाज हमें यही समझाना चाहता है कि हम ही समाज है, अगर हम बदलेंगे तो समाज अपने आप बदल जाएगा।
0: बिल्कुल अंजलि, और समाज ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के विचारों, भावनाओं, संस्कारों और व्यवहारों का जीवंत संगम है। हम सभी मिलकर समाज बनाते हैं, लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि हमारे छोटे छोटे कर्म ही समाज की दिशा और दशा तय करते हैं।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, कभी आपने सोचा है अगर समाज बोल सकता तो वो हमसे क्या कहता, क्या वो हमारी प्रशंसा करता या हमारी कमियों का आईना दिखाता। इस प्रश्न के माध्यम से हम सच्चे स्वराज की परिकल्पना को समझ सकते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि समाज केवल लोगों का समूह नहीं होता बल्कि ये विचारों, संस्कारों, परंपराओं, रिश्तों और जिम्मेदारियों का जीवन ताना बाना है।
0: बिल्कुल,
1: हम सब मिलकर समाज बनाते हैं, लेकिन अक्सर हम यह भूल जाते हैं श्रोता साथियों कि समाज भी हमारी तरह महसूस करता है। वह हमारे व्यवहार, हमारी सोच, हमारे निर्णयों से प्रभावित होता है। अगर समाज को बोलने की शक्ति मिल जाए तो वह सिर्फ अपनी खुशियां ही नहीं बल्कि अपनी पीड़ा, चिंता और उम्मीदें भी व्यक्त करेगा।
0: जी हाँ,
1: वह हमें आईना दिखाएगा कि हमारी अच्छाइयों का भी और हमारी कमियों का भी।
0: बिल्कुल,
1: अगर समाज बोल सकता तो सबसे पहले वह यही कहता कि मैं कोई अलग इकाई नहीं हूँ, मैं तुम सबका ही प्रतिबिंब हूँ। हम अक्सर समाज को दोष देते हैं कि समाज ऐसा है, समाज वैसा है, लेकिन श्रोता साथियों समाज हमसे अलग नहीं है। जब कोई व्यक्ति गलत करता है तो उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। समाज शायद हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुम बदलोगे तो मैं भी बदल जाऊंगा, अगर
0: हाँ।
1: तुम सुधरोगे तो मैं भी बेहतर हो जाऊंगा।
0: बिल्कुल अंजलि, सच्चा स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है, यह हमारे विचारों, व्यवहारों और जिम्मेदारियों की स्वतंत्रता और शुद्धता का प्रतीक है।
1: बिल्कुल,
0: स्वराज का अर्थ है स्वयं पर शासन करना, अपने भीतर अनुशासन और नैतिकता को स्थापित करना। यदि समाज बोल सकता तो वो सबसे पहले यही कहता कि तुम आजाद तो हो

0: आज हर कोई अपने फायदे के बारे में सोचता है, चाहे उससे दूसरों को नुकसान ही क्यों न हो। यही स्वार्थ शुदा साथियों धीरे धीरे समाज की जड़ों को कमजोर कर रहा है। समाज की आत्मा रिश्तों में बसती है, परिवार, दोस्ती, पड़ोसी, अपनापन। अगर समाज बोल पाता तो शायद रोते हुए कहता, तुम्हारे पास सब कुछ है, सुविधाएं, तकनीक, साधन, लेकिन तुम्हारे पास समय और अपनापन नहीं है। आज मोबाइल और सोशल मीडिया ने लोगों को जोड़ने के बजाय कई बार दूर कर दिया है।
1: बिल्कुल,
0: और लोग पास रहकर भी दूर हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही है हमारे श्रोता साथियों के साथ में कि अगर समाज बोल सकता तो क्या कहता, ये बातें निरंतर हमारी यहीं बनी रहेंगी। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हम ढेर सारी बातों को जान रहे थे, हम समाज की पीड़ा में रिश्ते कमजोर कैसे हो रहे हैं उसको लेकर बात कर रहे थे, नहीं बात करें तो श्रोता साथियों, आज के समय में समाज का एक बड़ा हिस्सा दिखावे और प्रतिस्पर्धा में उलझ गया है।
1: बिल्कुल,
0: समाज कहता तुमने सच्चाई और सादगी को छोड़कर मुझे केवल दिखावे का मंच बना दिया है। लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए जी रहे हैं, न कि खुद को समझने के लिए। इससे समाज में असंतोष और तुलना बढ़ रही है। समाज को सबसे ज्यादा चिंता नई पीढ़ी की होती है। वह कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे आगे बढ़ें, लेकिन सही दिशा में केवल सफलता नहीं बल्कि संस्कार भी जरूरी हैं।
1: बिल्कुल,
0: आज के युवा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं जागृति जी, जो कि अच्छी बात है, लेकिन अगर वे नैतिकता और जिम्मेदारी को भूल जाएं तो समाज का संतुलन ही बिगड़ सकता है।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि समाज की एक और महत्वपूर्ण आवाज युवाओं के लिए होती है। वो कहता है मेरे युवाओं, तुम मेरे भविष्य हो, लेकिन तुम दिशा से भटक रहे हो। आज का युवा सोशल मीडिया और दिखावे की दुनिया में उलझता जा रहा है अंजलि। वो अपनी असली पहचान और क्षमता को भूल रहा है। समाज चाहता है कि युवा अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाए, अपने कौशल को पहचाने और राष्ट्र निर्माण में योगदान दे।
0: बिल्कुल,
1: युवा शक्ति अगर जागरूक और जिम्मेदार हो जाए तो समाज में क्रांति आ सकती है। साथियों, नारी के विषय में भी समाज बहुत कुछ कहना चाहता है।
0: जी जी,
1: तुम नारी को शक्ति का प्रतीक कहते हो, लेकिन क्या उसे वास्तव में सम्मान देते हो? आज भी महिलाओं को कई क्षेत्रों में भेदभाव और असुरक्षा का सामना करना पड़ता है अंजलि।
0: जी जी,
1: समाज स्पष्ट करता है श्रोता साथियों कि जहां नारी का सम्मान नहीं होता वहां सच्चा स्वराज नहीं हो सकता। नारी सशक्तिकरण केवल नारों से नहीं बल्कि व्यवहार में बदलाव से संभव है।
0: बिल्कुल जागृति जी, हम देखते हैं कि समाज केवल शिकायत ही नहीं करता, वह उम्मीद भी रखता है।
1: बिल्कुल,
0: वह हमें प्रेरित करते हुए कहता है कि अभी भी देर नहीं हुई है, अगर तुम चाहो तो सब कुछ बदल सकते हो। छोटे छोटे बदलाव जैसे कि ईमानदारी, सहयोग, संवेदनशीलता समाज को फिर से मजबूत बना सकते हैं। अगर समाज बोलता तो वह हमें अभी सीख जरूर देता कि तुम अकेले नहीं हो, एक दूसरे का सहारा बनो, तभी मैं मजबूत बन पाऊंगा।
1: जी हाँ,
0: जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो न केवल श्रोता साथियों उनका जीवन बेहतर होता है बल्कि समाज भी मजबूत होता है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि यदि समाज बोल सकता है तो वो हमें ये भी सिखा सकता है कि बदलाव बाहर से नहीं भीतर से शुरू होता है। वो कहता है मैं तभी बदलूंगा जब तुम बदलोगे।
0: बिल्कुल,
1: हम अक्सर दूसरों को दोष देते हैं लेकिन अपने भीतर झांकने से कतराते हैं। श्रोताओं, सच्चा स्वराज आत्म परिवर्तन से शुरू होता है।
0: बिल्कुल,
1: जब हर व्यक्ति अपने अंदर ईमानदारी, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी को विकसित करेगा तब समाज अपने आप सुधर जाएगा अंजलि। यही अगर आज के समय में नैतिक मूल्यों का पतन भी हो रहा है तो वो भी समाज के लिए चिंता का विषय है।
0: जी जी,
1: समाज कहता है कि तुम आधुनिकता के नाम पर अपने संस्कारों को भूल रहे हो। प्रगति आवश्यक है लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ाव भी उतना ही जरूरी है। सच्चा स्वराज आधुनिकता और परंपरा के संतुलन में ही निहित है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि समाज बोल सकता है तो वो हमें यही संदेश देता है कि तुम्हारे छोटे छोटे प्रयास ही बड़े बदलाव ला सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: एक ईमानदार कदम, एक सच्चा निर्णय, एक सकारात्मक सोच, ये सभी मिलकर समाज को बदल सकते हैं। हमें ये समझना होगा श्रोता साथियों कि समाज कोई बाहरी शक्ति नहीं है बल्कि हम स्वयं ही समाज है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आज की इन बातों से शायद हम सबके मन में एक ही सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्या सच में समाज बदल सकता है? तो श्रोता साथियों, इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल बदल सकता है और इसकी शुरुआत हमसे ही होगी। अगर समाज सच में बोल पाता तो वो हमें सिर्फ हमारी गलतियाँ नहीं गिनाता बल्कि हमें सही रास्ता भी दिखाता। वह हमें समझाता कि समाज कोई बाहरी ताकत नहीं है बल्कि यह हमारे रोज के छोटे छोटे व्यवहार से बनता है। जब हम किसी की मदद करते हैं, जब हम बिना भेदभाव के किसी को अपनाते हैं, जब हम सच का साथ देते हैं, तब हम समाज को मजबूत बनाते हैं। लेकिन जब हम नफरत फैलाते हैं, तुलना करते हैं या सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, तब हम अनजाने में समाज को कमजोर कर देते हैं। समाज शायद हमसे आखिरी में यही कहता कि मैं तुम्हारा आईना हूँ, जैसे तुम बनोगी वैसे ही मैं दिखूंगा। अगर तुम में इंसानियत जिंदा रहेगी तो मैं भी खूबसूरत बन जाऊंगा।
1: बिल्कुल,
0: इस तरीके से हम कह सकते हैं जागृति जी कि बदलाव की शुरुआत दूसरों से उम्मीद करने से नहीं खुद से करने से होती है।
1: जी हाँ, तो श्रोता साथियों, आपको इतना समझना जरूरी है कि अगर समाज बोल पाता तो वो हमें दोष देने नहीं बल्कि जगाने आता। वो हमें ये याद दिलाता कि बदलाव किसी और से नहीं, हमसे शुरू होता है।
0: बिल्कुल,
1: सच्चा स्वराज कोई दूर का सपना नहीं, ये हमारे हर छोटे छोटे फैसले में छुपा है, हमारी ईमानदारी में छुपा है, हमारी सोच में छुपा है और हमारे व्यवहार में छुपा है।
0: बिल्कुल,
1: जब हम अपने भीतर के स्वार्थ, भेदभाव और लापरवाही को छोड़ देंगे तभी समाज सच में आजाद हो जाएगा। आज जरूरत है अंजलि, हम सिर्फ अच्छे नागरिक बनने की बात न करें बल्कि उसे अपने जीवन में उतारें, क्योंकि एक व्यक्ति का बदलाव ही पूरे समाज की दिशा को बदल सकता है।
0: बिल्कुल।
1: तो साथियों आपसे कहना चाहेंगे कि सच्चा स्वराज किसी कागज पर नहीं मिलता, ये हर इंसान के चरित्र में बसता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो हम हमारे श्रोता साथियों को यही कहना चाहेंगे कि हम नफरत नहीं समझदारी फैलाएंगे, हम दूरी नहीं रिश्ते बनाएंगे, हम शिकायत नहीं समाधान बनेंगे। क्योंकि याद रखिए कि जब इंसान बदलता है तभी समाज बदलता है, और जब समाज बदलता है तभी देश आगे बढ़ता है। इन्हीं उम्मीदों के साथ जागृति जी, अब कार्यक्रम सच्चा स्वराज से हम विदा लेना चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे साथियों को हम एक और प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज में, वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
1: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
0: हिंडो स्कूल जा आपड़े, आपड़ा भी अपना पूरा करो।
1: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: होवे जयवरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
1: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
2: वाघ रेडियो वाग्धारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: के निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, निसोर ने मुस्कान।
1: होवे इटले गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित्ती जिंदगी बचाड़ी लेगा।
0: सड़क सुरक्षा अपनावो, किनके घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: भाई ने बोनो, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े नी कितली शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है।
3: होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा।
2: प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
3: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
2: होवे आज नाना कदम है, ये अबावरा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपनी साथी मनीषा पटेल
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेशर
2: और आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर का प्यार भरा
3: नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
2: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
2: मनीषा और कशिश, हम कहते हैं कि स्वास्थ्य का खजाना छिपा है अपनी मिट्टी में।
0: बिल्कुल,
2: जो अपनाए देसी तरीका, खुशियाँ आए जीवन की चिट्ठी में। यानी कि श्रोता साथियों, आज के आधुनिक दौर में बाजार में तरह तरह के रंग बिरंगे पेय पदार्थ उपलब्ध हैं। ठंडे पेय, एनर्जी ड्रिंक, कई तरह के पैकेट वाले जूस लोगों की पसंद बनते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल,
2: लेकिन इन सब के बीच हमारे पारंपरिक देसी पेय पदार्थ धीरे धीरे पीछे छूटते जा रहे हैं।
0: जी हाँ,
2: कभी घरों में छाछ, मट्ठा, नींबू पानी, बेल का शरबत, सत्तू का घोल, जो का पेय और अलग अलग प्रकार के हर्बल पेय आम हुआ करते थे। कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों कि ये केवल स्वाद ही नहीं देते बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने का काम भी करते थे।
0: बिल्कुल,
2: आज कार्यक्रम में हम यही जानेंगे कि किस तरीके से देसी पेय पदार्थ हमारे स्वास्थ्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
2: जी जी,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
2: जी
1: बिल्कुल, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय तो हम आपको बता ही चुके हैं कि बात कर रहे हैं कि देसी पेय पदार्थों का स्वास्थ्य पर क्या लाभ होता है।
1: जी हाँ,
0: जैसा कि अंजलि जी, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश भारत की पहचान केवल उसकी संस्कृति, परंपरा और खानपान से नहीं है, बल्कि यहाँ के पारंपरिक पेय पदार्थों से भी है।
1: बिल्कुल
0: साथियों, सदियों से हमारे गांवों, कस्बों और शहरों में ऐसे अनेक देसी पेय पदार्थों का उपयोग होता आया है, जो न केवल स्वाद में बेहतरीन है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी उतने ही लाभकारी हैं।
1: जी जी,
0: आज अब श्रोता साथियों, बाजार में अधिक चीनी वाले और रासायनिक तत्वों से युक्त पेय पदार्थों का चलन बढ़ रहा है, तब एक बार फिर लोगों का ध्यान अंजलि जी पारंपरिक और प्राकृतिक पेय पदार्थों की ओर आकर्षित हो रहा है।
1: जी हाँ,
0: क्योंकि हम देखते हैं कि जो देसी पेय पदार्थ होते हैं वो केवल प्यास बुझाने का माध्यम नहीं होते, बल्कि वे शरीर को ऊर्जा देने के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और पाचन को सुधारने में भी मदद करते हैं।
2: बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि भारत में प्राचीन समय से ही विभिन्न प्रकार के देसी पेय पदार्थों का सेवन किया जा रहा है। छाछ, लस्सी, नींबू पानी, सत्तू का शरबत, नारियल पानी, बेल का शरबत और गन्ने का रस जैसे पेय पदार्थ न केवल स्वादिष्ट होते हैं साथियों, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी होते हैं।
1: बिल्कुल,
2: विशेष रूप से हम देखते हैं कि गर्मियों के मौसम में ये पेय शरीर को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करते हैं।
1: जी जी
3: बिल्कुल, मनीषा आपने सही कहा। हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि हमारे पूर्वजों ने बिना किसी वैज्ञानिक उपकरण के भी जीवन शैली के ऐसे तरीके अपनाए थे जो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी थे।
2: जी हाँ,
3: गर्मी में छाछ और आम का पन्ना, बरसात में हर्बल पेय और सर्दियों में अदरक और तुलसी वाले पेय का सेवन किया जाता था। यह केवल परंपरा नहीं थी श्रोता साथियों, बल्कि मौसम के अनुसार शरीर को स्वस्थ रखने की एक समझदारी भरी व्यवस्था थी। आज विज्ञान भी स्वीकार करता है कि प्राकृतिक पेय शरीर के लिए कई तरीके से लाभप्रद हो सकते हैं।
0: बिल्कुल,
3: यही अब बात करें कि कौन कौन से पेय पदार्थ हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। तो पहली बात आती है छाछ की। कहते हैं कि छाछ जो है वो पाचन का मित्र है। भारतीय भोजन में छाछ का विशेष स्थान है।
0: बिल्कुल,
3: भोजन के बाद एक गिलास छाछ पीने से पाचन बेहतर होता है, पेट की गर्मी कम होती है, गैस और अपच की समस्या में राहत मिलती है, शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि गर्मियों में छाछ शरीर को ठंडक देने का कार्य करती है। गाँव में आज भी खेतों में काम करने वाले लोग छाछ को ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत मानते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। इसी के साथ अगर बात करें सत्तू के शरबत की, जिसे ग्रामीण भारत की ऊर्जा कहा जाता है।
1: बिल्कुल,
0: तो हम देखते हैं श्रोता साथियों कि सत्तू जो है वो भुने हुए चने या जौ से तैयार किया जाता है।
2: जी हाँ,
0: साथ ही राजस्थान और उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में इसका उपयोग बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है।
1: जी जी,
0: इसके श्रोता साथियों ढेर सारे लाभ होते हैं, जैसे कि ये लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर को ठंडक देता है, लू से बचाव करता है, साथ ही प्रोटीन और फाइबर से भी भरपूर होता है।
1: जी हाँ,
0: हम देखते हैं कि जब हम सत्तू के शरबत का सेवन करते हैं अंजलि जी, तो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस यह कराता है और साथ ही शरीर में पानी की कमी भी नहीं होने देता। दोस्तों, खेतों में काम करने वाले लोग जो हैं वो आज भी सत्तू को प्राकृतिक एनर्जी ड्रिंक के रूप में उपयोग में लेते हैं।
2: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारी श्रोता साथियों से बातें चली रही हैं और ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
3: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर।
1: हाँ।
0: जैसा कि श्रोता साथियों हम बातें कर रहे थे देसी पेय पदार्थों के स्वास्थ्य लाभ को लेकर।
2: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि देसी पेय पदार्थ शरीर में पानी की कमी को पूरा करते हैं।
1: बिल्कुल
0: गर्मी के मौसम में अधिक पसीना निकलने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसे छाछ, नींबू पानी और नारियल पानी जैसे पेय पदार्थ आसानी से पूरा कर देते हैं।
2: बिल्कुल
0: साथ ही हम देखते हैं कि ये हमारी पाचन शक्ति को भी मजबूत बनाते हैं।
1: बिल्कुल
0: छाछ और लस्सी में मौजूद लाभकारी बैक्टीरिया पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं। इसके सेवन से भोजन आसानी से पचता है, साथ ही गैस, अपच और कब्ज जैसी समस्याओं से भी हमें राहत मिलती है।
2: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही बात करें नींबू पानी की, तो श्रोता साथियों नींबू पानी शायद सबसे आसान और सबसे उपयोगी देसी पेय है। इसके कई सारे लाभ हैं। ये शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता, विटामिन सी प्रदान करता है, थकान कम करता है और गर्मी में राहत भी देता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में ये सहायक होता है। गर्मी के दिनों में यह एक प्राकृतिक ऊर्जा पेय की तरह काम करता है। अगर यही बात करें मनीषा और कशिश बेल के शरबत की, तो श्रोता साथियों बेल का फल आयुर्वेद में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है, पेट संबंधित समस्याओं से लाभ पहुँचाता है, गर्मी से बचाता है और शरीर को ठंडक देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा लोकप्रिय पेय है।
1: जी हाँ अंजलि जी, अब यही बात करते हैं आम पन्ना की। दोस्तों कच्चे आम से तैयार आम पन्ना भारतीय गर्मियों का प्रसिद्ध पेय है। हम देखते हैं कि इसके ढेर सारे स्वास्थ्य लाभ है, जैसे कि ये लू से तो बचाव करता ही है, साथ ही शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाकर रखता है।
2: बिल्कुल
1: साथ ही इसे विटामिन सी का अच्छा स्रोत भी माना जाता है अंजलि जी। और श्रोता साथियों थकान और कमजोरी को दूर करने में भी ये मददगार है और हमारे पाचन को भी बेहतर बनाता है। देखा जाए श्रोता साथियों तो ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी आम पन्ना को गर्मियों का सबसे भरोसेमंद पेय माना जाता है। अब यहीं अगर हम बात करें नारियल पानी की, तो श्रोता साथियों नारियल पानी को प्रकृति का अमृत माना जाता है और साथ ही नारियल पानी जो है वो प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट्स का उत्कृष्ट स्रोत है।
0: बिल्कुल कशिश, यही अगर हम श्रोता साथियों को बताएं कि जौ के पानी का क्या स्वास्थ्य लाभ होते हैं, तो हम देखते हैं कि पुराने समय में स्वास्थ्य वर्धक पेय के रूप में इसका उपयोग किया जाता रहा है।
2: बिल्कुल
0: इसके कई सारे फायदे मिलते हैं श्रोता साथियों, जैसे कि हमारे पाचन में सहायता करता है, यह शरीर को हल्का और ऊर्जावान रखता है, गर्मियों में ठंडक प्रदान करता है, साथ ही साथियों स्वास्थ्य सुधार में भी यह सहायक होता है। साथ ही अंजलि जी और कशिश हम कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को कहना चाहेंगी कि देसी पेय पदार्थ केवल पेय नहीं है बल्कि स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक रक्षक भी हैं।
2: बिल्कुल
0: इसमें पोषण, ऊर्जा, शीतलता और औषधीय गुणों का अद्भुत संगम होता है साथियों। यदि हम अपने दैनिक जीवन में छाछ, सत्तू, नींबू पानी, बेल का शरबत, आम का पन्ना, नारियल पानी जैसे देसी पेयों को शामिल करें तो अनेक स्वास्थ्य समस्याओं से बच सकते हैं।
2: बिल्कुल
0: और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं।
2: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि स्वस्थ जीवन केवल महंगी दवाइयों या आधुनिक उत्पादों से नहीं बनता। कई बार अच्छे स्वास्थ्य का रास्ता हमारी अपनी रसोई, हमारी परंपराओं और हमारी जीवन शैली में छिपा होता है।
1: बिल्कुल
2: कह सकते हैं मनीषा और कशिश के देशी पेय पदार्थ इसी सोच का एक सुंदर उदाहरण है। ये हमें बताते हैं कि प्रकृति ने हमारी जरूरतों के अनुसार हर मौसम के लिए कुछ न कुछ विशेष दिया है। गर्मी में छाछ, आम पन्ना, बरसात में हर्बल पेय और सर्दियों में अदरक तुलसी का काढ़ा, ये केवल पेय नहीं बल्कि पीढ़ियों के अनुभव और ज्ञान की अमूल्य धरोहर है। आज जब जीवन तेजी से बदल रहा है तब यह और भी जरूरी हो जाता है श्रोता साथियों कि हम अपनी पारंपरिक समझ को न भूलें। यदि हम स्थानीय और प्राकृतिक पेयों को अपने दैनिक जीवन में स्थान दें तो हम न केवल अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी स्वस्थ आदतों की विरासत दे सकते हैं।
1: बिल्कुल
2: स्वस्थ समाज की शुरुआत स्वस्थ परिवार से होती है और स्वस्थ परिवार की शुरुआत सही खान पान से होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमें हमारे ये जो परंपरागत पेय पदार्थ हैं उनका प्रयोग करने की जरूरत है, ताकि हम हमारे साथ साथ महिलाएं, पुरुष, हमारे जो वृद्ध जन घर में होते हैं, हमारे जो बच्चे होते हैं, उनको भी इनके प्रति जागरूक कर पाए।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो ऐसे में हमारे श्रोता साथियों को ये याद रखना है कि दोस्तों स्वास्थ्य का रास्ता अक्सर हमारी अपनी परंपराओं से होकर ही गुजरता है। इसलिए बाजार की चमक दमक से प्रभावित होने के बजाय अपने घर और गांव की परंपराओं को आप अपनाइए।
2: बिल्कुल
1: जैसे कि एक गिलास छाछ, सत्तू या नींबू पानी केवल प्यास नहीं बुझाएगा बल्कि शरीर को नई ऊर्जा, मन को ताजगी और जीवन को संतुलन भी देगा साथियों।
2: बिल्कुल
1: ऐसे में देसी पेयों को अपनाइए स्वस्थ भारत के निर्माण में अपना योगदान दीजिए और साथ ही आने वाले पीढ़ियों को भी प्राकृतिक और स्वस्थ जीवन का संदेश दीजिए साथियों।
0: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
1: बिल्कुल।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम और हमारी स्वास्थ्यप्रद बातें अब यही समाप्त होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
2: इसी के साथ दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को,
1: और आपके अपने साथी अंजलि पारशर को,
2: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को।
3: नमस्कार।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बुंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये हैं ई हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, इटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है। जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
5: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
0: होवे न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
4: हिंडो स्कूल जा, आपड़े आपड़ा भी अपना पूरा करो।
5: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: होवे जयवरे सब सोरा भणेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
5: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

हेलो दोस्तों, नमस्कार। कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर। जी हां श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम जब भी कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर हाजिर होते हैं तो आपसे बातचीत करते हैं एक नए प्रेरणादायक विषय को लेकर। तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नए विषय को लेकर मैं हाजिर हूँ। साथियों, आज का हमारा विषय है दूसरों की मदद करने का महत्व। क्योंकि दोस्तों हम देखते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अकेले कभी जीवन नहीं जी सकता। उसे जीवन के हर मोड़ पर किसी न किसी की सहायता की आवश्यकता तो पड़ती ही है। कभी परिवार हमारा सहारा बनता है दोस्तों, तो कभी हमारे मित्र, कभी हमारे शिक्षक, तो कोई अनजान व्यक्ति जो मुश्किल समय में हमारा मददगार बन जाता है। इसी कारण से दोस्तों सहायता और सहयोग मानव जीवन की सबसे बड़ी ताकत माने जाते हैं। हम देखते हैं कि दूसरों की मदद करना केवल एक अच्छा कार्य नहीं है, बल्कि ये इंसानियत की सबसे सुंदर पहचान होती है। साथियों, जिस व्यक्ति के मन में दूसरों के लिए दया, करुणा और सहयोग की भावनाएं होती है ना, वे वास्तव में महान कहलाते हैं। और हम देखते हैं कि मदद केवल पैसों से नहीं होती, बल्कि अच्छे शब्दों, सही मार्गदर्शन, समय देने और भावनात्मक सहारे से भी होती है। साथियों, तो आज के इस कार्यक्रम में मैं इसी विषय को लेकर आपसे ढेर सारी बातें करूंगी। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना दोस्तों पहले यहाँ पर एक प्यारे से गीत के साथ मनोरंजन हम करें। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर के साथ में।

दोस्तों, इस गीत के बाद मैं आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुकी हूँ और बातचीत की शुरुआत भी हो चुकी है कि आज के इस कार्यक्रम में हम जिस विषय को लेकर बातचीत कर रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं कि दूसरों की मदद करने का क्या महत्व है। साथियों, यहाँ पर अगर आपको बताऊं तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दूसरों की मदद करना एक बहुत अच्छा काम होता है, लेकिन उससे पहले हमारे लिए जानना ये जरूरी है कि ये जो दूसरों की मदद करना यानी कि सहायता करने की भावना है वो आखिर है क्या। दोस्तों, सहायता का मतलब होता है कि किसी जरूरतमंद व्यक्ति की कठिन समय में मदद करना। जब हम दोस्तों बिना स्वार्थ के किसी के दुख को कम करने का प्रयास करते हैं, किसी के कठिन समय में उसे संभालते हैं, उसका हौसला बढ़ाते हैं, तो वही सच्ची मदद कहलाती है। साथियों, हम देखते हैं कि आज के समय में लोग अपने जीवन में इतने व्यस्त हो गए हैं कि कई बार उन्हें दूसरों के दुख और संघर्ष के बारे में तो पता ही नहीं चलता, और हम देखते हैं कि उनका दुख उन्हें दिखाई भी नहीं देता है। साथियों, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों के दर्द को महसूस करता है, उसके दर्द को समझता है, वही श्रोता साथियों असल में समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। हम देखते हैं कि सहायता की भावना यानी कि मदद करने की भावना हमें ये सिखाती है कि केवल अपने लिए जीना ही जीवन नहीं होता, बल्कि जीवन का असली अर्थ तब समझ आता है जब हम किसी और के चेहरे पर मुस्कान ला सकें। क्योंकि दोस्तों, हम देखते हैं कि वर्तमान में हम इतने कठोर हो चुके हैं कि हम दूसरों की भावनाओं को कभी समझ ही नहीं पाते हैं। हम बस स्वार्थ में अपना ही सोचते रहते हैं कि किस तरीके से मेरा भला हो जाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपसे एक वास्तविक सत्य ये कहना चाहूंगी कि इस पूरे संसार में भला उसी का हुआ है जिसने किसी और का भला किया हो। अगर आपके कार्यों से दोस्तों किसी और के चेहरे पर मुस्कान आती है, किसी और के घर में दिया जलता है, या फिर कहूँ तो किसी और के घर में खुशियाँ आती है, तो उससे अच्छा काम या उससे पुण्य का काम कोई भी नहीं हो सकता दोस्तों। इसलिए हमें हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, वही व्यक्ति असल में ईमानदार कहलाता है और समाज में बदलाव ला सकता है जिसने अपने कार्यों से किसी और के चेहरे पर मुस्कुराहट लाई हो। हम देख सकते हैं दोस्तों कि दूसरों की मदद करने से हमें आत्मिक खुशी मिलती है, यानी कि अंदर से खुशी मिलती है। साथियों, जब हम किसी की सहायता करते हैं तो केवल सामने वाले को ही राहत नहीं मिलती दोस्तों, बल्कि हमारे मन को भी शांति और संतोष मिलता है। जैसे कि किसी भूखे को भोजन खिलाना, किसी दुखी व्यक्ति को सहारा देना, किसी विद्यार्थी को पढ़ाना, या फिर श्रोता साथियों किसी बीमार व्यक्ति की सेवा करना। हम देखते हैं कि ये जो सभी कार्य हैं वो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। लेकिन दोस्तों, हम ये भी देखते हैं कि दुनिया की कोई भी दौलत उस खुशी की बराबरी नहीं कर सकती जो किसी की मदद करके हमें मिलती है। मदद करने से दोस्तों हमारा मन हल्का होता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन का उद्देश्य भी हमें समझ में आने लगता है। दोस्तों, कई बार तो हम ये सोचते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा धन नहीं है, इसलिए हम किसी की सहायता नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, सहायता के लिए धन से अधिक जरूरी है अच्छा दिल और सच्ची भावना। एक मीठा शब्द भी श्रोता साथियों किसी टूटे हुए इंसान को एक नई उम्मीद दे सकता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दूसरों की मदद करने से हमें एक आत्मिक शांति, संतोष और खुशी मिलती है। तो जैसा कि दोस्तों बातें कार्यक्रम के माध्यम से मेरी आपसे चल ही रही हैं, ये बातें मैं आगे भी करूंगी,

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

दोस्तों इस गीत के बाद मैं फिर से रुक करती हूँ कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में बहुत ही अच्छा विषय हमारा बातचीत का चल रहा है, हम जान रहे हैं कि दूसरों की मदद करना कितना जरूरी है और इस मदद से हमें क्या फायदे हो सकते हैं। गीत से पहले जैसा कि हम जान पाए थे श्रोता साथियों कि दूसरों की मदद करने से हमें आत्मिक खुशी मिलती है। अब यहीं अगर बात करूं श्रोता साथियों, तो जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो इससे समाज में भी मजबूती आती है। अब आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि मेरे मदद करने से समाज में मजबूती कैसे आएगी, तो आपसे कहना चाहेंगे कि जिस समाज में श्रोता साथियों लोग एक दूसरे की मदद करते हैं वह समाज हमेशा मजबूत और खुशहाल बनता है। अगर समाज में केवल स्वार्थ हो श्रोता साथियों, तो वहाँ रिश्ते कमजोर हो जाते हैं, लेकिन वहीं जहाँ सहयोग और संवेदनशीलता होती है वहाँ प्रेम और विश्वास बढ़ता है। दोस्तों हम देखते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं या फिर कठिन परिस्थितियों में जब लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं तब मानवता की असली तस्वीर हमारे सामने आती है। हम देखते हैं दोस्तों कि सहायता का भाव समाज में भाईचारे और एकता को मजबूत करता है, इससे लोगों के बीच विश्वास पैदा होता है और समाज में सकारात्मक वातावरण बनता है। तो इस तरीके से दोस्तों सहायता करने से समाज भी मजबूत बनता है। साथ ही हम देखते हैं कि जब हम

किसी की मदद करते हैं तो लोग हमें याद रखते हैं। जैसे कि दुनिया में दोस्तों बहुत से लोग धनवान बने हैं, प्रसिद्ध भी हुए हैं, लेकिन समय के साथ लोग उन्हें भूलते गए। लेकिन जिन्होंने श्रोता साथियों मानवता की सेवा की है, दूसरों की हमेशा सहायता की है, उन्हें लोग हमेशा याद रखते हैं। ऐसे लोग दोस्तों समाज में प्रेरणा बन जाते हैं और उनका जीवन ये संदेश देता है कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, पैसे या पद से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और सेवा भावना से की जाती है। हम देखते हैं कि किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में मदद करने वाला व्यक्ति, किसी बीमार की सेवा करने वाला व्यक्ति या फिर किसी दुखी इंसान को सहारा देने वाला व्यक्ति हो, ये सभी दोस्तों समाज के असली नायक माने जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि जब तक बहुत बड़ा काम न कर ले तब तक सहायता का कोई महत्व नहीं है, लेकिन दोस्तों सच्चाई तो ये है कि छोटी छोटी मदद भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। जैसे कि किसी वृद्ध व्यक्ति को सड़क पार करवाना, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पानी पिलाना, किसी उदास व्यक्ति को हिम्मत देना या फिर किसी विद्यार्थी को सही सलाह या फिर मार्गदर्शन देना, किसी गरीब को भोजन देना और किसी परेशान व्यक्ति की बात सुन लेना। दोस्तों हम देखते हैं कि ये जो छोटे छोटे कार्य हैं वो दिखने में साधारण लग सकते हैं, लेकिन इनका जो प्रभाव है वो काफी गहरा होता है। कई बार इंसान को पैसों से ज्यादा जरूरत होती है दोस्तों अपनापन की और सहारे की, तो ऐसे में हमारी छोटी छोटी मदद किसी के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। तो इस तरीके से कार्यक्रम के अंत में मैं यही कहना चाहूंगी दोस्तों आपसे कि दूसरों की मदद करना मानव जीवन का सबसे सुंदर गुण है। यह केवल समाज को बेहतर नहीं बनाता बल्कि हमारे अपने जीवन को भी खुशहाल और अर्थपूर्ण बना देता है। साथियों आपको बताना चाहूंगी कि सच्चा इंसान वही है जो दूसरों के दुख को समझे, जरूरत पड़ने पर सहायता के लिए आगे आए। और हम देखते हैं कि हमारे इसी प्रकार के छोटे छोटे प्रयास साथियों किसी के जीवन में बड़ी उम्मीद बन सकते हैं। ऐसे में हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में सेवा, सहयोग और मानवता की भावना को हमेशा अपनाएंगे। हम केवल अपने लिए नहीं दोस्तों बल्कि समाज और जरूरतमंद लोगों के लिए भी जिएंगे। याद रखिए साथियों, दूसरों के जीवन में रोशनी फैलाने वाला व्यक्ति स्वयं कभी अंधेरे में नहीं रहता। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ दोस्तों अब मैं कार्यक्रम से विदा लेने की अनुमति चाहूंगी, क्योंकि देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले क्यों ना दोस्तों एक प्यारे से गीत के साथ पहले हम मनोरंजन कर लें।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सपनों की उड़ान अब यही समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है साथियों 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो साथियों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। अगर चाहो तेज दिमाग ने स्वस्थ जीवन, तो आयरन तकी भरपूर तत्व नु करो भोजन।
0: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी तकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
1: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
0: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
1: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
0: होपे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
1: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
0: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: जागृति बुन, आप कार्य सोचू है, अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था
3: नाना अंजलि बोन, हूँ था का?
2: अरे जागृति बोन, आपड़ी जे नदी है ई हुके जाएगा, खेतर बंजर थे जाएगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
3: ओ अंजलि बोन, एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
2: होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
3: होवे अंजलि पुन, आपरे भाई बहन थकी आपरे अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपरो ने आपरी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
2: होवे होवे जागृति पुन, आपरे भाई बहनो ने कह कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपरी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपरी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
1: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची शकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: जागृति बुन आपने कार्य सोचू है अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था नाना अंजलि बुन हूँ था का अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदिये है ये हुके जाएंगा खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुके जागा ओ अंजलि बुन एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाई बोनू, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची शकंगा। वागड़े

0: भाई बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: साथी सब कंगा।
1: भाई ने बोलो आप इकारे विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हूं या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल रह हूं ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। हो भाई अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा। हो वे प्रकृति ने बचावो भविष्य ने हदारो। हो वे आज नाना कदम है ये आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है। वागड़ रेडियो वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

साथियों, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी हमारी आपसे अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल को। नमस्कार।